ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि। तदनुसार 13 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:00 हिंदी में समाचार। 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9:00 हिंदी में समाचार। 9:02 पर कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10:00 अंग्रेजी में समाचार। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। 12:00 अंग्रेजी में समाचार और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप,

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन।
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। ब्रिक्स देशों के समर्थन से नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। अमेरिका की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग से इसके तेजी से हो रहे विकास की गति को धीमा करने का आग्रह किया है। भारत के एसडी प्रज्वल देव ने वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉजमिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और साथियों, ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं हम शुरुआत करते हैं जब अपने दिन की, तो इस खूबसूरत सी सुबह में कुछ अच्छे विचारों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छे गीतों के साथ हम आपके साथ होते हैं और एफएम रेनबो पर जो प्रोग्राम्स हैं हमारे लगातार आप सभी तक पहुंचते रहते हैं 2400 घंटे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक किसान ने बांस का बीज बोया और हर दिन उसे पानी देता रहा। पहला साल बीत गया लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा और चौथा साल भी बीत गया। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे लेकिन किसान ने पानी देना नहीं छोड़ा। पांचवें साल अचानक बांस बहुत तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में कई मीटर ऊंचा हो गया। असल में उन चार वर्षों में बांस बढ़ नहीं रहा था, ऐसा नहीं था, वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि भविष्य में ऊंचा उठ सके। और अगर हमारी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि हम अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे आप दिल से दिल तक कार्यक्रम है सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ राजेश। और वाकई में जैसा ये गीत उसी तरह की आजकल की सुबह भी है। गर्मियां धीरे धीरे धीरे धीरे जाने को है और सर्दी जो है धीरे धीरे आने को है। और ये वो मौसम है जब सुबह जो है बहुत ही बेहतरीन लगने लगती है। ये वो सुबह होती है जब आप बहुत सारी चीज़ें जो आप प्लान करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, कैसे और भी जो चीज़ें आपने बहुत पहले सोचा था कि हाँ ये करेंगे, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, तो अब मौसम अच्छा होने लगा है, वो काम करने का समय आ गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो दो जो विचार हैं हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। एक तो हमें कहता है कि हाँ करते हैं, एक कहता है कि अभी थोड़ा रुकते हैं। तो इन दो जो विचार हैं इन पर एक कहानी मुझे याद आ रही है और ये कहानी है दो भेड़िए की। कहानी इस तरह से है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से कहा कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ते हैं। एक भेड़िया डर, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और नफरत से भरा है और दूसरा भेड़िया साहस, प्रेम, धैर्य, दया और उम्मीद से भरा है। पोते ने पूछा कि दादाजी इनमें से कौन जीतता है? तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो वो जीतता है। हम हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को अपने ध्यान से मजबूत करते हैं। अगर हम डर को बार बार महत्व देंगे तो डर बढ़ेगा, अगर हम साहस और उम्मीद को बढ़ावा देंगे तो वे मजबूत होंगे। तो बात यह है कि सब जो चीज़ें हैं हम हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ये चुन सकते हैं कि अपने अंदर किस चीज़ को हमें मजबूत करना है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
4: रोजाना 4:00 से 5:00 तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

बार मारा फिर भी नहीं टूटा, 500 बार मारा कुछ नहीं हुआ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। फिर उसने 501वीं बार हथौड़ा मारा और पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। तो क्या सिर्फ पत्थर 501वीं चोट से टूटा? नहीं, उसे तोड़ने में पिछली 500 चोटों का भी उतना ही योगदान था। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता अक्सर अचानक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे लगातार की गई सैकड़ों कोशिशें होती हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता। इसलिए अगर आज हमें ये लग रहा है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारी अगली कोशिश ही वो कोशिश हो जिसका हमें लंबे समय से इंतज़ार है।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है सुप्रभात और दोस्तों मैं हूं आपके साथ राजेश। कहते हैं कि जब हम किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो सबसे अच्छा दिन होता है आज का दिन। यानी कि जो भी काम शुरू करना चाहते हैं हम, उसको आज से ही शुरू कर दें तो फिर उसकी शुरुआत हो जाती है। और कहते हैं कि कई बार किसी किसी काम को शुरू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब काम हम एक बार शुरू कर देते हैं ना, तो फिर एक निरंतरता आती है, लगातार उस काम को गति मिलती है और फिर हम जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये सोचना कि हम आगे किसी तारीख को चुनते हैं कि हाँ इस तारीख को हम ये काम करेंगे, कई बार क्या होता है कि उस तारीख तक हम पहुँचते हैं तब तक हमारे पास कुछ और काम आ जाते हैं और उन कामों के चक्कर में हमारा वो काम रह जाता है जिसकी हम बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे। तो ज़रूरी ये है कि अपने इस आज को बनाए हम जितना हो सकता है उतना खूबसूरत, क्योंकि आज हमारा खूबसूरत होता है ना, तो फिर आने वाला कल अपने आप उस आज के अनुसार खूबसूरत होने लगता है और हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर होने लगती है।

0: और साथियों चुपके से अब समय वो हो गया है कि हम चलें अपने अगले कार्यक्रम की ओर। और अगला कार्यक्रम हमारा है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण। और इस प्रोग्राम में चलें हम और आप सुनते हैं कि आज क्या खास बातें हम सुनने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय, जहाँ पर महाराज परीक्षित का जो प्रश्न था, यूं तो उनके अनेक प्रश्न थे जिसमें सृष्टि कैसे हुई, क्या विधि रही और जीव जो है वो वस्तुतः कौन है, अनेक प्रश्न थे। और जो मुख्य प्रश्न था कि जीव का जब देह से संबंध नहीं है, जैसा कि आपने बताया, तो फिर जीव को इतनी देहें प्राप्त क्यों होती हैं, वो देह को ही मैं क्यों मानता है, तो इसका उत्तर हमने पिछले कार्यक्रम में जाना। हमने जाना कि जीव का वस्तुतः देह से संबंध नहीं है, तो भी वो माया के संपर्क के कारण और भगवान से, चूंकि वो बहिर्मुख है, भगवान के प्रति उन्मुख नहीं है, उनकी सेवा नहीं करता, उनका भजन नहीं करता, उनको प्रेम नहीं करता, इसलिए माया ने उस पर कब्जा कर रखा है। और जीव यूं तो भगवान की तटस्था शक्ति है, ना वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, ना वो माया शक्ति के ही अंतर्गत है। तो जीव भगवान का विभिन्नांश है, तटस्था शक्ति है, तथापि वो माया के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के चरण की शरणागति नहीं लेता, और इसीलिए माया उसको दंड देती है। माया दंड कैसे देती है? क्योंकि जीव अणु परिमाण का है, उसका साइज अणु है, और अणु जीव पर माया बहुत आसानी से नियंत्रण करके और उसे देह गेह आदि में ममता मैं वातावरण में रख देती है, यानी वो देह में आसक्त हो जाता है, घर में आसक्त हो जाता है, परिवार में आसक्त हो जाता है। जबकि जीव का जो स्वरूप है वो है भगवान का नित्य दास, लेकिन वो इसको कभी जानता ही नहीं है। तो संसार प्रवाह में बहते बहते, संसार सागर में बहते बहते अगर किसी साधु गुरु वैष्णव की नजर उस पर पड़ जाए, उनका संग मिल जाए, तो ही वो भगवान की भक्ति में आ सकता है। बिना सत्संग, बिना हरि कथा श्रवण, बिना श्रद्धा के कोई भी भगवान की भक्ति की तरफ नहीं मुड़ सकता, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है जीव के ऊपर भगवान की और महत की, यानी किसी बड़े महत की। तो आज पांचवें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, स आदि देवो जगताम परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयेक्षत ताम नाद्यगच्छद दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधीर्यया भवेत। कह रहे हैं कि तीन लोकों के परम गुरु, तीनों लोक जो हैं उनके परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान

सृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, और जो सृष्टि व्यापार के लिए आवश्यक है वो दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। यानी इच्छा मात्र से ही वो सृष्टि कर दें, ऐसा उनके लिए नहीं हुआ। उन्होंने सोचा अवश्य ही कि मैं सृष्टि करना चाहता हूं। ये इच्छा उत्पन्न हुई क्योंकि इसी के लिए ही वो प्रकट हुए श्री गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि कमल से। पर वो जो कमल था वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था, और चारों तरफ जल ही जल देखा था ब्रह्मा जी ने, तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस कमल की उत्पत्ति कैसे हुई है। और जो वो देख रहे थे अपने चारों तरफ जल ही जल, किसी को देख भी नहीं रहे थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन उनके अंदर एक संस्कार था कि उनको सृष्टि करनी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि सृष्टि तो मुझे करनी है, पर कैसे कैसे करनी है। तो आदि देव ब्रह्मा जी, यानी भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही प्रकट किया है अपने नाभि कमल से, और बाद में फिर अन्य देवताओं का प्राकट्यकरण हुआ है, अन्य देवता आए हैं, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, अनेक ब्रह्मांड जो महाविष्णु जी के महा शरीर से प्रकट होते रहते हैं, और एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ही की ये बात हो रही है फिलहाल। तो ये जो आदिदेव ब्रह्मा जी हैं, ये श्रेष्ठ हैं, परम हैं, परम गुरु हैं, ये गुरु तत्व हैं, क्योंकि ये भक्ति रहस्य के उपदेष्टा हैं। ये भक्ति रहस्य को जानते हैं और भक्ति रहस्य का उपदेश करते हैं, है ना। आपको याद होगा सनक जी, सनातन जी, सनत कुमार जी, सनंदन जी, ये जो चार कुमार हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो इनको भी उपदेश ब्रह्मा जी ने ही दिया, नारद जी को भी उपदेश ब्रह्मा जी ने ही दिया, और सबको ही भगवत प्रेम का उपदेश दिया है उन्होंने। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं दशम स्कंध में, जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है, और श्री कृष्ण का दर्शन करके जो उन्होंने स्तुति की है वो बहुत ही सुंदर स्तुति है। तो जब ब्रह्मा जी मगर प्रकट हुए तो अपने आधार स्थान पद्म पर वो अधिष्ठान कर रहे थे, बैठे हुए थे, और उस अधिष्ठान के मूल देश यानी उसकी जड़ का अन्वेषण करने के लिए पहले वो जल में डूबने लगे, नीचे गए कि कमल का तल कहाँ पर है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, जितना वो नीचे जा रहे थे उतना ही लग रहा था कि अभी और दूरी है। तो अंततः वो कमल के मूल को खोज नहीं पाए और वापस आकर अपने पद्मासन पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब मैं सृष्टि करूं तो कैसे करूं, कैसे ही करूं, क्योंकि इस विषय में उनको प्रज्ञा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी कि कौन सी विधि है जिसके द्वारा मुझे सृष्टि करनी है। तो जब वो ऐसा चिंतन कर रहे थे उसी समय दो अक्षर उनके कानों में उपस्थित हुए, पहला था त और फिर प, तप तप तप, ये दो बार आवाज आई उनको तप तप। तो फिर जब उनके कानों से इन दो अक्षरों का संयोग हुआ तप, तो कौन कह रहा है उसको देखने के लिए उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, पर किसी को देख ही नहीं पाए। फिर से चुपचाप बैठ गए और ये समझने लगे कि मुझे लगता है किसी ने तपस्या में नियुक्त होने का उपदेश दिया है, तो तपस्या ही शायद मेरे लिए हितकर है, ऐसा सोचकर वो तपस्या में मन को लगा लिए। तो जब ब्रह्मा जी ने तप तप इन दो अक्षरों को सुना, तब अमोघ दृष्टि प्राप्त करके प्राण और मन को जय करते हुए अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय समूह को संयत करके एकाग्र चित्त से दिव्य 1000 वर्ष तक वो तपस्या का आचरण करने लगे, और फिर उस तपस्या के प्रभाव से समस्त लोक उनके सम्मुख प्रकाशित हो गए, समस्त लोक। फिर जब उन्होंने इन लोगों को देखा तो बड़े संतुष्ट हुए, और भगवान भी ब्रह्मा जी के
तपस्या से बड़े संतुष्ट हो गए और उन्होंने उन्हें अपना लोक दिखाया, वैकुंठ धाम दिखाया, महावैकुंठ धाम, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुरुषावतार और द्वितीय पुरुषावतार, वो भी गर्भोदक्षाही विष्णु, उनके नाभि से प्रकट हुए कमल पर ही आए थे, कमल पर प्रकट हुए थे। तो वो है महाविष्णु के अंश। तो भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु का धाम उन्होंने देखा, महावैकुंठ। नौवें श्लोक में कह भी रहे हैं सुखदेव जी, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत् परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर पुरुषेरभिष्टुतम। अर्थात श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अतिशय प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपना निजी धाम वैकुंठ लोक दिखलाया। ये दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो सब प्रकार के क्लेशों और सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने तप किया था, अर्थात भक्ति की, कष्ट सहे, है ना, वरना भगवान ब्रह्मा जी को अपना लोक कभी ना दिखाते। भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान का जो वैकुंठ लोक है वो भगवान की तरह ही नित्य है, वो काल्पनिक नहीं है। लेकिन भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही संभव है, भक्त लोग ही यहां जा सकते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी ने भक्ति की थी। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम ज्ञान योग ध्यान योग के द्वारा वहां चले जाएंगे तो फिर वो संभव नहीं है। वैकुंठ की प्राप्ति भजन भक्ति से ही हो सकती है। भगवान का धाम भगवान की तरह सच्चिदानंदमय है। तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान भी उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ही उन्हें अपना धाम दिखाया है। तो ये जो धाम है ये ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक के ऊपर स्थित है। भगवान का जो ये धाम है यहां सबके लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन इसका वर्णन भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में हुआ है और भी हमारे शास्त्रों में हुआ है। तो देखिए, भगवान दिव्य है, सच्चिदानंदमय है, उनका धाम सच्चिदानंदमय है, अतिशय दिव्य है। तो अगर कोई कहे कि नहीं भगवान का तो रूप नहीं होता, तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन भी किए, तो उनका रूप भी उन्होंने दिखलाया और भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और संसार में कण कण में भगवान का वास है ना, इसको भी दिखाया भगवान ने। यानी वो अपने धाम में भी रहते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। तो देखिए, भगवान जिस तरह से दिव्य हैं, भगवान के भक्त भी दिव्य हैं, भगवान के साथ जो रहते हैं, लीलाइत रहते हैं, वो भी दिव्य हैं। उनका कोई भौतिक शरीर नहीं रहता, क्योंकि भौतिक शरीर जो है उसमें तो 5 क्लेश का आवरण रहता है, अविद्या, आसक्ति, घृणा, दूसरों का शोषण, भौतिक बोध। तो जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा हुआ है वो वैकुंठ लोक में कहाँ जा सकता है, जा ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, तो वो तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान का आकार देखा, उनका रूप देखा ब्रह्मा जी ने और उनका लोक देखा। तो ऐसे जो भगवान हैं उनका जो लोक है वो भी भगवान के अनंत रूपों की तरह अनंत रूप लिए हुए हैं, यानी अनंत अनंत वैकुंठ धाम है, अनंत अनंत वैकुंठ धाम। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है, जो स्वयं सिद्ध धाम है, वो है गोलोक गोकुल वृंदावन धाम, जिनसे समस्त वैकुंठ लोक प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे समस्त भगवत स्वरूप प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान और भगवान के धाम का साक्षात्कार दिव्य रूप और इंद्रियों द्वारा ही संभव है।
कोई जब भगवान का पार्षद बनता है तो ही वहां जाता है।

0: लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी पर कृपा हुई अवश्य ही और उन्होंने भगवान का लोक देखा। और जितने भी स्थान का निर्माण वो कर रहे थे, जितने भी लोक का निर्माण वो करना चाह रहे थे, उनमें ऐसी योग्यता नहीं थी जो वैकुंठ के बराबर हो। क्योंकि ये जो धाम है जहां हम रहते हैं, दुर्गा धाम या संसार, यहां तो व्याकुलता है, भय है, यहां तो क्लेश है, यहां मैं मेरा ऐसा अभिमान है, अविद्या है, आसक्ति है, लोगों से द्वेष है और अपने देह में अभिनिवेश है। तो यही तो पांच जो है वो अविद्या की वृत्तियां हैं। विशेष रूप से यहां पर मोह है, भयानक मोह है, और चूंकि मोह है इसलिए चित्त व्याकुल हो जाता है, और जहां चित्त व्याकुल है वहां भगवान की स्फूर्ति संभव ही नहीं है, वहां भगवान की सेवा अपराध का भय भी नहीं है। वो है वैकुंठ धाम, जहां कोई कुंठा ही नहीं है, वहां इंद्र जैसे दिक्पालों द्वारा रक्षित, सम्मानित, पूजित वो वैकुंठ धाम है। तो ये जो इंद्र है ये स्वर्ग के इंद्र नहीं है, ये वैकुंठ धाम में जो इंद्र आदि लोकपालगण रहते हैं वो भगवान के ही पार्षद हैं, स्वर्गीय इंद्र आदि देवगण नहीं है। तो ये सब नित्य ही भगवान का दर्शन करते हैं, नित्य। तो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उनकी इंद्रियां प्राकृत नहीं है, प्राकृत इंद्रियां वहां नहीं हो सकती। देखिए, जिस स्थान में माया नहीं जा सकती वही वैकुंठ है, जहां कुंठा धर्म नहीं जा सकता वही वैकुंठ है। भगवान का भी एक नाम वैकुंठ है, क्योंकि उनमें भी कुंठा धर्म का लेश मात्र नहीं है, वह प्राकृत हैं, चिन्मय हैं, परम सत्य वस्तु हैं, वही अद्वैय ज्ञान है ना। तो भगवान है अचिंत शक्ति संपन्न, और अचिंत भाव को तर्क के द्वारा, सीमाबद्ध ज्ञान के द्वारा कभी भी मापा नहीं जा सकता, ये समझना होगा। मानव के चिंतन में जो आ नहीं सकता वही अचिंत शक्ति भगवान। तो सर्वशक्तिमान अद्वैय ज्ञान तत्व भगवान अचिंत शक्ति के कारण सदा सर्वदा अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने वैभव के रूप में रहते हैं, जीव रूप में भी और प्रधान रूप में भी अवस्थान करते हैं। जैसे कि सूर्य है, वो अपने तेज मंडल में भी रहता है, सूर्य का तेज मंडल होता है ना, तो वहां भी है, बाहर भी प्रकटित है सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, और अपनी प्रतिछवि यानी प्रतिबिंब के द्वारा दूर दूर तक फैले हुए हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान, उनका स्वरूप, उनका चिन्मय धाम, उनके संगी, उनके द्वारा व्यवहार में लाने वाले समस्त उपकरण सभी भगवान हैं, उन्हीं के रूप का वैभव है। तो भगवान इस प्रकार से चतुर्विध भाव से अवस्थान कर रहे हैं तो भी वो अद्वैय वस्तु हैं। अद्वैय वस्तु यानी वही एक है, दूसरा कोई नहीं है, ठाकुर जी ही एक है और उनसे ही सब कुछ है। और भगवान की इसी शक्ति का नाम है पराशक्ति। तो ये जो पराशक्ति है विचित्र विलासमय है, विचित्र आनंद को बढ़ाने वाली है। कैसी है ये शक्ति जानेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा। तो भगवान की जो तीन शक्ति हैं, यानी स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इन्हीं के द्वारा, यानी भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा उनका जो वैकुंठ लोक है, उनका जो धाम है।

वो प्रकट है, धाम के वासी प्रकट है, और जीव शक्ति के द्वारा जगत में जितने भी जीव हम देखते हैं वो प्रकट हैं, जैव जगत और जड़ जगत उनकी माया शक्ति के द्वारा प्रादुर्भूत हुए हैं, है ना। तो ये जो भगवान है ठाकुर जी, इनके धाम में कोई कुंठा, कोई दुख, कोई क्लेश नहीं है, कोई क्लेश रह भी नहीं सकता है। ब्रह्मांड को अतिक्रम करके विरजा नदी आती है, और इस विरजा में तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का साम्य अवस्था लक्षित होता है, साम्य अवस्था दिखता है। तो यहां पर प्राकृत मल कुछ रह नहीं जाता है, उसे भी अतिक्रम जब किया जाता है तो ज्ञानी लोग ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक को भी जब पार कर दिया जाता है तो वैकुंठ धाम। तो उस वैकुंठ लोक में माया के प्रभाव से प्रकटित अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश, मोह और भय आदि रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो जब उस स्थान पर माया का कोई प्रभाव ही नहीं है तो वहां जन्म, विनाश, विकार, वृद्धि, अपक्षय और विपरिणाम, यानी जन्म है, विनाश, फिर विकार, फिर कोई बढ़ रहा है, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ये जो छह विकार हैं जो काल के द्वारा सृजित हैं वो वहां नहीं हो सकते। वहां काल भी नहीं है, वो है स्थान अशोक, यानी बिना किसी शोक के, कष्टों के, अमृत, नित्य नव नवायमान, चिद विलास, वैचित्र से युक्त। तो उसी स्थान में भगवान है अपने अप्राकृत स्वरूप में, उनका स्वरूप हमेशा ही अप्राकृत रहता है, चाहे वो यहाँ पर कैसी भी लीला क्यों ना करने के लिए प्रकट हो जाए तो भी वो अप्राकृत स्वरूप में ही रहते हैं, ये जानना होगा। कभी भी वो मनुष्य शरीर ग्रहण नहीं करते। मनुष्य शरीर जड़ वस्तुओं से बना होता है, जड़ महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। भगवान का शरीर इनसे नहीं बना होता। भगवान यहाँ पर जो भी लीला क्यों ना करें, फिर वो अद्वैय ज्ञान है। ठाकुर जी अद्वैय हैं, वो एक हैं, एक से दो नहीं होते। जो कुछ भी है उनसे प्रकट है, उनके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ उनसे प्रकट है। तो ऐसे जो भगवान हैं उनके ही स्वरूप का वैभव नित्य परिकरों, पार्षदों और धाम के साथ नित्य अपनी लीला में रमण करते हैं, नित्य लीलायित रहते हैं, और उस धाम का दर्शन किया है ब्रह्मा जी ने। तो ये बात भी सही है। देखिए, भगवान जब प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं भक्ति से ही, भक्ति वश पुरुषा, तो फिर एक भक्त उनको जान पाता है। श्री भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्, कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है और मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए, आचार्य भी यही कहते हैं कि तुम्ही तो परम तत्व अनंत अद्वय, पराशक्ति तुम्हार अभिन्न तत्व है। प्रभु आप ही परम तत्व हैं, हे श्री कृष्ण आप ही अनंत हैं, आप ही अद्वय हैं, और आपकी जो शक्ति है वो आपसे अभिन्न है। से ही पराशक्ति त्रिधा हुई है प्रकाश, तब इच्छा मतो कराए तुम्हार विलास। भगवान की वही एक पराशक्ति तीन रूप में प्रकट होती है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। और भगवान की जो चिद शक्ति है यानी स्वरूप शक्ति, वही तीन वृत्तियों से युक्त होती है, संधिनी, संवित और आराधनी। तो जो भगवान की शक्ति तीन रूप लेती है यानी चिद शक्ति, जीव शक्ति और तटस्थ शक्ति, वो क्या कार्य करती है? तो चित शक्ति स्वरूप नित्य लीला प्रकाशिया तुम्हारे आनंद देन आह्लादनी हुईया, कि भगवान आपकी जो स्वरूप शक्ति है वो आपकी नित्य लीला को प्रकाशित करती है और आपको आनंद प्रदान करती है आह्लादनी शक्ति के रूप में। नित्य लीला भगवान की प्रकाशित होती है भगवान की स्वरूप शक्ति चिद शक्ति के कारण। और जीव शक्ति होइया तब चित्त किरण चाहिए तटस्थ स्वभावी जीव गणे प्रकटये। प्रभु आपकी जो जीव शक्ति है वो आपके चिद किरण के रूप में प्रकट होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में जब हम देखते हैं, जब वो झरोखों से आता है तो उसमें कितने सारे कण लटके रहते हैं,
ऐसे ही जी

जीव है, अनंत जीव है, ये भगवान की जीव शक्ति है, तटस्थ स्वभाव के जीवगण है। ये जब भजन करते हैं तो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, और जब ये माया को भोगना चाहते हैं तो माया शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, वैसे तटस्थ हैं। माया शक्ति हो ये करे प्रपंच सृजन, बहिर्मुख जीवे ताहे करे ये बंधन। और भगवान की जो तीसरी शक्ति है माया शक्ति, वो प्रपंच सृजन करती है, यानी ये संसार संसार को बनाती है, और जो बहिर्मुख जीव है उसमें बांध दिए जाते हैं, कारागार है ये, कारागार कारागार। भगवान की तरफ जो नहीं मुड़ता वो यहीं फंसता है। भक्ति विनोद बोले अपराध फले, बहिर्मुख हो ये आची प्रपंच कवले। हमारे आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, भयानक अपराध ही हुआ है मुझसे, इसीलिए मैं आपसे बहिर्मुख होकर इस प्रपंच की कैद में हूं, आपसे प्रेम नहीं कर पाया। कब वो प्रेम मिलेगा? जब मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा, उस प्रेम के द्वारा ही। क्योंकि पूर्ण चिदानंद तुम्हें तुम्हाते चित कण आमी स्वभावता आमी तुआ दास। क्योंकि प्रभु आप चिदानंद हैं, चिदानंद चिदानंदमय, मैं आपका चित कण हूं, एक अंश, वो भी कण रूपी अंश अणु, और आप आनंद सागर हैं, चिदानंद सागर। स्वभावता तो मैं आप ही का दास हूं, परम स्वतंत्र तुम्हें तुआ परतंत्र आमी तुआ पद छाड़ी सर्वनाश। प्रभु आप परम स्वतंत्र हैं और मैं आप पर ही आश्रित हूं, परतंत्र हूं। आपके चरण कमल अगर छोड़ दूं तो सर्वनाश होगा ही, लेकिन हुआ यही। स्वतंत्र हो ये जोखुन माया प्रति कोइनु मन, स्व स्वभाव छाड़ी लो अमाय, प्रपंचे मायार बंधे पड़ीनु कर्मेर धंधे, कर्म चक्रे अमारे फैलाए। तो हे प्रभु आप चिदानंदमय हैं, मैं आपका दास हूं, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं परतंत्र हूं, मैं परतंत्र हूं। हे प्रभु मैंने अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, आपकी तरफ नहीं मुड़ा, आपको नहीं भजा, आपको नहीं चाहा, तो मैं अपने अपराध के कारण इस कैद खाने में गिर गया, इस कारागार में गिर गया। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपका भजन कर सकूं और आपको जान सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं। ये सब कथाएं सुनकर हमें भगवान से यही मांगना है ना। तो ये था आज का कार्यक्रम आपके लिए, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

उनकी वाणी मधुर है, उनकी चरितावली मधुर है, उनके वसन मधुर हैं, उनका बोलना मधुर है, उनकी चाल मधुर है, उनका भ्रमण

0: नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन, सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। ब्रिक्स देशों के समर्थन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठकों में रणनीतिक और दीर्घकालीन संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के साथ सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरज साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थिति जन समूह को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारत के एसडी प्रवजन देव ने वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल चैलेंजर्स में फ्रांस के कांस्टेंटिन बिटून केजमिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: एग्जैक्टली, और बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं हम आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और बिल्कुल आज है 13 सितंबर और बिल्कुल वक्त हो चुका है 7:02 और आपके साथ मैं हूं आशुतोष। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर में। और बिल्कुल कहते हैं कि जो हमारी खुशी होती है ना, वो एक औषधि की तरह होती है और वो हर मर्ज को ठीक कर सकती है। बिल्कुल, और उसके माध्यम से जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से उसको सुलझा लेते हैं चीज़ों को। सबसे खास बात होती है कि वो मिलती भी अपने अंदर ही है। और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल खुश हैं और स्वस्थ रहते हैं आप, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आपके आसपास का वातावरण भी इतना अच्छा हो जाता है। सो इस थॉट के साथ शुरू कर रहे हैं आज के दिन की, इस खूबसूरत सुबह की। रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है और आज हमारे साथ आपका एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल, आप इशारे अगर समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप इतने एडवांस हो चुके हैं कि हर चीज समझ पाते हैं। फिलहाल आज आप अगर मौसम को देख रहे हैं तो मौसम को अगर आप स्टडी कर पाते हैं तो इतनी अच्छी बात और क्या हो सकती है, आपने अपनी तैयारी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और आज सूर्योदय हो चुका है 6:04 पर और सूर्यास्त होगा 6:28 पर। और बिल्कुल टेम्परेचर की बात करें तो बिल्कुल जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बादल और जो सूरज का जो है ना खेल, ये आँख में चोली वाला खेल, ये चलता रहेगा आज। और बिल्कुल आप छुट्टी का दिन है तो एंजॉय कीजिए, और बिल्कुल अगर बाहर निकलने तो प्लीज़ ट्रैफिक एडवाइजरी बिल्कुल देख कर निकलेगा, क्योंकि आपके अगर जो छुट्टी है ना वो और भी अच्छे गुजरे, क्योंकि आप अगर उसको प्लानिंग से करते हैं ना, तो प्लानिंग अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं ना तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी स्पेंड हो जाती है और बिल्कुल हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, और अपनी चीज़ों को लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। एंजॉय अगर आप करते हैं लाइफ को तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल आपके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन गाना यहाँ पर क्यू अप कर रहे हैं, इसको सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात होने वाली है आज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग।

क्या बात है। और आप हमारे साथ बने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात करते हैं आज एक बहुत ही एक अमेजिंग पर्सनैलिटी की, और बिल्कुल उनके बारे में बात करते हुए हम बताना चाहते हैं कि कुछ शहादतें गोलियों से नहीं लिखी जाती, कुछ हौसलों से लिखी जाती हैं, और कुछ क्रांतिकारी हथियारों से नहीं अपने संकल्प की ताकत से इतिहास बदल देते हैं। और आज कहानी एक ऐसे ही अमर क्रांतिकारी की, जतेंद्र नाथ दास की, जिन्हें साथी प्यार से कहा करते थे जतेंदा। और 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में जन्मे, उनका बचपन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित था, और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वो जुड़े और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का हिस्सा वो बने और जेल भी गए, और बाद में वे क्रांतिकारी शाची जतेंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए, और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ बम बनाने की प्रशिक्षण भी हासिल कर लिया था।

1928 की बात करें तो कलकत्ता कांग्रेस के दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और भगत सिंह ने के आग्रह पर वे आगरा पहुंचे और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। 9 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंके थे वे जतेंद्रनाथ दास द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन जतेंद्रनाथ की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ सामान्य राजनीतिक बंदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था और इसके विरोध में 13 जुलाई 1929 से क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और जतेंद्रनाथ दास भी इस अनशन में शामिल हो गए थे। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होता चला गया, लेकिन इरादा नहीं टूटा। यह अनशन तकरीबन 63 दिनों तक चला था और फिर आया आज ही का दिन 13 सितंबर 1929 और लाहौर जेल में जतेंद्रनाथ दास ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत की खबर फैली तो देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया था तो रास्ते में अनेक स्टेशनों पर लोगों ने इस अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार के समय उमड़ी विशाल जनसभा ने बता दिया था कि एक शरीर भले ही शांत हो गया था, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश की आत्मा को जगा दिया था। जतेंद्रनाथ दास की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल मांगी नहीं गई थी, उसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वोच्च सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम अमर शहीद जतेंद्रनाथ दास को शत शत नमन करते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

हाँ क्या बात है। तो हमारा दिल भी गुमसुम है आपके बिना, लेकिन आपका साथ देखते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं, तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है हमारा बिल्कुल। और फुटबॉल का मैदान हो, गोल पोस्ट के सामने एक तेज दौड़ता खिलाड़ी और दर्शकों की तालियों की गुंज ने गूंज दी आवाज बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं भवानी रॉय जी की, और एक ऐसे फुटबॉलर जिन्होंने भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और भवानी रॉय ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत 1964 में ईस्ट बंगाल के साथ की, लेकिन जल्द ही उनका सफर पहुंच गया भारतीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब मोहन बगान के साथ। और 1968 में वे मोहन बगान की ओर से क्लब फुटबॉल खेलने लगे, और देखते देखते टीम के अहम खिलाड़ी वो बन गए थे। और 1969 का साल था जब उनके करियर का खास पड़ाव रहा, और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व मर्डेक का कप में किया और तीन मुकाबलों में मैदान में उतरे थे। और इसी साल उन्होंने क्लब स्तर पर भी अपना शानदार प्रदर्शन किया और 5 गोल दागकर टीम को कलकत्ता फुटबॉल लीग जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और मोहन बगान ने उसी वर्ष IFA शील्ड भी अपने नाम की थी। और उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त यही नहीं रुकी, 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल टीम का वो हिस्सा रहे, और मोहन बगान के साथ उन्होंने कई प्रतिष्ठित खिताबों में योगदान दिया, जिसमें रोवर्स कप की कई जीत भी शामिल है। 1972 में उन्होंने मोहन बगान की कप्तानी भी की, और यही साल क्लब के साथ उनके शानदार सफर का अंतिम वर्ष रहा। और फुटबॉल का मैदान छोड़ने के बाद भी भवानी रॉय का नाम भारतीय फुटबॉल की यादों में बना रहा, और आज ही के दिन 2021 को इस दुनिया से वो ये दिग्गज फुटबॉलर चला गया, और क्योंकि आज उनका निधन हो गया था। और उनके निधन पर मोहन बगान और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भी शोक व्यक्त किया था और भारतीय खेलों में उनके योगदान को याद किया था। और उनकी कहानी हमें बताती है कि खेल में सिर्फ गोल और जीत मायने नहीं रखती, खिलाड़ी की विरासत है वो भी बहुत बहुत मायने रखती है। और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसने मैदान पर अपना खेल छोड़ा, लेकिन इतिहास में भी एक अलग पहचान उन्होंने बना ली। और बिल्कुल भारतीय फुटबॉल के इस यादगार सितारे को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, आज उनको हम नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं।

बिल्कुल, और आप भी अपने कदम लगातार ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाइए, और क्योंकि आप अपनी सोच के साथ लगातार इस नई दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और बिल्कुल अगर सोच अच्छी होती है ना तो बहुत अच्छे आपको परिणाम भी मिलते हैं उसके। और जब सुर सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतर जाए, और जब राग सिर्फ गाया ना जाए बल्कि महसूस कराया जाए, तब जन्म लेती है एक महान कलाकार की पहचान। और ऐसी ही एक विलक्षण स्वर साधिका थी सुर योगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे, और 13 सितंबर 1932 को पुणे में उनका जन्म हुआ था। और किराना घराने की गायिका को अपनी विशिष्ट शैली उन्होंने बनाया, और आवाज को बिल्कुल एक नई पहचान दी, और उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प रही। और माँ की तबीयत जब ठीक नहीं रहती थी तो उनके घर में एक गुरुजी हारमोनियम सिखाने आया करते थे, और नन्ही प्रभा वहीं बैठकर सुनती रहती थी, और शायद वहीं से उनके भीतर सुरों की दुनिया की ने दस्तक दे दी थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी साधना जिसने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की अग्रणी गायिकाओं में शामिल कर दिया। और ख्याल हो या ठुमरी, दादरा हो या गजल, भक्ति गीत हो या फिर सुगम संगीत, प्रभा अत्रे ने अलग अलग विधाओं को अपनी गायकी में बखूबी पिरोया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता से अपूर्वा कल्याण, दादरी कौंस, पटदीप मल्हार, तिलंग भैरवी और रवि भैरवी जैसे रागों की रचना भी की। और वे केवल गायिका नहीं थी, शिक्षिका थी, शोधकर्ता, संगीत चिंतक, लेखिका और गुरु भी थी, और उन्होंने संगीत पर कई पुस्तकें लिखी, और उनकी पहली पुस्तक स्वरामयी को महाराष्ट्र सरकार का सम्मान भी मिला। और उनका सपना भारतीय शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुँचाना और उसे समझाना आसान बनाना और नई पीढ़ी को उससे जोड़ना। उनकी प्रतिभा और योगदान को देश ने भी सम्मान दिया, पद्मश्री, पद्म भूषण, और 2022 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। और 13 जनवरी 2024 को वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके स्वर आज भी जीवित हैं। और क्योंकि महान कलाकार जाते नहीं, वे अपनी कला से हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं। और आज उनके जन्म दिवस पर स्वर साधना की इस महान विभूति को हम नमन करते हैं। और बिल्कुल, प्रभा अत्रे जी सिर्फ एक नाम नहीं, बिल्कुल वो बल्कि भारतीय संगीत की एक मधुर विरासत है। आज हम उनको नमन कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और आज आप संडे में हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस मॉर्निंग शो को। फिलहाल आशुतोष है आपके साथ, और आकाशवाणी रेनबो पर आपका साथ यूं ही बना रहे। न्यूज़ ऑन एयर ऐप है हमारी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं भी कभी भी आप उसको सुन सकते हैं। उसके माध्यम से हमें लगातार स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और बिल्कुल, गोली सीने में लगी, सांस थमने लगी, लेकिन कदम नहीं रुके। जिस सैनिक की ने मौत को सामने देखकर भी दुश्मन की राइफल छीन ली, जिसने घायल अवस्था में भी अपने जवानों को नेतृत्व दिया, वे थे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। और आज के दिन 1946 को मुंबई में जन्मे उन्होंने 16 जनवरी 1972 को भारतीय सेना की महार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। और अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व, इन गुणों ने उन्हें अपने साथियों के बीच खास बनाया। प्यार से साथी उन्हें कहा करते थे पैरी साहब। और 1987 में श्रीलंका में शांति स्थापना करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन पवन शुरू हुआ। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 8 महार के साथ जाफना क्षेत्र में तैनात थे। 25 नवंबर 1987 की सुबह एक तलाशी अभियान के दौरान अचानक दुश्मन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और मेजर परमेश्वरन ने मोर्चा बिल्कुल संभाल लिया था। और तभी एक गोली सीधे उनकी छाती में लगी, लेकिन ये गोली उनके हौसले को नहीं रोक सकी। उन्होंने घायल होने के बावजूद उसी उग्रवादी पर झपट्टा मारा और उसकी राइफल छीनी और उसे ढेर कर दिया। सीने में गोली थी, शरीर में दर्द था, फिर भी अपने जवानों को निर्देश वो लगातार देते रहे और उनके नेतृत्व में भारतीय जवानों ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और कई हथियार उनके बरामद किए। लेकिन इस वीरता की कीमत बिल्कुल थी जो मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का सर्वोच्च बलिदान। 25 नवंबर 1987 को उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और उनकी अदम्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक सैनिक चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल, देश के लिए आखिरी सांस तक डटे रहने का साहस आखिर होता कैसा है? जवाब बिल्कुल साफ है, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जैसा। और सीने पर गोली खाकर भी जिसका हौसला नहीं टूटा, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, भारत के शौर्य की अमर कहानी थे। और आज हम मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को शत शत नमन करते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक एवं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 102.6 और बिल्कुल एक गेंद जो पिच पर टपक खाए और लगभग ऐसी घूम जाए कि आप विश्वास ही ना करें, गेंदबाज ऐसा देखता रह जाए कि ये क्या हो गया, और बल्लेबाज भी हैरान हो जाए कि ये कैसे हो गया, और स्टंप्स बिखर जाए दुनिया क्या उठे, वाह क्या बात है, गेंद नहीं ये है जादू। और वो जादू था शेन वॉन का बिल्कुल। और 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जन्मे शेन वॉन क्रिकेट की दुनिया के सबसे महान लेग स्पिनर या गेंदबाजों में गिने जाते हैं। 1992 में भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था और फिर शुरू हुआ विकेटों का ऐसा सफर जिसने इतिहास रच दिया। और 1907 बात करें कि 1992 में जो ये सफर शुरू हुआ था, और साथ ही साथ 145 टेस्ट उन्होंने खेले थे, 708 विकेट उन्होंने हासिल किए इन टेस्ट मैचों में, 194 वनडे मैच खेले और 293 विकेट्स इन्होंने इन वनडे मैचेस में हासिल किए। लेकिन वॉन की एक गेंद ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया था, और 1993 की एशियज सीरीज में माइक कैटन को फेंकी गई उनकी गेंद बॉल ऑफ द सेंचुरी बन गई थी बिल्कुल। और वो किस तरीके से लेग साइड पर वो गेंद उन्होंने फेंकी और कैसे उनकी ऑफ स्टंप लेकर वो गेंद चली गई, और अंपायर भी इतने सरप्राइज हो गए थे उस गेंद को देखने के बाद। अगर आपको मौका लगे वो वाली आप गेंद एक बार दोबारा से देखिएगा, अपने आप आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा कि कैसे हो गया सब। और वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि बल्ले से भी उन्होंने अपना खास अंदाज पेश किया, और टेस्ट मैचेस में 3154 रन बनाए, हालांकि उसमें कोई शतक नहीं शामिल था, लेकिन उनका सर्वोच्च स्कोर 99 रहा। तो हो सकता है एक अगर रन वो बन जाता तो शायद एक सेंचुरी भी उनके नाम हो जाती, और भारत से भी खास रिश्ता उनके साथ रहा है। और सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी क्रिकेटिंग जंग तो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में हमेशा रहती है, और वो कई बार मजाक में भी कहा करते थे कि सचिन उनके सपनों में आया करते हैं, और वो ऐसे ऐसे सिक्सेस मारते उनकी गेंदों पर। तो ये खास अंदाज उनका था, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर थे वो। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को 2008 में पहली बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान भी वही थे। सो एक जो टीम स्पिरिट होती है ना, उसमें भी वो एक नंबर वन खिलाड़ी थे। और 4 मार्च 2022 को शेन वॉन दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी घूमती गेंद आज भी क्रिकेट की किताबों में बिल्कुल एक इतिहास लिख चुकी है। और शेन वॉन एक गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिन के एक जादूगर हैं, और बिल्कुल आज उनके जन्मदिवस पर इस महान क्रिकेटर को हम याद करते हैं, और क्रिकेट की दुनिया के इस वॉर्नी को हम सलाम करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग टेली एनसीआर।

क्लियर चैंपियन को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ आपको भी हम सलाम करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं शिवानी कर्माकर सोनितपुर असम से, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है और ये मैसेज है, इस वक्त डॉक्टर राधा तेजवानी हैं इस वक्त हमारे साथ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से और इस वक्त हमें सिंगापुर से सुन रहे हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भल्ला जी भी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन अमेजिंग लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तेजपाल सिंह प्रजापति यमुनानगर से इस वक्त हमारे साथ हैं, सुप्रभात भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमें सुन रहे हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत अमेजिंग लग रही है इनको, थैंक यू सो मच। डॉली भी इस वक्त हमें सुन रही हैं दिल्ली से, डॉली थैंक यू सो मच आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तमाम श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त हमें सुन रहे हैं और लेकिन मैसेज नहीं कर पाए किसी कारणवश, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें लगातार सुनते रहिए ऐसे और आकाशवाणी रेनबो पर लगातार इन्फॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आपके लिए अपडेट्स हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। और फिलहाल इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, अपना सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहे आपका और आज संडे को तो आप एन्जॉय करते ही हैं, बाकी दिन भी एन्जॉय करते रहिए, काम को एक फन की तरह लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में कभी प्रेशर नहीं लेना आपको, हमेशा मूवमेंट को एंजॉय करना है, तो मूवमेंट एंजॉय करेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इजी करना है उनको, है ना। सो आप इजी कैसे कर सकते हैं, म्यूजिक को अपने साथ रखिए तो अपने आप चीजें स्मूथ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। ब्रिक्स देशों के समर्थन से नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नामक पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। अमेरिका की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोडेई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग से इसके तेजी से हो रहे विकास की गति को धीमा करने का आग्रह किया है। भारत के एसडी प्रज्वल देव ने वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल चैलेंजर में फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन पिटून कॉजमिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों, मॉर्निंग मैगजीन शो में लगातार आप तक काम की जानकारियां पहुंचाने का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल स्वागत है इस घंटे में आपका इस गीत के साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। दोस्तों, सितंबर का महीना अपने आप में बड़ा ही खास होता है। खास इसलिए होता है कि मौसम जो है धीरे धीरे करवट बदलता है। और मौसम जब हम जहां एक दो महीने पहले हम बात कर रहे थे लगातार कि तापमान इतना ज्यादा है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, अब धीरे धीरे वो बातचीत थोड़ा सा बदलने वाली है, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा अब सर्दियों की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे मौसम में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जानना, कि मौसम आज कैसा रहेगा, आने वाले कल में कैसा रहेगा, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है बदलते मौसम में। क्योंकि अक्सर जब सर्दी होती है तो भी हम सावधान होते हैं, और गर्मी होती है तो भी हम पूरी तरह से सावधान होते हैं, लेकिन ये जो बदलता हुआ मौसम होता है ना, उसमें थोड़ी सी हम लापरवाही कर जाते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ समस्याएँ भी हम देखते हैं, तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। मौसम की अगर हम बात करें तो सितंबर के दौरान मानसून का जो असर है दिल्ली में वो बना हुआ है। आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। वैसे सुबह सुबह की धूप देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब धूप होती है ना तेज़ गर्मियों में तो हम उससे बचते हैं, लेकिन जब धूप थोड़ी ऐसा लगता है कि एक नरमी लिए हुए, तो उस धूप का आनंद लेते हैं। और सुबह की धूप का तो अपना ही मज़ा है, क्योंकि वो आपको अच्छा भी फील कराती है, साथ ही साथ विटामिन डी भी देती है। तो सुबह सुबह की धूप में बहुत खूबियाँ हैं। तापमान करीब 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, और बारिश होने पर लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक है छाता और दूसरा है पानी की बोतल, क्योंकि पानी बरस रहा है लेकिन आपको पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए मौसम का हम उठा सकते हैं आनंद। और ये मौसम तो वैसे भी बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए।

सुबह सुबह का ये समय जो है ना, वो ख्वाबों और ख्यालों से निकलने का तो एक मौका होता ही है, क्योंकि रविवार की सुबह अपने आप में बड़ी ही खास होती है। थोड़ी फुर्सत होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त भी होता है। रोज़ की तरह भागम भाग थोड़ी कम होती है, तो ठीक है, रविवार को आप यूं ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं हम, और अपने इस गीत जो आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं उसका और जानकारियों का सिलसिला यूं ही बनाए रखते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when

0: ना।
1: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों अब समय है कि आपको बता दें कि खेलों में क्या खास चल रहा है, खेलों में क्या है आज। और आज तो है सुपर संडे। सुपर संडे हो भी क्यों ना, क्योंकि आज है दो दो बड़े मुकाबले। हमारी महिला क्रिकेट टीम और पुरुष टीम दोनों के मुकाबले आज हम देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इन मुकाबलों की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच में होगा मुकाबला, पहला T20 मैच, और वहीं भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे से एशिया कप के फाइनल में। और ये मुकाबला भी होगा देखना बड़ा ही दिलचस्प, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और इस फाइनल मुकाबले में भारत से हैं बड़ी उम्मीदें। यूँ तो हर मुकाबले में उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जब फाइनल होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम की निगाहें श्रीलंका के खिलाफ। आज महिला T20 एशिया कप फाइनल में हराकर श्रीलंका को 8वीं बार खिताब जीतने पर लगी है निगाहें। और इसके लिए अगर भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों की बात करें जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा और जिनके ऊपर निगाहें खास तौर पर रहने वाली हैं, तो उनमें सबसे बड़ा नाम है शेफाली वर्मा का। इनके साथ ही दीप्ति शर्मा पर भी काफी रहेगा दारोमदार। दो अर्धशतक समेत 168 रन शेफाली अब तक बना चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और वहाँ यानी कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो धीमी और स्पिनर्स की मददगार पिच है ना, उस पर भी उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ बल्लेबाजी की है। वहीं अगर हम बात करें भारत के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की, तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि 2 मैचों में उनका बल्ला ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन फिर भी 1 सेंचुरी उनके नाम है। और कब वो धमाका करते हैं इसमें सारे क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि कितनी बड़ी वो बल्लेबाज हैं और जिस कमाल के साथ वो खेलती हैं वो भी देखने वाली बात है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो कप्तान है चामारी अट्टापट्टू, उन्होंने सर्वाधिक 11 विकेट लिए हैं। उनका ही बिल्कुल बराबरी पर चल रही हैं हमारी दीप्ति भी, और इन्होंने भी 11 विकेट लिए हैं और बल्ले से भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो आने वाले आज जो मुकाबला है आज का, ये 8 बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस तरह से खेलती है। वैसे अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खास तौर पर दीप्ति ने कहा कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टीम हमारे सामने कौन है, हमें अपना अच्छा क्रिकेट खेलना है और उसके बाद परिणाम हमारे पक्ष में होगा। तो आज भी उम्मीद यही है कि टीम जो है हमारी अच्छा खेले, सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करें और अच्छा परफॉर्मेंस दें, ये जरूर हम चाहेंगे। और अगर हम बात करें अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की, तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला T20 मुकाबला है उसमें ये बात चल रही थी कि ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 ओपनर्स हैं और 3

ओपनर्स में ये एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक क्रिकेट में एक जब किसी कप्तान के सामने ऑप्शंस होते हैं और ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको हर कोई कप्तान चाहता है लेकिन सरदर्दी भी होती है, तो वैसा ही कुछ है इस समय श्रेयस अय्यर के सामने, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं और संजू सैमसन भी हैं, तो तीनों में से दो ही लोग जो हैं ओपनिंग में आ सकते हैं। अब ये दो लोग कौन होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो हमारे कमाल के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो जिस तरह की शुरुआत देते हैं और जिस तरह से क्रिकेट प्रेमी उनको देखना चाहते हैं, वो उन पर बहुत निगाहें होंगी, लेकिन टीम का संयोजन कैसे बनता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक थोड़ी सी चिंता की बात आई थी कि ईशान किशन थोड़ा महसूस कर रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे, थोड़ा उनको चोटिल होने की ऐसी खबर आ रही थी, लेकिन पहले से बेहतर हैं और श्रेयस अय्यर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया भी है कि उम्मीद है कि वो इस मुकाबले का हिस्सा होंगे। वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान की टीम की, तो इब्राहिम जादरान जो कि कप्तान है उनके और उनकी टीम में भी कमाल के खिलाड़ी हैं, स्पिनर्स तो कमाल है उनके, राशिद खान को हम सभी लोग जानते हैं, इसके अलावा मोहम्मद नबी क्या कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं, और बहुत अच्छी उनकी भी टीम है। और T20 में तो कहा भी जाता है कि T20 में आप अगर अच्छा खेल जाएं तो फिर बड़ी और छोटी टीम कौन है इसमें ज़्यादा फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़े ही ओवर्स में मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन हम जानते हैं हमारी टीम है एकदम बढ़िया सॉलिड, और कोशिश यही है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम करेगी कमाल। क्योंकि एक और खास बात ये भी है कि जसप्रीत बुमराह जो है उनकी भी वापसी हुई है, तो इतना बड़ा अगर खिलाड़ी आपकी टीम में वापस आता है तो उससे भी गेंदबाजी होती है मजबूत, तो हम इसी मजबूत इरादे के साथ आज अपनी दोनों ही टीम्स को, यानी कि महिला क्रिकेट टीम और पुरुष टीम दोनों को ही देते हैं शुभकामनाएं।

बिल्कुल इसी तरह से चीयर करना है अपनी टीम को जब मुकाबले में अगर आप जा रहे हैं ये मैच देखने, नहीं भी देख रहे हैं तो टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर इसकी कमेंट्री सुन सकते हैं आप, और इस मुकाबले से जुड़ी जानकारियां जो है हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं कि अगर आप मैच देखने जा रहे हैं तो फिर किन चीजों का आपको रखना है ध्यान। तो आपको बताते चलें कि अगर मैच देखने हमारे वो साथी जो जा रहे हैं स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, तो फ्री पार्किंग है माता सुंदरी राजघाट पावर हाउस एवं वेलोड्रोम रोड के नीचे से, और वहां जा सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जो साथ में नहीं ले जाना है, और उन चीजों में है लैपटॉप, कैमरा, हेलमेट, बैकपैक, खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें, पावर बैंक, इसके अलावा लाइटर और माचिस वगैरह, ये साथ में नहीं ले जाना है। और अगर आप ले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। और मैच शुरू होने के एक घंटे पहले और ख़त्म होने के एक घंटे बाद तक यातायात जो है वो थोड़ा उसमें डाइवर्जन रहेगा। बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली गेट से जवाहरलाल नेहरू मार्ग तक, दरियागंज से बहादुर शाह जफर मार्ग तक, और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड तक मालवाहक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। इसलिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसने लोगों से अनुरोध किया है कि आज और 15 तारीख को, साथ ही 17 तारीख को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक इन सड़कों का उपयोग करने से बचे, क्योंकि जो दर्शक हैं स्टेडियम से आ जा रहे होंगे और भीड़ भाड़ होने की आशंका है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और आज तो वैसे भी ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से कई चीजों का ध्यान रखना है आपको, अगर आप निकल रहे हैं घर से तो थोड़ा समय लेकर चले, और कोशिश करें कि दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से सफर करना है आसान और आप पहुंचते भी से हैं, प्रदूषण भी नहीं होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी और भी सुविधाएं आपको होती हैं। तो इस दौरान आप जिस भी रूट पर जा रहे हैं, अगर आप नई दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना रूट जो है पहले से चेक करके चलिए, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और कुछ रूट्स पर डाइवर्जन्स भी हैं जो आपको समय समय पर पता चल सकता है, अगर आप फॉलो करें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और जो यातायात की निर्देशिका है उसका पालन करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपके साथ राजेश, और वाकई में इस गाने में एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो कल का इंतजार करे जीना दुश्वार करे, यानी कि जो काम हमें करना है वो आज करके हम आगे बढ़ते हैं, कल एक नया काम होगा, नए तरीके से नए सिरे से उस काम को करेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। कितना सीधा सा रास्ता है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत बहुत जरूरी होती है और शुरुआत करने के लिए आज का दिन सबसे बेहतर होता है। और आज के दिन अगर आप सोच रहे हैं कि रविवार का दिन है, चलिए कहीं घूम आते हैं, और किसी ऐतिहासिक स्थल पर आप जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक जानकारी है कि अगर आप दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो पहले उनकी स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि राजधानी के कई ऐतिहासिक स्मारकों में संरक्षण और मरम्मत का काम चल रहा है। इनमें हौस खास किला, जंतर मंतर, अग्रसेन की बावली जैसे कुछ लोकप्रिय स्थान भी शामिल हैं, और कुछ जगहों पर पूरे परिसर के बजाय केवल विशेष हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ी एक जानकारी के हिसाब से दिल्ली के कुछ स्मारकों में अलग अलग तरह के संरक्षण, संरचनात्मक मरम्मत या पर्यटक सुविधाओं से जुड़े काम किए जा रहे हैं, और इनका उद्देश्य है ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखना और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना। तो सुधार के लिए थोड़ा सा, ये कहते हैं ना कि कुछ कुछ ये इस तरह की चीज़ें जब होती रहती हैं लगातार उसकी मरम्मत होगी तो वो आने वाले कल में भी बेहतर दिखेंगी, बेहतर रहेंगी, इसके लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए किसी स्मारक पर पहुंचने से पहले वहां प्रवेश की जो मौजूदा व्यवस्था है और समय सारणी जो है उसकी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा वहां जाना, और वहां जाकर वहां के अनुभव को अपने अनुभवों में और शामिल करना ये भी काफ़ी आसान होगा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश, और दोस्तों अब समय है कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और जानकारी ये है आपके लिए कि नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद ने 99 परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं में सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था से लेकर बाजारों के विकास, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। नगर परिषद की ओर से इन परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि जिन परियोजनाओं में किसी कारण से देरी हो रही है उनकी अड़चनों को दूर करके काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए परियोजनाओं की प्रगति और खरीद प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जा रही है। आम लोगों के लिए इन योजनाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि सड़क, जल निकासी, बाजार और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े काम सीधे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, और अलग अलग परियोजनाओं की अलग अलग समय सीमा होगी, और किसी खास इलाके के निवासी जो वहाँ की परियोजना है उस पर भी स्थानीय प्रगति पर नजर रख सकते हैं, और ये चीजें जो है हमारे आने वाले कल को करेंगी बहुत ही आसान। तो इन कार्यों में कई बार क्या होता है ना कि जब कोई कार्य चलता है उसकी वजह से थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन थोड़ी सी असुविधा को हमें ये देख कर चलना है कि आज की यह असुविधा ना कल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगी, और इसके बाद जो चीजें होंगी वो लगातार बेहतर होंगी।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में समय आ गया है कि आपसे अनुमति लें, लेकिन इस दौरान कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताना, जिनका जिक्र करना है बहुत जरूरी, और वो है आप, क्योंकि आपने भी लगातार प्रोग्राम के बीच में अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई, अपने सुझाव हम तक पहुंचाए, और साथ ही साथ कुछ और चीजें जो आप भविष्य में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम तक अपनी बातें पहुंचाई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जो आपके मैसेजेस आए हैं उनमें हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो प्रदीप सलूजा जी हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, इनकी बात हम तक पहुंची है। डॉली ने दिल्ली से मैसेज लिखकर अपनी बात हम तक पहुंचाई है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें राजकुमार के संतानी साहब ने अकोला महाराष्ट्र से, इन्होंने भी अपनी बातें लिखकर पहुंचाई हैं, और प्रोग्राम में जो बातें सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, उनको पसंद आ रहे हैं, ये बात भी अपनी हम तक इन्होंने पहुंचाई है। इसके अलावा हितेंद्र दास ने असम से भी अपनी बात हम तक लिखकर पहुंचाई है, और गांव व घर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, इनका भी मैसेज हम तक आया है। इसके अलावा मैसेज हम तक पहुंचाया है राजेश भल्ला जी ने, जो कि एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ, इनकी भी बात हम तक पहुंची है, और साथ ही साथ अजय ने झारखंड से अपनी बात पहुंचाई है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि आपको बता दें कि आने वाले कुछ घंटों में आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं FM रेनबो पर। तो अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, और 9:02 से होगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने। आशुतोष भारद्वाज इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे, और 10:02 से आप सुन पाएंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर। हरप्रीत कौर होंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में, और 11:00 से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और 12:02 से होगा प्रोग्राम हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्ले इट कूल, और 1:02 से आप सुन पाएंगे वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको इंतजार, मेरा वाला सॉन्ग। और ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और हम आपकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाते हैं। और इसके बाद 2:00 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम छोटे उस्ताद, और आज इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगी दीपिका भटनागर। तो फिलहाल राजेश को दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी चलते चलते, ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम से शुरू हुआ था। ब्रिक्स देशों के समर्थन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालीन संबंधों पर बल दिया है। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपि की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। अमेरिका की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डारियो एमेडेई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग से इसके तेजी से हो रहे विकास की गति को धीमा करने का आग्रह किया है। भारत के एसडी प्रज्वल देव ने वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल चैलेंज में फ्रांस के कास्टेटिन बीटून केज मिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर्स युगल खिताब जीत लिया है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 102.6 और मैं हूं आशुतोष, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए हम यहां पर क्यूअप कर रहे हैं। और इसके बाद हर 15 मिनट में आपको मिलेगा रेट्रो का एक अमेजिंग फ्लेवर। फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने। और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, धुन आपके कानों में गूंजनी शुरू हो चुकी है। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: Ladies and gentlemen, listen up to the loser song.

हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, नेवर फील योर सेल्फ अ लूजर बिकॉज आप हैं विनर और नंबर वन के विनर हैं। फिलहाल आपके साथ मैं हूं आशुतोष और आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ये वक्त हो चुका है हमारे पहले रेट्रो सॉन्ग का। बिल्कुल 9:15 हो चुके हैं जी भाई साहब।

बिल्कुल घड़ियां मिला लीजिए। और जो पहला गाना लेकर आना, रोमांटिक अमेजिंग गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और साथ में है सुमन कल्याणपुर और हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को लिखा है, और म्यूज़िक है शंकर जयकिशन साहब की अमेजिंग जोड़ी का। और बिल्कुल ये अमेजिंग गाना फिल्म सूरत से ख़ास आपके लिए निकाल रहे हैं हम आकाशवाणी स्टूडियो से। फिलहाल इसको एन्जॉय कीजिए और इस वेदर को भी एन्जॉय कीजिए, बहुत ही अमेजिंग वेदर है। एंजॉय करते रहिए मौसम को भी और सॉन्ग्स को भी, क्योंकि ऑसम मौसम। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो।

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
0: बिल्कुल, और अब जो हमारा वक्त हो चुका है अगले रेट्रो का, बिल्कुल फिल्म पड़ोसन से आशा भोसले जी की आवाज में ये वाला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और आर डी बर्मन साहब का बेमिसाल म्यूजिक है और बहुत ही अमेजिंग गाना है ये, सायरा बानो जी के ऊपर पिक्चराइज है। आइए इस गीत को एंजॉय करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस जो छुट्टी वाला मौसम है ना, इसको और भी अमेजिंग बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। और बिल्कुल अब जो वक्त हो चुका है हमारा, जो इस प्रोग्राम का आखिरी रेट्रो सॉन्ग है, वो आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता से किशोर कुमार की आवाज़ में और आर डी बर्मन साहब का अमेजिंग म्यूजिक। और गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज। ये गीत बहुत ही अमेजिंग गाना है, एनर्जी से भरपूर है। आइए इस गीत को एंजॉय करते हैं और अपने दिलों में एनर्जी भर देते हैं एक बार फिर से। डांस के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। उसके बाद देखो और बहुत ही अमेजिंग गाना आपके लिए क्यों कर रखा हमने। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, आशुतोष के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं।
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में needle या injection share करने से HIV फैलने की बात लिखी है। और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

असम से हमारे साथ गुड मॉर्निंग हमें भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद कैफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसमा अंसारी, और बिल्कुल ये हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। और साथ ही साथ हैं शिवांश मिश्रा इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। साथ ही साथ हैं ये बुलंद बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल।

साक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके सारे फैमिली मेंबर्स, और साथ ही साथ है हमारे साथ पंकज अमरावती महाराज से कनेक्टेड है, डॉली इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ राजकुमार संतानी इस वक्त अकोला महाराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और जामुन देवी साहू इस वक्त, बबलू साहू हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक और मैसेज है प्रदीप सलूजा जनकपुरी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है, बहुत ही अमेजिंग गाने इनको बहुत पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मैं चलता हूँ और बस आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में, गणपति बप्पा मोरिया, और बिल्कुल ऐसे इंजॉय करते रहे लाइफ को, और गणपति जी का आशीर्वाद आपके पास लगातार आपके ऊपर बरसता रहे, ऐसे बना रहे। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी 92.6। आशुतोष आपसे लेते हैं अनुमति, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गणपति बप्पा मोरिया।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं या

0: याद रखोगे।
1: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है।

होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, जिन हस्तियों का वो जिक्र करते हैं, उन्हीं को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। उन विषयों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया स्वनिधि योजना का। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हम सभी के समक्ष है। आत्मनिर्भर भारत के पावन संकल्प को धरातल पर साकार करती पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा जगाया। आज हमारे बीच एक ऐसी ही कर्मठ और स्वाभिमानी लाभार्थी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है और कैसे ये लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगा रही है। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, आप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद नीलमा जी।
1: और हमारे साथ हैं श्रीमती बबीता शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। बबीता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: आपको सबको मेरा नमस्कार है और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सबके बीच में आमंत्रित हो पाई।
1: तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, अपने विशेषज्ञों से हम इनके जवाब जानेंगे और साथ ही योजना के बारे में आज हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस योजना यानी स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है, और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
3: धन्यवाद नीलम जी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। सो इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे दो उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा। यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा। जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है। और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है
1: जी।
3: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है। तीन चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
1: जी,
3: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है, और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है। और इसको जो है वो चाहे तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं, और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है, और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा
1: जी।
3: और अगर वो उसे भी चुका देंगे उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है। फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है, और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है। अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं
1: जी। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते हैं
3: जी, जी, जी।
1: तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
5: जैसा कि शैलेश जी ने मुक्त जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है
1: जी।
5: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक COB जिसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कहते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है। अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें
1: जी।
5: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ पीएम स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल ग्रुप था, जिनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी, उनको जोड़ा गया, तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे कि डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको QR कोड भी देते हैं, तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको QR कोड हर बैंक का मिलेगा और कितनी सुविधा हो गई है। हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके साथ जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब PM स्वनिधि, जो कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि, तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो
6: जी।
5: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर वो सब समझदारी के अंदर आ जाती है जो कि इसको सफल बनाया है।
6: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहे एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है,
5: बहुत ही आसान।
6: बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से ऋण ले सकते हैं और उसकी किस्त भी चुका सकते हैं जी। ये आपने बताया बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं।

0: हैं आजकल?
1: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं,
0: जी
1: जैसे डीएम जी से मिलके आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है, और डूडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला तो वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड ले जाकर, और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी, अगर आप किसी भी को भी ये योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं।
0: जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप अपना काम कर रही थी तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आईं, कैसी परेशानी आई?
1: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था,
0: जी
1: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था,
0: जी
1: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डूडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डूडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपये का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
0: जी
1: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला।
0: अच्छे से चला है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही
0: जीना ही
1: पड़ेगा।
0: पड़ेगा। आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है। लीजिए, आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से, और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने

0: जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या यही वही वेंडर्स कार्ड है जिसकी आप
1: जी
0: उल्लेख
1: हाँ
0: कर रहे थे?
1: बिल्कुल, ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो
0: जी
1: शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इशू करते हैं।
0: जी
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकलकर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है।
0: जी
1: सो वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं,
0: जी
1: लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहाँ पे जो वीडियोज LOR इशू कर रहे हैं यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं,
0: जी
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
0: जी जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी, स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
1: बिल्कुल नहीं, ना ही किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं वो ठेला भी उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था, अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग QR कोड लगा रहे हैं ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो डिजिटली हो जाए, तो उसपे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
0: जी,
1: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है, वहां पे भी 2,000 रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है।
0: जी यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण न चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
1: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक संस्था है CGTMSE
0: जी,
1: जो सिडबी के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है, तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया
0: जी,
1: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा उस गारंटी फी के बदले में, वो जो कंपनी जो CGTMSE जो गारंटी प्रदान कर रही है
0: जी,
1: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता है।
0: लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो?
2: बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी हम स्वर्णनिधि में भी उस तरह से कि आपका जो CIC है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे
0: जी,
2: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है
0: जी।
2: तो जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या CIC बोलते हैं
0: जी,
2: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की, उसमें डिफॉल्ट दिखेगा तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
0: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति वश कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे फिर नुकसान हो सकता है। जी
1: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है
0: जी,
1: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो CIC में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई
0: जी, बिल्कुल,
1: तो आप विश्वास खो जाते हैं मार्केट का। और ये सब डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल होगा, सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लेंडर हैं वो हमेशा कोई भी आवेदन अगर आपके पास आता है ऋण का तो उसको स्वीकृति करने के पहले उस डेटाबेस को देखते हैं
0: जी,
1: तो वहां पे अड़चन आएगी, वहां पे बाधा आएगी कि उनका रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट

0: का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
1: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि क्यूआर कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
2: जहां तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, तो अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया
1: जी,
2: जो तीनों चरण है इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें एक से दो दिन लगता है
1: जी।
2: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में, जैसे अर्बन लोकल बडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है
1: जी।
2: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या बीसी कॉरेस्पोंडेंट है
1: जी,
2: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, और वहां जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके वन बाय वन पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि ओटीपी आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में। चूंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें सीजीटीएमएससी की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग, बीसी कॉरेस्पोंडेंट, बैंक कर्मी और यूएलबी के लोग, सब लोग

0: मिलकर कर रहे हैं तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये।
1: जी राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है तो क्या इसका लाभ मिलता है और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
0: निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि एक मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
1: जी,
0: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बड़ी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया, ये शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा आप जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
1: जी,
0: जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है और शुरुआत में ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं और उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है और वो 50,000 का सैंक्शन सफलता करते हैं नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण
1: जी,
0: तीन चरण है
1: जी,
0: जिसमें 50,000 और 5 लाख और 10 लाख। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20 लाख का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं, और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं
1: जी।
0: ये है और उसके आगे तो अंत नहीं है। बैंक जिस तरह से आज सुदृढ़ स्थिति में है, अपने वित्तीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका रीढ़ बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब एक अलग तरीके का एक कैटेगरी तैयार हो रहा है पीएम स्वनिधि के माध्यम से, जो निश्चित रूप में एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा
1: जी। ऐसे में ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि किसी ने लोन लिया और समय पर चुका भी दिया, लेकिन या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या वो ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें अन्य कामों की, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, साख उनकी अच्छी है, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम न कर पाए तो छोटे छोटे समूहों में मिलकर वो लोन ले और कोई बड़ा काम शुरुआत कर सके उसकी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पहले से जो ये कह लें कि अर्बन और रूरल दोनों जगह में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं, और ये शुरुआत में 6 महीने की डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको, उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे, तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनकी मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं
1: जी, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं जी। ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
0: मैं चूंकि पीएम स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूं
1: जी,
0: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
1: वाह, बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, और कभी अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब जाकर लोग अपना काम शुरू करते थे। लेकिन ये सारी जो दुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी है पीएम स्वनिधि योजना, क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है, और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है, और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है, और फिर उसी सपने से जुड़ता है पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी, ये बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे कौन जुड़े हैं?
1: मैं सबसे अपने श्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी। और 1 मैं, 4 हम प्राणी हैं
0: जी।
1: मेरा परिवार जिस तरीके से चलता है शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी, ये पीएम सुनिधि योजना से जुड़कर। पीएम माने साथ पीएम जी मेरे साथ चलते हैं। उस सुनहदी का मतलब है हो गया मेरा सुनहरा पल
0: जी,
1: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला। तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इससे अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ, और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ। और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है, तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी भेजती हूँ उनके कन्यादान के लिए
0: जी।
1: मुझे इतनी खुशी है आज, शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची। यार मोदी जी का मुझे थोड़ा उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है, तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया, सभी महिला है या पुरुष है इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
0: जी
1: मोदी जी के जिगर के करीब। आज मैं इतनी खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची। तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ, एक में लाभ भारती किस लिए भी क्यों, इस योजना का लाभ मुझे मिला, तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ
0: जी। तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं
1: जी? मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे, तो मैं इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो जब वो दोपहर को आना 1 घंटे बाद उनको आराम करके, तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली, और मेरे बच्चों ने
0: मुझे पढ़ाई कर रहे हैं
1: जी, मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया
0: जी।
1: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ। मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है, तो मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो 2-2 रुपए की कभी टॉफी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे
0: जी। तो मुझे कहीं छोटी उम्र से ही आपने स्वावलंबन सिखाया उन्हें,
1: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
0: अपना काम
1: अपनाया, तो इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पांस मिला अपने बच्चों से भी, तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसे बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें और मेरी तरह एक महिला बनके अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पे खड़ा हो सकती है।
0: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है, और दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती है जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है, लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी हैं। बबीता जी आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है। शैलेश जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
2: यह योजना एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है
0: जी,
2: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है
0: जी,
2: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं
0: जी,
2: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं
0: जी।
2: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़े और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें
0: जी। राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी न किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
3: निश्चित रूप से, जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से हैं, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे उसमें कमी आई है और लोग रोजगार की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं
0: जी। बबीता जी आपसे जानना चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
1: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया
0: जी।
1: तो ये अभी सर ने बोला कि 15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से। 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँची
0: जी।
1: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 पे से अपना व्यापार चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें 1-2 लाख रुपए चाहिए, 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए
0: जी। और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
1: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें किस्त अपने आप ही उससे ही कट जाती है
0: जी। और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
1: अगर पीएम सुनिधि जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ धन्यवाद, जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं
0: जी।
1: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ, यही निवेदन करती हूँ।
0: तो बबीता जी, आपका ये हौसला बना रहे हम यही चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और गाना हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना चाहेंगी?
1: जिंदगी प्यार का गीत है
0: जी,
1: इसको सुनना पसंद करूंगी
0: जी। बिल्कुल, यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और हमें बबीता जी ने, जो कि पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं, आपने अपने गाने के माध्यम से हमें संदेश दिया, जिंदगी प्यार का गीत है। तो गीत जो है वो तब बनता है जब हमें लोगों का साथ मिलता है, और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो लोगों का साथ दे रही है हर मुश्किल के घड़ी में, ताकि हमारे जो रेड़ी पटरी पर काम करने वाले भाई बहन हैं और जो इस समय संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं या फिर खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, वो बैंक से लोन ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके, और फिर बबीता जी की तरह समय से वो लोन चुकाकर बड़े लोन का सपना देख सके, बड़े काम का सपना देख सके। तो मैं शैलेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, हम अक्सर ये मानते हैं कि जो बैंकों का मुख्य कार्य है वो ये है कि हम जो कमाई करते हैं उसमें से जो हिस्सा बैंक को हम देते हैं, यानी हमारी सेविंग्स, उसकी सुरक्षा करना। लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को मिल रही हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी मुख्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगी जिनसे लोगों को लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्या इस तरह की मेन स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
1: नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकों का मुख्य काम है कि आपने जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करके जो गाढ़ी कमाई की है
0: जी,
1: उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसमें एक लॉकर की भी सुविधा आती है
0: जी,
1: कि जैसे आप बहुमूल्य जो आपके गहने हैं या जेवरात हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसके कागजात हैं, और अब तो बहुत लोग अपनी वसीयत भी तैयार करते हैं, सो जो है ये सब को भी अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, केवल अपने गाढ़ी कमाई को नहीं बल्कि जो जेवरात या जो बहुमूल्य सामान है आपके जीवन के, उनको भी सुरक्षित करने के लिए लॉकर की सुविधा है
0: जी।
1: और फिर बहुत सारे निवेश करने में आपको सहायता या परामर्श देने का भी काम बैंक करती है। और जैसे आप अपने बच्चों के जीवन में आगे कब एजुकेशन में क्या खर्च आएगा, उनके मैरिज के समय, उनके विवाह के समय क्या खर्च आएगा, फिर उनके बाद आपको कोई घर खरीदना हो या आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो किस समय क्या जरूरत आएगी, उसके हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं
0: जी।
1: इसमें भी बैंक जो है आपको मदद करती है, एक परामर्शी सेवा भी प्रदान करती है, जिसको हम लोग वेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं
0: जी।
1: और वह भी बैंक कर रही है अपने चुने हुए ग्राहकों के लिए। और जो व्यवसायी वर्ग है, जिस तरीके का वो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सब के लिए ऋण की सुविधा है। और जो स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, तो बेसिक स्टार्टअप तो स्वनिधि भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है
0: जी,
1: और उससे थोड़ा ऊपर का मुद्रा से शुरू होता है। लेकिन हमने आईटी सेक्टर में बहुत प्रगति की है हाल के दिनों में, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो केवल आईटी सर्विसेज शुरुआत दे रही हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं, खासकर आईआईटी आईएम से पढ़े हुए युवा। सो वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके इकोसिस्टम को भी बैंक मदद कर रही है
0: जी।
1: जितने आप ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स देखते हैं, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं कि उनकी जो भी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरतें
0: जी,
1: सब कुछ ये बैंकिंग सेक्टर में क्षमता है आज के दिन में कि सबकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं
0: जी।
2: नीलम जी, चूंकि पीएम स्वनिधि की बात हो रही है
0: जी,
2: तो शैलेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ये तो वित्तीय सेवाएं बैंक देती ही है या निवेश के लिए परामर्शी सेवाएं, इसके अलावे जो CSR के तहत
0: जी,
2: आप देखेंगे कि गांव में, आप शैलेश जी इस बात से सहमत होंगे कि RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक जिला एक बैंक के साथ जुड़ा है एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से
0: जी,
2: तो वो उसको चलाना है RCT का इंस्टीट्यूट, जिसमें कि वहाँ के युवाओं को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्किल डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करती है
0: जी।
2: तो RCT की भूमिका है। उसी प्रकार से जो एक फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब है जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं या कृषि कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी
0: जी,
2: बीज मिट्टी का जो उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए उसके विषय में उनको जानकारी दी जाती है, पेड़ पौधे किस तरह से किस मौसम में लगाई जाए
0: जी,
2: इन सब की भी सुविधाएं बैंक देती है
0: जी। यानी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग कामों से जुड़े हैं, सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ है, बस जाकर सही बात अपने लिए क्या सुविधा है उसका चयन करने की और प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। चलते चलते आपसे एक और सवाल, कई बार लोगों को शिकायत होती है बैंकों से भी, सुविधाएं तो बहुत मिल रही है, अगर ऐसा लगता है कि बैंक समय से हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो समझ में नहीं आ रही है, बहुत जटिल है या बार बार जाना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बैंकों के बारे में शिकायत कहाँ की जाए?
2: बहुत ही सही प्रश्न है ये। आज के समय में ग्राहक सेवा प्रथम स्थान पे है सभी बैंकों के लिए और उसमें अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती है, हर एक बैंक का वेबसाइट है या आप पत्र के माध्यम से उसके प्रधान कार्यालय को या स्थानीय कार्यालय, जैसे स्टेट बैंक का LHO होता है, हमारा अंचल कार्यालय या मंडल कार्यालय होता है, अन्य बैंकों की इस तरह की सुविधा है, वहाँ पत्र के माध्यम से

0: भी कर सकते हैं। एक CRM कस्टमर रिडर्सल पोर्टल भी है, वहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओम्बड्समैन की प्रक्रिया है जिसमें RBI के माध्यम से आप अपनी शिकायतों को उठाते हैं और उसका क्रमशः नीतिगत रूप से निदान होता है, निपटान होता है। और ये सब चीजें आजकल बैंकों के लिए हम लोग फीडबैक मांगते हैं कि हमारे जो शाखाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, या जो अन्य वर्टिकल्स हैं वो कहीं भी समस्या है तो उसको ग्राहक से सुनकर एक फीडबैक के रूप में उसको लिया जाता है। और ये सारे माध्यम है जिनके माध्यम से ये सारे शिकायतों का निपटान हो सकता है।
1: जी, यानी अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हमें बैंक से ही मिल जाएगा। तो राजेश कुमार जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज रही श्रीमती बबीता शर्मा, आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऐसी लाभार्थी जो हमारे हर तीज त्योहार में हमारे साथ होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम जो पूजा का सामान लाते हैं और अपने पर्व त्योहारों पर अपने घर को जो हम सजाते हैं, अपने अनुष्ठानों में अपनी आस्था को रंग भरते जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, उस सामान को बबीता जी बेचती हैं अपनी दुकान पर। जो दुकान इन्होंने बढ़ाई है, सजाई है, जिसे पहले से बेहतर किया है आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ये हमारे दोनों विशेषज्ञों ने हमें बताया है बबीता जी की कहानी से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता प्रेरित होंगे और फिर जीवन में आगे बढ़े। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने विशेषज्ञों का भी यहां पर आभार व्यक्त करती हूं। तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और सभी श्रोताओं को कि हम लोगों को आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो आए।
2: धन्यवाद नीलम जी। और बबीता जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में अपने अनुभव को साझा किया है, हमको लगता है कि वह एक मील का पत्थर साबित होगी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं।
3: धन्यवाद
1: राजेश, धन्यवाद बबीता जी आपका। तो अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय

0: That was Brother Louis with Modern Talking. You know what to do. I want to talk a lot, and there's so much to offer to you in terms of music, but we are left with very little time. Going for a short break, last break of this edition of Play It Cool, and then I'll come out with a wonderful, superb number. Stick around, this is Akashwani Rainbow, and you're enjoying Play It Cool.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आए हाय,
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: Welcome back to Play It Cool. Well, it's almost time for me to say goodbye because we are running short of time, but I'm not leaving you just like that. I'm leaving you with a wonderful track by Astrid S, and this one is Joyride. Hope you enjoyed this musical joyride with us during this 1 hour's time. Well, of course, we thoroughly enjoyed ourselves. So here is a cool and I think a pretty apt number to end my show with. So this is me, Harpreet Kaur, signing off, and I will join you next week. So till then, take good care of yourself and keep on enjoying music. So this is me saying bye from Play It Cool.

नमस्कार, पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महामारियों, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दर्शाया है कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी भी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की।

भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि ब्रिक्स इंडिया 2026 की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्रनाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन का सामना आज रात न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में यूएस ओपन 2026 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और आप मुझे पता है कि बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम प्ले करते हैं आपके डेडिकेशंस, आपके रिक्वेस्ट, जो भी गाना आपको प्ले करवाना है बॉस, आप बिंदास तरीके से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9868107070 पर। आपको हमें व्हाट्सअप मैसेज करना है 9868107070 पर, आपको हमें मैसेज करना है, बताना है कि कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, क्यों अच्छा लगता है ये भी बताएंगे तो जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब तक आपके मैसेजेस आते हैं तब तक चलिए सुनते हैं हनी सिंह को और अरमान मलिक को।

बिल्कुल, इसी तरह से ताली देते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके की प्लेलिस्ट, आपके जो गाने हैं वो हम प्ले करते रहेंगे। वैसे हम कुछ मैसेजेस लेना चाहेंगे। अच्छा, कईयों की रिक्वेस्ट प्ले हो पाएंगी और आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे रहेंगे जिनके रिक्वेस्ट प्ले हो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि काफी रीजन्स होते हैं गाने ना प्ले हो पाने के, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें गाना ही ना मिले। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों के नाम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कृष्ण कुमार मिश्र है, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट की है और ये ट्रैक अभी तो प्ले नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जिस गाने को हमने रखा हुआ है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। वो हमने रखा हुआ है दाग द फायर फिल्म का, दिल दीवाना ना जाने कहाँ खो गया। और हमें मैसेज आया है मध्य प्रदेश सनावद से, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ोना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप, इन सभी ने रिक्वेस्ट की है। और क्योंकि इन्होंने एक्ट्रेस महिमा चौधरी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भी लिखी है और इनको वो बहुत पसंद है, तो इसलिए उनकी फिल्म का ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। उनके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और आई है जो कि महिमा चौधरी को ही डेडिकेट की है और उन्होंने लिखा है कि वो परदेस फिल्म से उनका ट्रैक सुनना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रैक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने महिमा चौधरी को बर्थडे विश किया है आज सभी को ये ट्रैक पसंद आएगा, दाग द फायर फिल्म से है। और आप इसी तरह से हमें मैसेज करते रहें और हम मैसेज और लेना चाहेंगे। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं हमें कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय। और हम आगे बढ़ते हैं, मैसेज देते हैं यूपी रतनपुरा शुमाली से इस्लाम शेख, वाजिद शेख और निजाम का।

और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमें मैसेज करते हैं, इसी गाने के रिक्वेस्ट किए, उन्होंने दो रिक्वेस्ट भेजी थी हमें ड्यूरिंग दिस ये सॉन्ग, ये गाना प्ले हो चुका था तब उनकी रिक्वेस्ट आई है परदेश फिल्म से और दाग फिल्म से। मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं महिमा चौधरी का बर्थडे, तो महिमा चौधरी को हम भी उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अब आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगली रिक्वेस्ट जो हम ले रहे हैं वह कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय मनीषा मालवीय की, और उन्होंने अग्निपथ फिल्म से जो ट्रैक हमें भेजा है वो है देवा श्री गणेशा, और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सबको। और हम इस गाने को जरूर प्ले करेंगे, लेकिन कुछ नाम हम जरूर लेना चाहेंगे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं हमें मैसेज भेज रहे हैं। मोहम्मद कोनेन बिहार बेगूसराय से उन्होंने मैसेज भेजा है, और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, डीडीएलजे का गाना सुनना चाहे, जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें डीडीएलजे का गाना प्ले करने का समय मिले। और अग्निपथ मूवी से ही इसी गाने की रिक्वेस्ट की है ईला और सौरभ ने जर्मनी से, तो ईला और सौरभ आपकी भी रिक्वेस्ट प्ले होने वाली है। और हम एक और मैसेज लेना चाहेंगे, आपकी मैक्सिमम जितने नाम हम ले सकते हैं शामिल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में हम करेंगे।

और सबको प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं हमें पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा जुनेजा, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आपका भी। और इस ट्रैक को आप सभी के पास हम पहुंचा रहे हैं, आप इस गाने को एंजॉय करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की, आने जो आगे आने वाली है।

0: कह रही हूँ, बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Welcome back. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र पर मेरा वाला सॉन्ग, मेरे यानी कि रेणु भट्ट के साथ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें आप प्ले करते हैं, करवाते हैं अपने रिक्वेस्ट। और नंबर क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास इस समय पर, नंबर आपको बहुत अच्छे से बताया। लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं जिन्हें नहीं पता है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बता दूं, 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजनी है और हम उसे प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना एक मैसेज एक बार ही भेजें, और यकीन मानिए आपका एक मैसेज हमारे पास एक बार में मिल जाएगा। लेकिन यदि आप दो बार भेजेंगे, तीन बार भेजेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर जब फ्लैश होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है पढ़ने के लिए। और कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा गाना नहीं प्ले कर रहे हो, आप दूसरे का गाना प्ले कर रहे हो, या दूसरे का गाना ये वाला ऐसे कर रहे हो, ऐसे शिकायतें नहीं करनी, ठीक है बॉस? इस चीज़ को प्लीज़ आप थोड़ा अलग रखें और सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजें। जहां तक मुमकिन है आप सभी के नाम भी ले जाएंगे, आप सभी के गाने भी प्ले होंगे। यहाँ पर हम वरुण वाष्णे जो अलीगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं और गणेश चतुर्थी की एडवांस में हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप भी इस गाने को सुनना चाहते थे जो इस ब्रेक से पहले सुनाया गया आपको, मुझे लगता है कि आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम जो गाना प्ले करने वाले हैं वो है कविता का रिक्वेस्ट आई है देवभूमि उत्तराखंड से, फिल्म है रामलीला, और इस गाने को आप सुन रहे हैं, चले हम सब मिलके सुनते हैं।

अरुणाचल प्रदेश से हमें गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं अश्विनी निहारकर और सुशीन निहारकर, इंडियन आर्मी में सोल्जर हैं वो। आपको हम सल्यूट करते हैं सर, आप वहां पर हमारे लिए खड़े हैं वहां पर। और वो कह रहे हैं कि आज संडे को मॉर्निंग में सुन रहा हूं मैं, एफएम रेनबो से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट प्ले की है, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे इस रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए, आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। और हम अब मैसेज लेते हैं, हमें मैसेज आया है नॉर्थ ईस्ट नागालैंड बॉर्डर ऑफ नागालैंड से, और सुनील का हमें मैसेज आया है, पांगचो, सुनील पांगचो का मैसेज आया है और वो एक रिक्वेस्ट प्ले करवाना चाह रहे हैं, अपने फादर को डेडिकेट करते हैं, मुझे डेडिकेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सुनील, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि इस ट्रैक को हम प्ले कर पाए। और इनके साथ साथ हम जो अगला मैसेज लेने वाले हैं वो है मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का। वो चाहते कि कोई भी ट्रैक को आप प्ले कर लें, तो चलिए हम कोई भी गाना आपको प्ले करवा देंगे ले, और आपका नाम हमने पढ़ लिया। और हमें मैसेज आया है, ये मैसेज है विनोद नारायण कुशवाहा का, नारायण सिंह कुशवाहा का, मनकू बाई कुशवाहा, निशा, प्रियंका, इशिका, खुशी, ऋषि नारायण कुशवाहा और निधि नारायण कुशवाहा का, अशोकनगर मध्य प्रदेश से। और आपका मैसेज भी है, हमने शामिल कर लिया है। और किसी ने हमें मैसेज किया, गुनौर से हमें मैसेज किया आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली से, और उन्होंने लिखा टाइम मिले तो शामिल कर लेना, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मैसेज किया और ज़रूर हमारे पास टाइम है, लेकिन जब इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस हमारी स्क्रीन पर एक साथ फ्लैश हो जाते हैं तो मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो सारे इधर उधर हो जाते हैं। और हमें जो है बहुत सारे गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आए हैं, तो सबसे पहले अब आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हम देते हैं, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है कि एक एक के नाम के साथ हम शुभकामनाएं लें, लेकिन हाँ आपने ढेर सारी शुभकामनाएं हमें भेजी है, थैंक यू सो वेरी मच, जानकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है हमें। और अब जो रिक्वेस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जब वी मेट मूवी से, और ये हमें भेजी है प्रदीप सालूजा ने जनकपुरी न्यू दिल्ली से, और सत श्री अकाल कह रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, आप अच्छे हैं। मुझे लगता है सारे लिसनर्स जो हमारे हैं जो इस समय पे बहुत ही जोश जुनून के साथ मैसेजेस करे जा रहे हैं, आप सभी बहुत बहुत अच्छे, इसी तरह से अच्छे रहें, हम बस यही चाहते हैं आप सभी के लिए। ये बेहद खूबसूरत ट्रैक शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में आपके लिए ये रहा, आप अपनी रिक्वेस्ट यूँ ही हमें भेजते रहें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: न तेज बारिश से दिक्कत न ट्रैफिक का झंझट नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत घंटों का सफर मिनटों में
3: आज फिर लेट हो गए
4: अरे यार वो रवि मिल गया था फिर बाहर ही बैठ गए थे
3: क्यों बैठे थे बाहर
4: क्यों ना बैठूं बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है एड्स गले मिलने साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता
3: मुझे पता है एचआईवी एड्स असुरक्षित संबंध संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है इसीलिए तो कह रही हूं बाहर क्यों बैठे थे रवि भैया को घर ही ले आते
4: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से बात करने से एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मेरे यानी कि रेणु भट्ट के साथ। और ढेर सारी फरमाइश मैंने आपकी प्ले कर चुकी हूँ, ढेर सारे नामे पढ़ भी चुकी हूँ, लेकिन क्या बात है कि आपकी जो शिकायत है ना कोई ऐसा मुंह फुलाया लिसनर जरूर आ जाता है जिसने एक ही जैसे ढेर सारे मैसेजेस भेज दिए हैं कि अच्छा आपको हमारा गीत पसंद नहीं आया, क्या आपको हमारा नाम भी पसंद नहीं आया, क्या मैसेज देख के अनदेखा कर रहे हैं, क्या लाखों मैसेजेस आए होंगे आपके पास, लेकिन जो सबसे पहले आता है कम से कम उसे तो शामिल कर लिया करो। ऐसा नहीं है भाई, आपने इतने सारे मैसेजेस, एक बार सांस तो ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। और ये मैसेज जो हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो है होली चौक से, उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म अग्निपथ से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी जो मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए। मुझे लगता है इतनी नाराज़गी ठीक नहीं है। यहाँ पर हम मैसेज लेना चाहेंगे, अब लेना चाहेंगे, ये है गुनौर यूपी से, किसी भी गीत को शामिल करने की इन्होंने मुझे छूट दी है, थैंक यू सो वेरी मच। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, अपरकोट बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अजान अबान अबासी, पूरा अबासी परिवार। और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से हमें मिली हैं। और ये मैसेज हमें भगवती का पुल, प्रहलाद पुल, नई दिल्ली से, क्रिमिनल मूवी का गाना सुनना चाहते हैं ये, तुम मिले दिल खिले, पैडमैन मूवी से भी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। हम पूरी कोशिश करेंगे जितना समय हमारे पास है हम ढेर सारे रिक्वेस्ट प्ले कर पाए। साइश्ता आल्फिया, अयान खान, गुलफाम खान, शाहदरा दिल्ली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम जो गाना अभी लेने वाले हैं, जो रिक्वेस्ट हम अभी प्ले कर चुके हैं, वो है सुर फिल्म के, और ये रिक्वेस्ट हमें आई है यश शिंदे की मुंबई से। उन्होंने भी जो है थोड़ी शिकायत की कि आपने तो मेरे संदेश की तरफ देखा ही नहीं, जब आपको पता है कि आपका मैसेज पढ़ा ही नहीं गया, यानी कि वो मेरी आंखों से कहीं दूर ओझल हो गया है, कहीं ना कहीं वो खो गया था, मैं इसे खींच के लेकर आई हूँ और आप लोगों के रिक्वेस्ट मैंने प्ले की है, तो नाराज मत होइए। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि सुर फिल्म जो मूवी है जिसका ये गाना है उसको 24 साल पूरे हो चुके हैं, और जब ये आई थी तो लकीली इसमें जो है मेन एक्टर थे इसमें, और बड़ी संगीतमय फिल्म थी, बहुत अच्छी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. अफशा खानम है, धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से. हमें मैसेज करती हैं, पूछती हैं कैसे हैं आप. मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अफशा कैसे हैं आप. उन्होंने डीडीएलजी मूवी से रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए कहा है. एक मैसेज हम लेंगे. ऐसे मैसेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि आप अपनी पसंद के कोई भी गाना प्ले कर दीजिए. ये मैसेज हमें आया है दिल्ली रेडियो लिसनर्स

क्लब से नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, अशरफ अली, सिराज मिथुन, पिंटू दीवाना, महेश अग्रवाल, संजय धींगिया, मनोहर लाल गांधी, संजय मलालकर और बाबू दिन की तरफ से। और आपके मैसेज हमने ले लिया है। जो रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले वो सोचे वो आप मेरी भी पसंद है। वैसे जो भी गाने प्ले हो रहे हैं मुझे सब पसंद आ रहे हैं। पुनीत का मैसेज आया है हमें, आई गेस उन्होंने जो अपना सरनेम शॉर्ट में लिखा है पुनीत रावत लिखना चाहते हैं वो, और उन्होंने दो गाने लिखे हैं और दो गाने में से उन्होंने कहा है कोई भी रिक्वेस्ट है आप जो दोनों मैसेज किसी को भी आप लगा देना मैम। ऋषिकेश से उन्होंने मैसेज भेजा है, रेस फिल्म से आपका ये जो ट्रैक है वो मैं प्ले कर रही हूँ, और दीप मणि और नेहा भसीन की आवाज़ में बेहद खूबसूरत और एनर्जेटिक गाना है आप सभी के लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: और अब जो हम रिक्वेस्ट लेने वाले हैं वो तो मैं डेफिनेटली आपके साथ प्ले करने वाली हूँ, लेकिन एक बहुत ही स्वीट मैसेज आया अनीता वर्मा द्वारका से भेज रही है. उन्होंने रिक्वेस्ट लिखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सॉन्ग अच्छे लगे तो प्लीज़ प्ले करें, नहीं तो कोई बात नहीं है जी. और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइली बनाई अनीता, आई लव यू फॉर दिस पर्टिकुलर वंडरफुल मैसेज. बहुत सुंदर मैसेज है, ऐसा होना चाहिए दिल. आपको पता है जो मुंह फुला के बैठे हुए ना जितने भी लोग, उनको मैं बता रही हूँ कि ऐसे सीखिए. देखिए हमारी अनीता जी कितना प्यार से हमें मैसेज कर रही है कि अगर प्ले हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है जी. दिल में नहीं लगानी कोई भी बात. डॉली की रिक्वेस्ट है ये दिल्ली से.

मोहम्मद इम्तियाज हैं, सलमा बेगम हैं, अब्दुल रशीद हैं, जवाहर कैम कीर्ति नगर दिल्ली से हैं, मुंह फुला के बैठे हैं। मेरा मैसेज नहीं लिया आपने, अब तो ले लिया मैंने। आपने महिमा चौधरी के बर्थडे विश किया है और जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है वो प्ले भी हो चुका है।

ऑलराइट अब इसी गीत के साथ जो आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी और लेकिन उनका मैसेज ऐसी जगह गुम गया है कि मुझे उनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है दबंग फिल्म से इस ट्रैक को सुनना चाह रहे थे और आप सभी के ढेर सारे मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जाने का समय हो गया क्योंकि मेरे जाने के बाद आप सुन सकते हैं ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आशियाना दीपिका भटनागर के साथ। दीपांशी अरोड़ा रहेंगी रेडियो डॉक्टर में और उनके बाद दोबारा दीपिका भटनागर आएंगी 4:02 में अल्फा जन लेकर के। तो गुड बाय, देखिए मैं रेणु भट्ट लेती हूँ आप सभी से इजाजत, आपसे फिर मिलूंगी जल्दी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोपहर के 2 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महामारियों, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दर्शाया है कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कल से विकासशील देशों के लिए मानवाधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। 3 दिवसीय ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। इस सम्मेलन में शुष्क भूमि पर खेती की चुनौतियों से निपटने और इसके समाधानों में तेजी लाने के लिए दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग बढ़ाने की अपील की गई। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: की जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। दोपहर के 2 यहाँ पर बजे हुए हैं।

और प्रोग्राम इस वक्त शुरू हो चुका है आशियाना, जहाँ संडे यानी आज का दिन नाम रहता है हमारे छोटे उस्तादों के। तो छोटे उस्तादों से ढेर सारी बातों का सिलसिला शुरू होगा, उनके पेरेंट्स से बातचीत होगी बहुत जरूरी विषय पर। यहाँ आज मैं बात करने के बारे में आपसे सोच रही हूँ, क्या होगा वो विषय, क्या बातें हम करेंगे, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फिलहाल गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए दीपिका का हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे दोस्त मेरे साथ।

प्रोग्राम है छोटे उस्ताद, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। वेल दोस्तों, जिक्र मैंने किया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आज बात यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। ये टॉपिक बच्चों, पेरेंट्स सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत रिलेवेंट है। अब चलिए, इतना मैंने बिल्डअप दे दिया है तो टॉपिक भी यहाँ मैं बता देती हूँ। दोस्तों, आपको नहीं लगता ऐसा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन जरूरत से ज्यादा बिजी हो गया है? मतलब देखिए, बचपन की कभी कोई घड़ी होती थी क्या? सुबह माँ की आवाज से दिन शुरू होता था, अगर हम हमारे बचपन की बात करें तो। दोपहर हल्की सी नींद भी आ जाती थी, शाम गली में दोस्तों के साथ खो जाती थी और रात को बस इतना पता होता था कि सुबह फिर स्कूल जाना है। बचपन की डायरी में पन्ने बेशक कम होते थे लेकिन उन पन्नों पर रंग बहुत होते थे। कभी मिट्टी से सने पैर, कभी बिना वजह घंटों हंसना, कभी कुछ करना तो कभी कुछ करना। लेकिन अगर आप आज के बचपन पर नजर डालेंगे तो ये बहुत अलग दिखाई देता है। मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, बदलाव आना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, हमने जो बचपन जिया है हमारे पेरेंट्स का बचपन उससे अलग रहा होगा और हमारे बच्चों का बचपन उससे अलग है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, बदलाव होना चाहिए जिंदगी में। लेकिन ये जो बच्चे आजकल जरूरत से ज्यादा बिजी हो गए हैं, ये बिजी होना उनके लिए कितना फायदेमंद है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या ये बिजी होना कहीं उनका बचपन तो नहीं छीन रहा है? चल करेंगे ये सारी बातें गानों के साथ साथ। तो फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने को एंजॉय कीजिए और तब तक आप भी जरा ये जो सोचिए, मुझे बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि बच्चों का बचपन क्या वाकई अब बहुत बिजी होता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैसेजेस तो मैं आपके शामिल नहीं कर पाऊंगी इस प्रोग्राम में, आप जानते हैं, लेकिन आप मुझे ये बात जरूर अपने जहन में रखिए, सोचिए और समझिए, कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में जरा सी जगह दीजिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है।

हाँ जी, जिक्र मैंने छेड़ा कि क्या आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन हो गया है बहुत ज्यादा बिजी, या यूं कहें जरूरत से ज्यादा बिजी। देखिए, बिजी होना गलत बात नहीं है, सीखना अच्छी बात है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ नया सीखे, और आजकल जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है तो हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या बहुत सारी चीजें सिखाना चाहते हैं ताकि हमारा बच्चा ऑलराउंडर बन सके। गलत नहीं है, चाहे आप क्रिकेट खेलना सिखाएं, पियानो सिखाएं, कहानी पढ़ना, डांस करना, कोडिंग, कुछ भी। लेकिन आपको एज अ पेरेंट ये समझने की बहुत जरूरत है कि बचपन सिर्फ सीखने का नाम नहीं है, बचपन थोड़ा भटकने का भी नाम है। कभी कभी बिना किसी मंजिल के रास्ते पर चलने का भी नाम है, कभी खाली कागज पर कुछ बना देने का भी नाम है, और कभी कभी कुछ नहीं करने का भी नाम है। इसीलिए बेशक आप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ा पॉज भी दीजिए, उन्हें थोड़ा रुकना सिखाइए, थमना सिखाइए, ताकि वो इतने बिजी ना हो जाएं चीजों को सीखने में कि घर से आकर ट्यूशन, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, कभी कुछ और कभी कुछ और। इतना बिजी नहीं हो जाना चाहिए बच्चों को कि वो अपने बचपन को महसूस भी ना कर पाए। क्योंकि देखिए, आज जब हम बड़े हो चुके हैं, अगर हमसे कोई हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें पूछेगा ना, तो हम बेशक बचपन का ही नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो ही वक्त है जो हमने सबसे ज्यादा बेफिक्री के खुलकर जिया है। तो बच्चों को, आज के बच्चों को, या किसी भी एज के, किसी भी दौर के बच्चों को ये पूरा हक है कि वो उस वक्त को, उस बचपन को खुलकर जी सके। आकाशवाणी FM रेनबो आपके साथ है, आपकी दोस्त दीपिका। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं छोटे उस्ताद।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: सुनार या काजवानी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म

या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। 2:31 और पूरे 18 सेकंड हो चुके हैं राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक। प्रोग्राम छोटे उस्ताद में आप यूं ही मेरे साथ बने रहिए।

दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम आप यहां पर इस वक्त सुन रहे हैं छोटे उस्ताद, और बातें मैं कर रही हूं कि क्या आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया, मतलब इतना बिजी कि शायद वो उस बचपन को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। देखिए, हम लोग बड़े लोग जब छुट्टी लेते हैं तो सोचते हैं घूमेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, मूवी देखेंगे, आराम करेंगे, लेकिन बच्चों की छुट्टी आते ही कई बार हम उनके सामने एक डायरी सी खोल देते हैं, चलो इस छुट्टी में कुछ नया सीखते हैं। अब फिर उनके लिए छुट्टी तो शुरू नहीं होती, एक नई क्लास शुरू हो जाती है, चाहे समर कैंप हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, कोई और स्किल क्लास हो। ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि हर चीज़ बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। जैसे पेरेंट्स के लिए एक वक्त पर बच्चों के लिए दोस्त बनना भी बच्चों का बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स के तौर पर सख्ती दिखाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ बच्चों के दोस्त बनेंगे, उनके साथ बिल्कुल सख्ती नहीं दिखाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। अगर आप हमेशा उनके साथ सख्ती दिखाएंगे तो वो आपसे अपनी कोई बात शेयर नहीं कर पाएंगे, ऐसे में दोस्ती होना भी बहुत जरूरी है। उसी तरीके से बच्चों को आपको बिजी रखना जरूरी है ताकि वो नई नई चीजें सीखे बचपन में, लेकिन कभी कभी आपको बच्चों पर सख्ती दिखाने की बजाय या उन्हें नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करने की बजाय उन्हें बचपन का लुत्फ उठाने का मौका देना चाहिए। बच्चों को उस मौके की बहुत जरूरत होती है जब आप उन्हें ये ना बताएं कि अब ये करो, ये पढ़ो, जल्दी करो, फोन रखो, होमवर्क करो, सो जाओ। नहीं, बच्चों के दिन में भी कोई ऐसा कोना होना चाहिए जहां आप उनसे बैठकर बात कर सकें, जहां वो बस खिड़की से बाहर देख सकें, जहां वो मिट्टी में हाथ डाल सकें, कोई बेकार सी चीज बनाकर खुश हो सकें। आप उन्हें क्रिएटिवली एंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, लेकिन हर वक्त उन्हें बिजी रखने की कोशिश करना ये कहीं ना कहीं उनसे उनके बचपन को छीनने जैसा है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ प्रोग्राम, आप यहां पर सुन रहे हैं छोटे उस्ताद। बात मैं कर रही हूं कि क्यों बच्चों को जरूरी है थोड़ा सा वो मौका देना जो वो बचपन को जी सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के बचपन में वो बात कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है और बच्चे बहुत ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं। मैं पेरेंट्स को भी पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि दुनिया में बच्चे उनकी तरक्की कर सके, और आजकल कहीं ना कहीं बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, अच्छी एजुकेशन देना, उन्हें इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ

इतना ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे सपनों का बोझ बच्चों के कंधों से बड़ा ना हो जाए। बच्चों को उड़ना सिखाना जरूरी है, लेकिन उन्हें आसमान देखने का वक्त देना भी जरूरी है। इस बात को याद रखना होगा।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं. प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं छोटे उस्ताद. जिक्र मैंने किया कि क्या कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो आज जरूरत से ज्यादा बिजी हो गए हैं और वाकई ऐसा है. तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ा समझने की तो जरूरत है, क्योंकि बच्चे कोई प्रोजेक्ट नहीं.

है जिनका हर दिन प्लान किया जाए, हर घंटे का टारगेट बनाया जाए, हर महीने उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाए। बेशक उन्हें नया सिखाना बहुत जरूरी है, बेशक उन्हें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बचपन जीने का मौका देना भी बहुत जरूरी है। एक बैलेंस आपको बनाकर चलना होगा ताकि उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े, और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ में ध्यान देना बंद कर दें, सिर्फ बचपन ही इंजॉय करें। नहीं, एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बचपन तो कहीं ना कहीं एक अधूरी सी कविता है जिसमें कुछ पंक्तियां टेढ़ी होंगी, कुछ शब्द गलत होंगे, कुछ रंग कागज से बाहर भी निकलेंगे, और शायद यही बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। शुरुआत कीजिए इस बात की कि हर दिन बच्चों को कुछ वक्त ऐसा दीजिए जब वो अपने पसंद की चीज़ कर सकें। उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए, यानी कि वो थोड़ा बाहर खेलें, क्योंकि आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा उनका हो गया है, फ़ोन में ही बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं। परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, संभव हो तो बिल्कुल बिना मोबाइल के। कभी उनसे दिन में आप रैंडम क्वेश्चंस पूछिए, ये नहीं कि एग्जाम में कितने नंबर आए, ये कि आज किस बात पर खुश हुए, किस बात पर गुस्सा आया। बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कीजिए, कभी कभी बच्चों को गलती भी करने दीजिए, क्योंकि जिस बचपन में शोर नहीं है, थोड़ी शरारत नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं है, जरा सोचिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो गया है वो बचपन? ऐसा थोड़े ही होता है बचपन। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है, लेकिन ये खूबसूरत बचपन अपने आप नहीं बनता, उसे वक्त देना पड़ता है ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें ये बचपन याद रहे। फिलहाल यहां आपको अभी देनी होगी इस प्रोग्राम में दीपिका को इजाजत, लेकिन 4 बजे से दोबारा जुड़ूंगी आपके साथ में, लेकर के आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जैन।

0: वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है महिलाओं से जुड़ा एक खास रोग एंडोमेट्रियोसिस। क्या है ये बीमारी, शरीर में क्यों पनपती है, कारण, निवारण, यानी पर्याप्त जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी। इधर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल आज का यही है कि क्या है एंडोमेट्रियोसिस।
2: एक शब्द में समझाना तो बहुत मुश्किल है। ये एक लंबी बीमारी है जो मुख्यतः औरतों को प्रभावित करती है। आज के समय में चाहे वो यंग गर्ल्स हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज की औरतें हों, चाहे वो मेनोपॉजल वुमेन हो, हर किसी में ये बीमारी पाई जाती है। ये समझना कि हर महीने जब हमें पीरियड्स आते हैं, हम बच्चेदानी की लाइनिंग को शेड ऑफ करते हैं और वो बच्चेदानी के रास्ते से वो बाहर आ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में वही सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर यूट्रस के पीछे, ओवरीज के ऊपर या ट्यूब्स के ऊपर पाए जाते हैं। जब साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, चूंकि वो अंदर ही ब्लीड करते हैं वो सेल, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बारी ओवरी में उनसे सिस्ट बन जाती हैं और बच्चेदानी, ब्लैडर जो उसके आगे है या बॉबल जो उसके पीछे है, ये सारी चीजें आपस में चिपक जाती हैं। यूजुअली सिम्टम्स जो इसमें आते हैं उसमें आपको मेन सिम्टम होते हैं पेन के। तो हमने सुना है कि जो लड़कियां यंग होती हैं 16-17 साल की, उनको सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड। एंडोमेट्रियोसिस का एक सिम्टम ये भी हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है। फिलहाल यहाँ एक ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एंडोमेट्रियोसिस पर और हमारी विशेषज्ञ ममता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहिबा की पसंद की ये प्यारी सी गजल हमने सुनी। डॉक्टर साहिबा, अब अगला सवाल मेरा जो है वो ये कि थोड़ा सा इंडिकेशन आपने दिया था कि लक्षण होते हैं तो पेन होता है, लेकिन पेन बहुत सारी वजहों से भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर लक्षण क्या होते हैं इस रोग के?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पेन के कई कारण हो सकते हैं
0: जी।
1: मुख्य तौर पे अगर हम कहें कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स, वो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब पेन आप हमेशा महसूस करते हैं, या बैकएक, वो भी इसका एक लक्षण होता है। पेन ड्यूरिंग सेक्स,

0: इन यंग वुमेन, वो भी एक बड़ा सिम्टम होता है, पेन वाइल पासिंग मोशन और पेन वाइल पासिंग यूरिन, या पेशाब करते समय या मोशन पास करते समय जो पेन है, ये सारे पेन आपके लक्षण इंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं। कई बार ये असिम्टोमेटिक भी होता है, मतलब आपके कोई लक्षण नहीं है पर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने अल्ट्रासाउंड कराया उस कारण से, तब आपको पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है।
1: डॉक्टर साहब, अगला हमारा सवाल है उसको लेंगे, उससे पहले हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना शुभ नाम बताएं।
2: जी, मेरा नाम सना है।
1: जी सना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: जी मैं मेरठ से बोल रही हूँ।
1: बताइए क्या सवाल है?
2: मेरा सवाल है कि मेरी बहन 9 साल की है और उसके पीरियड थोड़े थोड़े आते हैं,
1: ठीक है,
2: जैसे पीरियड शुरू हुए हैं तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वो थोड़े थोड़े आते हैं।
1: जी जी जी,
0: उसको पीरियड्स कब शुरू हुए?
2: जी अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू हुए हैं।
0: पीरियड्स शुरू होने समय जो पेन होता है उसका एक कारण ये होता है कि उसके अंडे बनने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर ये पेन बहुत बढ़ता है जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, वो स्कूल से छुट्टी ले रही है या स्कूल जाना नहीं चाहती है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन बनता है। उस केस में हम लोग कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा करके आप एक बार देख लो।
1: जी
2: जी डॉक्टर साहब, जरा बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार उसका टॉयलेट आता है।
0: हाँ, तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके देख लें उसमें क्या निकलता है, फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या वहाँ पे किसी लोकल डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड के बाद दिखा सकते हैं।
1: जी, तो सना जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया है मैम, और अब जो हम बातचीत आज की कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस पर। तो किस तरह से इसको जाना जाए, आपने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, लेकिन जब ये रोग होता है तो किस शरीर को विशेष तौर पर प्रभावित करता है?
0: ये जो बीमारी है मोस्टली जो है ये पेल्विक ऑर्गन, जिसको मैं यूट्रस, बॉबल, ब्लैडर, उसके आसपास के हिस्सों को अफेक्ट करता है। बेसिकली ओवरी में या तो सिस्ट बन जाती है जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। कई बार अल्ट्रासाउंड में नेगेटिव फाइंडिंग्स भी होती है, मतलब हमें अल्ट्रासाउंड में सारी चीजें नॉर्मल पता चलती हैं, फिर भी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है। कई बार हमें MRI भी करा करके देखना पड़ता है, क्योंकि MRI में हमें ये पता चल जाता है कि बॉबल, ब्लैडर सब आपस में चिपके हुए तो नहीं है। बट सिम्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो भी हम लोग उसको एंडोमेट्रियोसिस मान के एम्पेरिकली ट्रीट कर सकते हैं।
1: मैम क्या कहेंगी कि इस रोग के होने का कारण क्या है, वजह क्या है, क्योंकि आजकल जो खान पान है वो भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है उसका भी रोगों को बढ़ाने में या उनको बढ़ावा देने में।
0: एग्जैक्ट कारण का तो हमें पता नहीं है आज भी, पर अगर औरतें को जो माना गया कारण ये है कि आजकल की जनरेशन में जैसे हम प्रेगनेंसी लेट करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग भी कम होती है, तो वी आर एक्सपोज टू मोर नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अलॉन्ग विद दैट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। इन दोनों के तहत कुछ लोगों को ये बीमारी आजकल पाई जाने लगी है, ज्यादा हम देखने लगे हैं।
1: किस तरह के टेस्ट जरूरी होते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानेंगे। फिलहाल मैं टेस्ट जानना चाहूंगी कि क्या क्या होते हैं और किस तरह से कराने चाहिए, क्या सीक्वेंस में होना चाहिए।
0: अगर आपकी पेन से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, मतलब अगर आप एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं और पेन के कारण आप छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं, या आप यंग एज ग्रुप में हैं और ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हैं, या आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है, और क्लिनिकली डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो पहला जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं। वो हमें कुछ हद तक आइडिया देता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हमें बताता है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम लोग MRI की ओर जाते हैं।
1: हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
3: हेलो
1: जी, बताएं अपना नाम बताएं। जी
3: मैम सरस्वती, सरस्वती
1: जी, सरस्वती जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: मैम अहमदाबाद से, आप अनुराधा मैम बोल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल बोल रहे हैं, और डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं। बताएं क्या सवाल है आपका?
3: हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते
1: जी, नमस्कार आपको भी, हम दोनों की ओर से नमस्कार। बताइए
3: मैम, मैं ब्लाइंड हूँ
1: जी
3: और मेरा एक बेटा है।
1: हाँ हाँ,
3: लेकिन आप ये जो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आप बता रहे हैं
1: जी,
3: तो मैम इसमें डायबिटीज और सीट आते हैं मुझे, तो उससे भी रिलेटेड ये बीमारी हो सकती है?
0: नहीं, डायबिटीज अलग बीमारी है और एंडोमेट्रियोसिस अलग बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली आपको पेन होता है बहुत सीवियर, नीचे के शरीर के नीचे के हिस्से में, बच्चेदानी के हिस्से में, वहाँ पे पेन।
1: जी आपका सवाल समझ नहीं पाए, दोबारा बताएं।
3: ये पूछ रही हूँ मैम कि जैसे डायबिटीज है मुझे,

0: मुझे डायबिटीज ये जो एंडोमाइसिस के से रिलेटेड है क्या? क्योंकि जब मैडम जब मैं मेरी जो पेशाब की जगह है ना, तो वहाँ पे एकदम जाम जम जाता है, जैसे मैल जमती है ना बॉडी में,
1: जी
0: इस टाइप से जमती है।
1: मतलब आप कहना चाह रही हैं
0: उसके लिए ईथिंग की दवाई लेनी पड़ती है, तब वो फर्क पड़ता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने अभी
2: एंडोमेट्रियोसिस से एंडोमेट्रियोसिस से उसका रिश्ता नहीं है। आपको डायबिटीज है और डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको नीचे में वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और इचिंग की शिकायत आपको आ सकती है। आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वापस आएगा।
1: तो क्या इनको टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि ये संदेह की स्थिति में लग रही हैं कि डायबिटीज की वजह से? ऐसा तो नहीं कि आज का जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं इनको भी वो बीमारी हो, क्या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, इनके सिम्टम्स पेन के नहीं है,
1: ठीक है,
2: पर और इनको एक बच्चा हो गया है तो दो जो सिम्टम्स है एंडोमेट्रियोसिस के वो पेन या सब फर्टिलिटी, वो दोनों ही नहीं है। चेक कराने में कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इनके अल्ट्रासाउंड हुए होंगे, उसमें भी पिकअप नहीं हुआ है, तो अनलाइकली है जो सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज के ज्यादा लग रहे हैं।
1: तो सरस्वती जी बिल्कुल फिक्र न करें, मैम ने आपको आश्वस्त कर दिया है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करें, बाकी सारी समस्या खुद सुलझ जाएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहिबा, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं तो आपने अभी जानकारी दी, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगी?
2: टेस्ट मेनली मैंने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड है, MRI है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो डॉक्टर आप देख रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज भी मैटर करती है एंडोमेट्रियोसिस में। इन सब के बाद हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है, फिर उसका इलाज उस हिसाब से कि आपकी क्या सिम्टम्स है उसके आधार पे किया जाता है।
1: कोई खास उम्र होती है इस रोग को होने की, या किसी को भी हो सकता है?
2: नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। आजकल हम लोग एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी देखते हैं और मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी देखते हैं, यंग एज में तो पर्टिकुलरली ये बहुत ही कॉमन है, तो कोई भी एज इससे परे नहीं।
1: ठीक है, हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। रविंद्र पाठक जी, आशा पाठक जी फ्रॉम नीदरलैंड से, इन्होंने लिखा है कि हमारा प्रश्न है, नमस्कार भेजा है डॉक्टर साहिबा आपको
2: जी, नमस्कार
1: जी। फिर ये लिख रहे हैं कि यूट्रस रिमूव करने के बाद किस प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसे खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है, इनका क्वेश्चन है।
2: ये डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस किस वजह से रिमूव हुआ था। आपका यूट्रस अगर हेवी ब्लीडिंग के कारण रिमूव हो सकता है, आपका यूट्रस कैंसर के कारण रिमूव हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से आपका यूट्रस रिमूव हुआ था, सावधानी उसी हिसाब से आपको बरतनी चाहिए। तो वो सब चूंकि डिटेल मेरे पास नहीं है, तो ये कहना कि एग्जैक्ट क्या सावधानी बरतनी होगी ये मेरे लिए मुश्किल होगा, तो बेहतर होगा कि आपके जो नियर बाय डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें और अपनी समस्या उनसे बात करें।
1: और हम अपने ऐसे श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी दूर बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं और क्वेश्चन करके लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर रहे हैं। और हमारे श्रोता हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्त्री रोग से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी विशेषज्ञ ममता मिश्रा जी आपको बता रही हैं कि आप कैसे, अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको आप कैसे निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने कहा कि किसी उम्र में भी आपने बताया कि ये रोग हो सकता है, तो क्या ये वंशानुगत भी होता है?
2: हाँ, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रोल है। कई बार देखा गया है कि फैमिली में रन करती है कि अगर मदर को था तो डॉटर को हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है। कई बार पेरेंट्स को नहीं भी होता है तो भी फीमेल्स नाउएडेज आर गेटिंग दिस डिजीज।
1: जी, तो श्रोताओं बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वंशानुगत भी ये रोग हो सकता है जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया है, और आपको कारण निवारण सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप उसको किस तरह से निदान पा सकते हैं। अगर रोग की शुरुआत की बात करें मैम, तो किस तरह से माना जाता है कि वजह क्या हो सकती है इसकी?
2: जैसे मैंने बताया, कारण एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर अगर यू आर एक्सपोज टू लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स, आपको ये हो सकता है
1: जी।
2: प्रिवेंशन का एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं है, बट हेल्दी लाइफस्टाइल है अगर, एक्सरसाइज है अगर, एंड तो उसका रोल है इसमें, ये माना गया है, पर एविडेंस नहीं है कि हम वो करेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरा होता है कि अगर आपके अर्ली डायग्नोसिस जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो गई है तो मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो हम उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं, डिजीज को क्योर तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बट उसको सप्रेस करके रखा जा सकता है फॉर ए लॉन्गर टाइम।
1: क्या इसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है? जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम ही ये माना जाता है कि अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये वजह हो सकती है?
2: एक वजह हो सकती है, पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं और एविडेंस कहता है कि 15-20% ऑफ वुमेन जिनको कि एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस्ड है, स्टिल दे कैन कंसीव नेचुरली एज वेल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो गया है तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। जिनको भी डायग्नोसिस हुई है, एंडोमेट्रियोसिस के भी कई स्टेजेस होते हैं, माइल्डर होते हैं और सेवियर भी होते हैं। नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है इसमें, ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है। और नेचुरली अगर 20% कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये बेहतर होता है कि सारे आप टेस्ट करा लें, और अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द रीजन, बट इसका इलाज पॉसिबल है।
1: हमारे पास सारोका जी का नोएडा से सवाल आया हुआ है कि इनकी बेटी 24 साल की है, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड्स के दौरान, और साथ साथ वोमिटिंग भी फील होती है, तो लूज मोशंस भी होते हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
2: नमस्कार आलोका जी, देखिए अगर आपकी डॉटर्स का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। जरूरी नहीं है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस हो। कई बारी इसको हम लोग कंजेस्टिव डिसमेनोरिया कहते हैं, ये यंग एज में काफी कॉमन है। जब आप एग रिलीज करते हैं जिस साइकिल में, उस साइकिल में आपको पेन हो सकता है, और केवल सिम्टोमेटिक जैसे पेन किलर से भी इसका इलाज हो सकता है
1: जी।
2: बट अगर आप हमारी सलाह मानेंगे तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है उनके पेन होने का।
1: जी, अल्ट्रासाउंड बताया मैम, और इन्होंने अभी अभी लिखा है कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया है इनका, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: तब तो अच्छी बात है ये कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो हम लोग देते हैं वो नॉर्मली पेन किलर ही देते हैं, तो आपके नियर बाय डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पीरियड्स के समय ले सकते हैं। सेकेंड लाइन थेरेपी होता है अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है, या आपको उससे एलर्जी है या कोई साइड इफेक्ट्स है, तो आप सेकेंड लाइन में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप कंटिन्यूअसली भी ले सकते हैं और नॉर्मली जैसे किस दिन के गैप पे भी ले सकते हैं, तो वो आप ले करके, एंड दैट इज वन ऑफ द गुड मेथड To get rid of the pain।
1: जी, और ये तत्काल मैसेज करके धन्यवाद भी कर रही हैं। तो आलोका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि कभी कभी कॉल्स नहीं लगते हैं, लोग करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप लोगों के जो सवाल है उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो श्रोता है उनकी समस्या का समाधान उनको मिलता है, तो हमारी ओर से आपको धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं मैम, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे की बात। थैंक यू।

0: जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जिनसे आज हम बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप मेरे को सुन रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, आपका ही सवाल ले रहे हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: कोई ये जो हैबिचुअल अबॉर्शन की जो दिक्कत है, ये किन कारणों से होती है? जैसे वाइफ के 5 टाइम।
1: जी सर, अपना नाम बता दें, सवाल तो आपका सुन रही है डॉक्टर साहिबा, अपना शुभ नाम बता दें।
2: नहीं, मेरा नाम राजेश रहा हूँ।
1: हाँ जी,
2: तो ये 5 टाइम आफ्टर 3 मंथ जो है, हमने MC से भी इलाज करा दिया, तो आफ्टर 3 मंथ के बाद अबॉर्शन हो जाता है। कोई रीजन नहीं, प्लाज्मा करेंगे, ये करेंगे, बच्चे जाने का अबॉर्शन हो जाता है आफ्टर 3 मंथ, है ना
3: जी। जी मैं समझ गई आपके सवाल, नाम मैं नहीं सुन पाई, नमस्ते। देखिए बहुत सारे कारण हैं और हमारे पास समय इतना नहीं है कि मैं उन सब कारणों को आपको बता पाऊं, लेकिन अगर आपके बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं तो जरूर कुछ टेस्ट आपके भी हुए होंगे और कुछ टेस्ट आपके वाइफ के भी हुए होंगे, और कई बार हम लोग टेस्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उस पर भी करते हैं। उसके बाद हम लोग एक कारण पे पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी हम आपको कारण बता पाएं, इसीलिए इस अभी तो इसमें चर्चा करना

0: आगे क्यों हो जाते हैं कारण, ये तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट हो जाती है और हमें एक एक करके सबको हटाना होता है कि ये नहीं है और ये नहीं है। बेहतर होगा कि अगर आप आकर के एक बार मिल लें। आप कहाँ रहते हैं?
1: में भी दिखा दिया है
0: कोई बात नहीं,
1: ना।
0: एक बार आकर के अगर
1: नहीं
0: मिल
1: नहीं
0: लें।
1: उनका लास्ट डिसीजन यह है कि बच्चेदानी का मुंह सील्ड करना पड़ेगा।
0: देखिए, बिना पेपर देखे बिना कारण जाने मैं आपको कोई भी सलाह इस पे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे पाऊंगी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बेहतर
1: सर
0: होगा
1: हमारे
0: कि
1: लिए भी मुश्किल है सर।
0: हाँ, मैं समझ गई। मैं कोई आप एक बार आके मिल सकते हैं, कहीं पे भी के मिल लें तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। थैंक यू
1: थैंक यू सर।
2: जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है। डॉक्टर साहिबा, नदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं, आपको नमस्कार भेजा है इन्होंने, साथ ही मुझे भी भेजा है। लिख रहे हैं कि स्त्री परिवार की धुरी होती है, सुबह से रात तक काम करती है परंतु अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती है। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो इस नाते आप क्या कहेंगी कि किस तरीके का चेकअप कराते रहना चाहिए महिलाओं को?
0: नमस्ते, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो चीजें मैं सोचती हूँ मेरे प्रैक्टिस में जो मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ जरूर कराएं। एक है कि आप अपना पैप्समियर टेस्ट, जो कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए है, सर्वाइकल कैंसर, और ये 5 साल में एक बार ही होता है, इसको पैप डुओ टेस्ट कहते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाता है। ये जरूर अपनी वाइफ और आपके घर में जितनी औरतें हैं उनका जरूर कराएं। दूसरा जो होता है उनको एनुअली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए भी चेक कराएं। और तीसरा है फ्लू वैक्सीनेशन मैं रिकमेंड करती हूँ, ताकि वो डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली कर सकें। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द एज, ब्रेस्ट चेकअप के लिए मैमोग्राम इज रिकमेंडेड, पर ये 50 के ऊपर की है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं, सो दैट अगर ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उसको वो जल्दी पकड़ सकते हैं। ये मिनिमम है, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं बट ये बहुत जरूरी है। और फिजिकली एक्टिव रहना, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट।
2: जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है प्रिंसी जैन जी का, इन्होंने लिखा है, कहाँ से भेजा है ये मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं लिखा है शायद इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 30 वर्ष की है और लिख रही है कि पीरियड के दौरान इनको पेन होता है, साथ साथ जब ये मॉर्निंग में यूरिन पास करती हैं तो ब्लड भी आता है, ऐसा इनके साथ रेगुलर चल रहा है। क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके का इनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है?
0: मेरे लिए जानना जरूरी है प्रिंसी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हुए हैं, या आपकी सर्जरी कोई हो रखी है या नहीं। इस आधार पे हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं आपको। पहला चीज है यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करना, जिसमें यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है जो यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करेगा। और दूसरा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि यूट्रस में कोई लंप बम्प है कि नहीं, जो कि जिसके कारण आपको ये तकलीफ या परेशानी हो रही हो।
2: जी, डीएसए भी इन्होंने लिखा है कि डीएसए भी हुआ है और बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई ही हैं इनके लिए।
0: हाँ, बट ये जैसे मैंने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको सारी चीजें तो नहीं बता सकते, बट बेसिकली जो आपकी समस्या है वो पेनफुल पीरियड्स है एंड ब्लड इन द यूरिन है। इसके लिए पहले हमें, मैंने जैसे एंडोमेट्रियोसिस अगर रूल आउट करना है तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई बनता है, और साथ में किडनी का इवेल्युएशन भी बनता है विथ यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड किडनी के अलावा। ये सब चीजों के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट हो सकता है।
2: मैम, अगर उम्र की बात करें तो अगर किसी 17 वर्ष की बच्ची को एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है तो उसका क्या इलाज होगा, या उससे बड़े किसी उम्र की महिला को है तो क्या इलाज अलग अलग होता है?
0: हाँ, इलाज का जो हम इलाज जब करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं, पहला वेरिएबल होता है एज कि क्या एज है, दूसरा होता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, पेन अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर पीरियड पेन, ड्यूरिंग सेक्स, ये सब चीजें हम इवेल्युएट करते हैं।
2: जी,
0: फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एमआरआई की जरूरत पड़ती है तो कराते हैं। नाउ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिम्टम्स पेशेंट्स आर हैविंग, वी गो फॉर इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम दवाइयों से उनकी इलाज करने की कोशिश करें। तो दवाइयों में पहला होता है पेन किलर। अगर उनका पेन बहुत सिवियर नहीं है और एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड है तो हम लोग सिर्फ पेन किलर से भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हार्मोनल थेरेपी, जिसे कहा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कहते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, या प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स आती हैं, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि 17 साल की है और सिस्ट है, सिस्ट का साइज हमें ये बताता है कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट हो सकता है। सिस्ट के बावजूद भी हम लोग मेडिकली उसको मैनेज कर सकते हैं अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो। मेडिकल मैनेजमेंट में बस ये है कि
2: इस पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: मेरा नाम सुषमा है।
2: सुषमा जी कहाँ से बोल रही हैं?
3: ये दिल्ली से बोल रहे हैं
2: जी। बताएं क्या सवाल है आपका।
3: ये किसे तक बच्चा हो सकता है? एक बच्चा है हमारे पास, वो 5 साल का है, दूसरा बच्चा बहू के लिए सोच रही है।
2: अच्छा आप अपनी बहू के लिए सवाल कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप मैम?
0: वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे होने के लिए और बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी कोई हालत?
3: अभी कोशिश तो नहीं कर रहे।
0: तो फिर उनको कोशिश कर लेने दीजिए, हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी जब वो कोशिश करें और सक्षम ना हो पाए।
3: अच्छा 40 साल
0: में भी बच्चे होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए, जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक बच्चे हो सकते हैं।
3: ठीक है,
0: और हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं।
2: तो ये घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, उस नाते इन्होंने ये सवाल कर लिया और मैम ने आपका समाधान भी कर दिया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि उम्र के अनुसार जिस तरीके के ट्रीटमेंट आप बता रहे थे, क्या कहेंगे?
0: जी तो मेडिकल मैनेजमेंट भी अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो हो सकता है, एडोलेसेंट में प्रेफर करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अगेन देयर आर मेनी वेरिएबल्स जैसे मैंने कहा, और लेकिन उसमें फिर आपको लॉन्ग टर्म फॉलो अप में भी रहना होता है। इस बीमारी के साथ यही है कि लंबी बीमारी है, आपको अगर सर्जरी भी होती है, मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है तो भी रिकरेंस का रिस्क रहता है
2: जी।
0: तो आपको हमेशा आपको फॉलो अप में रहना पड़ता है।
2: तो क्या सर्जरी ही एक विकल्प है मैम, या फिर मेडिसिन के जरिए भी बीमारी ठीक हो सकती है?
0: बीमारी को हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, सर्जरी भी करना पड़ता है कई केसेस में। मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए अगर उनको सीवियर पेन है, एंडोमेट्रियोसिस का स्टेज 3-4 है, कई बार 1-2 में भी करना पड़ता है, सिस्ट का साइज काफी बड़ा है, अगर कट ऑफ हमारे लिए 4-5 सेंटीमीटर होता है, और सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट का सिम्टम्स और उसके क्या चॉइसेस हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें सारे ऑप्शंस देते हैं, मेडिकल सर्जिकल, और उनकी सुविधा अनुसार जो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होता है फिर हम लोग वही निर्धारित करते हैं।
2: डॉक्टर साहिबा हमारी एक श्रोता है श्याम मित्तल जी, रोहिणी से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 74 वर्ष की है और इन्होंने सवाल तो नहीं भेजा है लेकिन प्रोग्राम की तारीफ की है। लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आज रेडियो डॉक्टर के माध्यम से जो फीमेल्स हैं वो खुद आज बातचीत कर रही हैं और उनके कॉल्स आ रहे हैं, साथ साथ ये बधाई दे रहे हैं यहाँ पे शालिनी मैम को, मुझे और डॉक्टर साहिबा आपको भी कि इतने अच्छे विषय पर आज आप चर्चा लेकर आए हैं, तो इन्होंने उसके लिए मैं बधाई दी है। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारी जो आप तारीफ करते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने कोई सवाल भी भेजें तो और भी अच्छा रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो
2: जी मैम बताएं क्या सवाल है आपका, पहले नाम बता दें अपना।
4: नमस्ते मैम, मैं प्रभ पंजाब से बोल रही हूँ।
2: जी
4: हाँ जी मैम, मैं अपनी फ्रेंड के बारे पूछना चाहती हूँ।
2: ठीक है बताइए मैम क्या सवाल है आपका।
4: मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में है, बल्कि उसकी शादी को 7 साल हो गए मैम, पर उसके ना बच्चा नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं होती मैम।
2: ठीक है
4: हाँ जी,
0: जी।
4: तो वो जब मतलब की थोड़ा टाइम होता है जब प्रेगनेंसी होती 2 बार उसका इससे केस की खराब हो जाता है।
0: जी ये सवाल पहले भी आया था जिन्होंने एम से पूछा था कि उनके 5 बार खराब हो गए हैं, इसके कई कारण होते हैं और जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो कारणों को उनके बारे में पता लगाते हैं। कई बार क्या होता है 2-3 मिसकैरेजेस के बाद भी आपकी संभावना नेचुरली प्रेग्नेंट होने की काफी होती है, तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सही इलाज से आप कंसीव कर सकते हैं, ये उन्हें हिम्मत देने की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आदमी काफी निराश हो जाते हैं और ये निराशा ही कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने देती है,
4: वो बहुत टेंशन में रहती है।
0: हाँ ये उनको ये कहना होगा कि अगर आपके एक बार बच्चा खराब होता है तो 90% चांस है कि आप दोबारा आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अगर आपका 2 बार बच्चा खराब होता है तो भी आपके 85% चांसेस हैं कि आप आराम से प्रेग्नेंट होकर के आपके नॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, सही इलाज की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मुझे ये बताना कि क्यों हो रहा है ये थोड़ा मुश्किल है, आप नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं, कारणों लक्षणों के बारे में जान सकते हैं और हिम्मत रखेंगे तो जरूर कुछ ही दिनों में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी।
2: और आपने बात की मैम कि खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए संगीत भी बड़ा जरूरी होता है, तो क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी लेकर आप अपने आशियाने में खुश रह सके, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ साथ महिलाएं अगर स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो कोई ना समझ सके। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस पर, किस तरह की यह बीमारी और कैसे आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर तमाम जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर ममता मिश्रा जी। मैम, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो कितने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले रोगी के मन में ये सवाल होता है कि क्या सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
1: ये एक लंबी बीमारी है, इसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको दवाइयां लंबी चले या ना चले, आपको दवाइयों की जरूरत है या आपको सर्जरी की जरूरत है या आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट एक चीज तो है कि आपको फॉलोअप में कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा। फॉलोअप में रहना इसलिए जरूरी है कि ताकि हम इसको, अगर रिकरेंस होता है, दोबारा ये बनता है, तो हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और मेडिकली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसका चलता है और ये तब तक चलता है मोस्टली जब तक कि आपके पीरियड्स बंद नहीं हो जाते हैं। तो अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव एज टाइम है, जिस समय आपके पीरियड शुरू हुए और जब तक वो खत्म नहीं होते हैं, किस एज में आपकी डायग्नोसिस होती है, मान लीजिए किसी की डायग्नोसिस ही 45 में हुई है तो उसका इलाज बहुत लंबा नहीं चल सकता है, पर किसी के अगर 16 इयर्स में डायग्नोसिस हुई है तो हो सकता है उसका इलाज लंबा चले, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है।
0: तो ये क्या सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होने वाली डिजीज है, ऐसा कह सकते हैं?
1: हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि मेनली जो कारण होता है इसका ये पीरियड्स से ही रिलेटेड होता है। जो हम लाइनिंग पीरियड्स के समय शेड करते हैं
0: जी,
1: जब आपके हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तो वही लाइनिंग आपके बच्चेदानी के आसपास की जो जगह है वहां पे ये पनपती है आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इसी की वजह से ये बीमारी पनपती है।
0: मैम, आजकल जो देखा जाता है कि बहुत अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले भी लोगों को मालूम था लेकिन इतना लोग नहीं करते थे, अब खास करके योग की तरफ लोग दोबारा आकर्षित हो रहे हैं, क्या व्यायाम से और योग से इस बीमारी पर कोई असर पड़ेगा और खान पान बदला जाए, प्राकृतिक रूप से जुड़ा जाए?
1: इस पर काफी जगह चर्चा होती है पर अगर साइंटिफिक एविडेंस कहें तो हमारे पास बहुत नहीं है। हैविंग सेड दैट, इट इज ऑलवेज इनकरेज टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इंक्लूड्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए। इस बीमारी पे कितना इम्पैक्ट है ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बहुत विशेष चर्चा के दौरान बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कोई भी स्त्री रोग से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैम, एक म्यूजिकल ब्रेक और बनता है, यहाँ देते हैं।
1: थैंक यू।

0: मैम हमारे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से।
0: जी आपका स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका।
1: मैम मेरे दो बच्चे हो चुके हैं सेकेंड डिलीवरी, तो मैम जैसे मेरे पीरियड्स में के दौरान पेन होता है, तो मैम इस टाइम भी मुझे ये बीमारी हो सकती है इस टाइम पे भी। और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोपर्टी सेकेंड डिलीवरी के बाद कोपर्टी लगवा ली थी, तो मैम 10 इयर्स होने वाले हैं, तो उसके बाद निकाल सकते हैं कि मतलब उससे पहले निकलवा लेना चाहिए? जैसे अप्रैल में मैम होने वाले हैं 10 ईयर, तो उससे पहले निकालना चाहिए कि बाद में 1-2 महीने का डिले भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैम से।
2: पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हें पेन जो हो रहे हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है या कोई और कारण भी हो सकता है?
1: हाँ जी मैम।
2: ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी?
1: मैम पहली डिलीवरी मेरी नॉर्मल है, सेकेंड डिलीवरी से हुआ है।
2: तो पेन तुम्हें पहले डिलीवरी के बाद शुरू हुआ या पेन तुम्हें सेकेंड डिलीवरी के बाद शुरू हुआ?
1: मैम ये शुरू से ही मैम पीरियड्स के दौरान मैम होता ही है।
2: तो बेस्ट होगा कि पहले तुम अल्ट्रासाउंड करा करके देख लो, इससे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है, कई बार सर्जरी के कारण भी ऑर्गेन आपस में चिपक जाते हैं जिसे हम एडहेशंस कहते हैं, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और पेन के और भी कई कारण हो सकते हैं, वो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। बट सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एंडोमेट्रियोसिस है इसी वजह से तुम्हें अभी ये पेन हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस अगर होता है तो कई बार लोगों को बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, और तुम्हारे दो बच्चे हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली कोई और भी कारण हो सकता है पेन का, जो हमें इवेल्युएशन के बाद पता लगेगा। दूसरा सवाल था कॉपर्टी के लेकर के। जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसमें से कॉपर जो है वो खत्म हो जाता है, तो बेहतर होता है कि आप उसको उसी समय निकलवा लें। डिले करने से उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी नहीं रह जाती है, तो इससे बेहतर होगा कि आप टाइम पे ही उसको निकलवा लें।
0: पेन कहीं उसकी वजह से ही तो इनको नहीं है ऐसा?
2: नहीं, मैंने जैसे कहा कि 10 साल से है इनको कॉपर्टी इन्होंने लगा रखा है, अगर इतना सीवियर पेन होता तो शायद ये अब तक निकलवा चुकी होती। ये इवेल्युएट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि पेन का कारण क्या है, तभी हम उस पे एड्रेस कर सकते हैं। पर एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है, विच इज वेरी अनलाइकली। दो
0: टीना जी पंजाब से हमें सवाल भेज रही हैं कि सिस्ट होने का रीजन क्या होता है ओवरीज में?
2: ओवरीज में सिस्ट बहुत तरह से बनते हैं, कुछ सिस्ट में जो बनते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो नॉर्मली नेचुरली बनते हैं, बहुत सारे औरतों को बनते हैं, और उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है टीना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिस्ट कौन से प्रकार का है, उसके आधार पे ही हम लोग बता सकते हैं कि ये नेचुरल है या इसके लिए तुम्हें इलाज की जरूरत है। हम जो टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो भी एक तरह से सिस्ट बनाता है। उस सिस्ट के अंदर, सिस्ट मतलब होता है बैलून, जिसके पतला बैलून जिसके अंदर पानी भरा हो, जब उसके अंदर ब्लड भर जाता है तो उसे हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। तो जैसे सिस्ट के बहुत प्रकार होते हैं, तुम्हारे अगर तुम्हें है या तुम्हारे परिवार में किसी को है, तो उस प्रकार के तहत हम निर्धारित करेंगे कि उसे इलाज की जरूरत है या नहीं है।
0: तो मैम एक आखिरी सवाल के मेडिकल अनसर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं चलते चलते।
2: जी ये मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट जो होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, पहले हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल में बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं जो हम सिम्टम्स के आधार पर तय करते हैं और साइड इफेक्ट के आधार पर तय करते हैं, और एक जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एज ऑफ द पेशेंट। तो कोई भी मेडिसिन जो होता है, जैसे आते हैं पेन किलर आता है फर्स्ट लाइन, दूसरा जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तीसरा होता है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, और दो तरह के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम देते हैं एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को। मोस्टली ये इफेक्टिव होते हैं अगर आपकी डिजीज माइल्ड है, या मॉडरेट में भी दिया जाता है और सिस्ट साइज स्मॉल है, या आपकी सर्जरी हो चुकी है उसके बाद हम रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में कई बार बहुत तरह की सर्जरी होती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व है और आपकी उम्र कितनी है और आपके सिम्टम्स पेन है या सब फर्टिलिटी है। अगर सिस्ट है तो सिस्ट को निकाला जाता है, और बाकी अगर एडहेशंस हैं तो उनको छुड़ाया जाता है सर्जरी के दौरान, और उस पोस्ट ऑपरेटिवली फिर हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे डाल देते हैं।
0: तो श्रोताओं आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। उम्मीद है कि आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। आज हमारी विशेषज्ञ थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से संबद्ध हैं। तो कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए इजाजत। उसके पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: Cash Money. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर शाम के 4 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल नगुएंग त्रुओंग थांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न हो गई है। इस सम्मेलन में शुष्क भूमि पर खेती की चुनौतियों से निपटने और इसके समाधानों में तेजी लाने के लिए दक्षिण दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग बढ़ाने की पुरजोर अपील की गई। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अच्छा है पर सुनने में कुछ आपको तकलीफ भी हो सकता है क्योंकि नाजुक टॉपिक है पर आजकल चल रहा है समाज में बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बच्चों पे क्या असर पड़ता है, डिवोर्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, आइए जानेंगे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। तलाक एक परिवार के लिए मुश्किल समय हो सकता है। न केवल माता पिता एक दूसरे से संबंध बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं बल्कि वे अपने बच्चों के परवरिश के नए तरीके भी सिखा रहे हैं। जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चों पर तलाक का असर अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे तलाक के प्रति स्वाभाविक और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य बच्चे बदलाव के साथ संघर्ष कर सकते हैं। बच्चे लचीले होते हैं और सहायता के साथ तलाक के संक्रमण को संकट के बजाय समयोजना के रूप में अनुभव किया जा सकता है। चूंकि तलाक में बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग उम्र, इसीलिए बच्चों पर तलाक का प्रभाव भी अलग अलग होता है। सभी स्वभाव के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर तलाक का सामना करता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह तलाक के बच्चों पर पड़ने वाले कुछ सबसे आम प्रभाव बताए गए हैं जिनके प्रबंधन में माता पिता की मदद कर सकता है। तलाक परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुश्किल होता है। बच्चों के लिए परिवार की बदलती गतिशीलता, इसको समझने की कोशिश करना उन्हें विचलित और भ्रमित कर सकता है। उनके दैनिक ध्यानों में ये व्यवधान बच्चों पर तलाक के प्रभाव में से एक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में देखा जा सकता है। That means it will affect their academics. बच्चे जितने अधिक विचलित होंगे उतने ही अधिक संभावना है कि वो अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। शोध से पता चला है कि तलाक बच्चों को सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। जिन बच्चों का परिवार तलाक से गुजर रहा है उन्हें दूसरों से घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका सामाजिक संपर्क कम हो सकता है। तलाक के कारण बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बार बार बदलाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाई पड़ती है। नए परिवार की गतिशीली, नया घर या रहने की स्थिति, स्कूल, दोस्त और बहुत कुछ, इन सभी का असर हो सकता है। तलाक एक परिवार के लिए कई तरह की भावनाओं को सामने ला सकता है और इसमें शामिल बच्चे भी इसे अलग नहीं है। नुकसान, गुस्सा, भ्रम, चिंता और कई अन्य भावनाएं सभी इस संक्रमण से आ सकती हैं। तलाक बच्चों के अनुभूति और भावनात्मक रूप से संवेदनाशील महसूस कर सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बच्चों को अपनी भावनाओं को बेहतर निकालने के लिए एक आउटलेट की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे बात कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात सुन सके। बच्चे तलाक के प्रभावों को अपनी भावनाओं को संसाधित करने के तरीके महसूस कर सकते हैं। कुछ मामले में जहां बच्चे अभिभूत महसूस करते हैं और तलाक के दौरान महसूस होने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया करना नहीं जानते, वे क्रोधित या चिड़चिड़ा हो सकते हैं। उनका गुस्सा कई तरह के कथित कारणों पर निदर्शित हो सकता है। तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रहे बच्चे अपने माता पिता, खुद पर, अपने दोस्तों और दूसरों पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जबकि कई बच्चों के लिए ये गुस्सा कई हफ्तों के बाद खत्म हो जाता है। अगर ये बना रहा तो ये जानना जरूरी है कि ये बच्चों पर तलाक का एक स्थायी प्रभाव हो सकता है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उनके परिवार में तलाक क्यों हो रहा है। वे कारणों की तलाश करेंगे या सोचकर कि क्या उनके माता पिता अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते या उन्होंने कुछ गलत किया है। अपराध बोध की ये भावनाएं बच्चों पर तलाक का एक बहुत ही सामान्य प्रभाव है, लेकिन
ये कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। अपराध बोध दबाव बढ़ाता है, अवसाद तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। इससे अपनी भूमिका को समझने के लिए बच्चों को संदर्भ और परामर्श प्रदान करना अपराध बोध की इन भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। जब बच्चे ऐसे कठिन समय से गुजरते हैं तो अनसुलझे संघर्ष भविष्य में अप्रत्याशित जोखिम पैदा कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि पिछले 20 सालों में तलाक का सामना करने वाले बच्चों में अपराध में भाग लेने, विनाशकारी व्यवहार के जरिए विद्रोह करने की संभावनाएं ज्यादा होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि उन्हें धूम्रपान की आदत लग गई है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन मुद्दों से निपटना शारीरिक समस्याओं सहित कई तरह के परेशानियों का कारण बन सकता है। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चे वे बीमारी की संभावना अधिक हो सकती है, जो कई कारकों को और कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सोने में कठिनाई भी

शामिल है। इसके अलावा अवसाद के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य की हानि और बिगड़ते स्वास्थ्य के लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चों को अपने रिश्ते में होने पर तलाक की संभावना अधिक होती है। कुछ शोध संकेत देते हैं कि तलाक की ये प्रवृत्ति गैर तलाकशुदा परिवारों से आने वाले बच्चों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो सकता है। फिर भी जबकि यह तलाक के बच्चों पर होने वाले कुछ संभावित प्रभाव है, ये किसी भी तरह से पूर्ण या पत्थर पर लिखे हुए नहीं है। अधिक से अधिक परिवार समझ रहे हैं कि तलाक उनके बच्चों के साथ साथ उनके लिए भी कितना तनावपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सुन चुके हैं कि क्या होता है, बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जो भी है, अपने फैमिली को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प तो हमेशा ही सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी निर्णय आप लेते हैं इसका असर सीधा अपने बच्चों पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉल और मैसेजेस ऑन 09515227039, दैट 09515227039, और राइट टू अस एट feedbackamc1@gmail.com, दैट्स feedbackamc1@gmail.com। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस एट आर सोशल मीडिया हैंडल spice.lamhe.vanilla, दैट्स spice.lamhe.vanilla। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दोबारा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं दीपिका लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। और आप जानते ही हैं, संडे को अल्फा जैन में ये जो 4 से 5 का वक्त है, ये रहता है हमारे प्रोग्राम रेनबो जीनियस के नाम। रेनबो जीनियस यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें हम पूछते हैं आपसे 5 सवाल और 5 सवालों के लगातार सही जवाब देकर आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस। तो जल्दी से आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। रूल्स मैं बता देती हूँ एक बार। 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगी। सवाल जनरल नॉलेज से जुड़े होंगे, करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। आप इंटरनेट या किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं ले सकते। आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। और लगातार अगर आप 5 सही जवाब दे देते हैं मेरे दोस्त, तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। तो चलिए इस गाने के उस पार कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे।

0: फिल्म बॉर्डर टू से इस गाने के साथ हो चुकी है आज के प्रोग्राम रेनबो जीनियस की शुरुआत। और यहाँ पर पहले लिसनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो रेनबो जीनियस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन है हमारे साथ, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: ओके उमेश, आपने पहले खेला हुआ है रेनबो जीनियस?
1: जी।
0: ठीक है, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको मुझे बताना है मानस का हंस के लेखक कौन है?
1: नहीं पता जी।
0: ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको और बाकी सारे लिसनर्स को इसका सही जवाब दे देती हूँ। इसका सही जवाब है अमृत लाल नागर। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि यहाँ पर जरूरी नहीं है जीतना ही, यहाँ पर कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक नई चीज, एक नए सवाल का जवाब आपने यहाँ पर सीख लिया। बस आप बने रहिए मेरे साथ और लिसनर्स के साथ भी, मैं यहाँ पर बिल्कुल जुड़ूंगी। फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आप तक, इंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 प्रोग्राम है रेनबो जीनियस।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ और प्रोग्राम आप यहां पर इस वक्त सुन रहे हैं अल्फा जैन, जिसमें आज है प्रोग्राम रेनबो जीनियस। तो रेनबो जीनियस में इस वक्त एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो रेनबो जीनियस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए उनसे हम यहां पर बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं मनोज बंसल बोल रहा हूँ जी, हांसी हरियाणा से।
0: ओके मनोज जी, आपने पहले खेला हुआ है रेनबो जीनियस?
1: हाँ जी, एक दो दफा खेला हुआ है, नंबर ही नहीं लगता, कभी कभी लगता है।
0: अच्छा जी, ठीक है। आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको मुझे बताना है विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है?
1: नहीं मालूम मैडम।
0: ओके, कोई बात नहीं, 27 सितंबर को मनाया जाता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।

0: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप दीपिका के साथ जुड़े हैं। प्रोग्राम रेनबो जीनियस है। यूं ही मेरे साथ अपने इस साथ को आपको बनाए रखना है।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न

0: humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: खेतों से थाप की क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और यहाँ आपके साथ दीपिका है। प्रोग्राम है रेनबो जीनियस। एक और लिसनर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेनबो जीनियस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम
0: जी अपना
1: जी,
0: नाम बताइए।
1: रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से।
0: ओके रामधारी जी, आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगी। आपको 5 सवालों के लगातार सही जवाब देने हैं रेनबो जीनियस बनने के लिए।
1: जी
0: ठीक है, आपसे मेरा पहला सवाल है। आपको मुझे बताना है महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन है।
1: महाकवि कालिदास।
0: जी बिल्कुल ठीक जवाब है। भारत का सोया स्टेट किस राज्य को कहा जाता है।
1: मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक जवाब है। तीसरा सवाल है, आपको मुझे बताना है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है।
1: फोर्ट विलियम कोलकाता।
0: जी बिल्कुल ठीक जवाब है। चौथा सवाल है, आपको मुझे बताना है कि किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है।
1: मसाला

0: कहा जाता है केरला को।
1: हाँ जी, ये जवाब भी बिल्कुल ठीक है। पांचवा और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसका जवाब देकर आप बन जाएंगे यहाँ पर रेनबो जीनियस। आपको मुझे बताना है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है?
0: ताजे पानी की झील है मैडम, वुलर झील।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक जवाब है। पांचों सवालों के जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिए हैं, रेनबो जीनियस बनते हैं आप। बताइए हमारे लिसनर्स को, क्या करते हैं आप, कितना वक्त निकाल पाते हैं रेडियो सुनने के लिए?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि निरंतर प्रयासरत रहे तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल जॉब कर रहा हूँ, साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो को अपने साथ बनाए रखता हूँ। जो आर्ली जो न्यूज होते हैं उनको सुनता हूँ और साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा मैसेज भी आपने हमारे लिसनर्स को दिया कि कोशिश करने से, लगातार प्रयास करते रहने से सफलता जो है वो जरूर हासिल होती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद मैडम।
1: तो यहाँ रामधारी जी आज के प्रोग्राम में हमारे पहले रेनबो जीनियस बन गए हैं। उम्मीद है और भी लिसनर्स साथ जुड़ेंगे और रेनबो जीनियस भी बनेंगे। अगर नहीं भी बन पाए तो कुछ नया जरूर सीखेंगे। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

0: आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं हूं दीपिका और मेरे साथ हैं एक और लिसनर जो तैयार है रेनबो जीनियस बनने के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: ओके आकाश, आपसे 5 सवाल पूछूंगी मैं, आपको लगातार 5 सवालों के सही जवाब देने हैं रेनबो जीनियस बनने के लिए।
1: जी मैम।
0: आपको मुझे बताना है, पहला सवाल है मेरा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
1: 7 अप्रैल।
0: जी बिल्कुल ठीक जवाब है। दूसरा सवाल है, टेस्ट में एक पारी में 300 रन हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे?
1: टेस्ट में रोहित शर्मा।
0: माफ कीजिएगा, गलत जवाब है, वीरेंद्र सहवाग इसका सही जवाब है।
1: ओके मैम,
0: बट थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: ओके।
0: तो आप भी हमारे साथ जुड़िए इस प्रोग्राम में और कुछ नया सीखिए। अगर सुन रहे हैं तो भी कुछ नया सीखिए और अगर रेनबो जीनियस बन जाते हैं तो फिर क्या ही बात है। दीपिका के साथ अपने साथ को यूं ही बनाए रखिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी FM रेनबो पर. प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं रेनबो जीनियस. एक और लिसनर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं. हेलो.
2: हेलो,
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए.
2: रजनीश बोल रहा हूँ.
1: रजनीश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. क्या आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में आकर बात कर सकते हैं?
2: जी जी जी, थोड़ा. हेलो.
1: हेलो.
2: हाँ जी, अब आ रही है जी.
1: हेलो. हेलो. हेलो. शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है. कोई बात नहीं, अगर वो दोबारा कॉल करेंगे तो उम्मीद है कि बात हो जाएगी. प्लीज आप लोग भी जब कॉल करें तो किसी नेटवर्क वाले एरिया में आकर करें, और अगर आसपास शोर है तो उससे भी दूर हटने की कोशिश करें, ताकि हमें, हमारे लिसनर्स को, सभी को आपकी आवाज जो है वो एकदम साफ साफ सुनाई दे सके. फिलहाल इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं. दीपिका के साथ अपने इस साथ को आपको बनाए रखना है.

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो। आपके साथ मैं हूँ दीपिका और मेरे साथ हैं एक और लिसनर रेनबो जीनियस यहाँ पर बनने के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए उनसे बात कर लेते हैं बिना देर किए। हेलो हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मैम। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं संजय बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ
0: ओके संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
1: जी
0: आपको आवाज आ रही है मेरी अभी?
1: आ रही है मैम, लेकिन धीमे आ रही है बहुत। चलिए खैर कोशिश करूंगा। चलिए
0: ठीक है, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपको मुझे बताना है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको मुझे।
1: काजीरंगा नेशनल पार्क।

0: हेलो
1: पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा ना आपने,
0: जी,
1: ये काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे को।
0: कॉर्बेट नेशनल पार्क,
1: जी
0: कॉर्बेट नेशनल पार्क
1: कॉर्बेट,
0: जी
1: अच्छा जिम कॉर्बेट ना,
0: जी
1: अच्छा यानी गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ओके
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो चलिए, और यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय करते रहिए आने वाले गाने और सीखते रहिए कुछ नया, क्योंकि यही है इस प्रोग्राम का मकसद। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। आपके साथ बनी हुई है आपकी दोस्त दीपिका।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, या यूं कहूं दीपिका के साथ बना हुआ था आपका साथ, क्योंकि अभी वक्त हो गया है इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जल्दी ही फिर होगी मुलाकात। बहुत सारे दोस्त आज जुड़े यहां पर मेरे साथ रेनबो जीनियस में, और एक दोस्त तो हमारे रेनबो जीनियस बने भी, जो नहीं बने या फिर जो नहीं जुड़ पाए सिर्फ जिन्होंने प्रोग्राम सुना, उनसे भी उम्मीद करती हूं कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूं, यही इस शो का पर्पस है। तो फिलहाल के लिए इस शो में दीपिका आपसे इजाजत ले रही है, 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी दीपांशी, लेकर आएंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी वो आपको रूबरू। मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूं, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहां जाना है। दीपिका को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

शाम के 5 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिक तंत्र है और पिछले 2 दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्री जमशेद कुचकरोव से मुलाकात की। भारत इस महीने की 15 से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को हराया। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य

जी हाँ, गुड इवनिंग। बिल्कुल, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम वही जिस पर हम आपको बताते हैं कि भाई अपनी दिल्ली में क्या कुछ नया चल रहा है और वो क्या कुछ है जो आपके लिए जानना और समझना है बेहद जरूरी। मैं करती हूँ आपका तहे दिल से स्वागत कार्यक्रम सिटी लाइट्स में। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। तो करते हैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले शुरुआत थोड़ी सी मीठी की जाए इस बहुत ही खूबसूरत सी आवाज के साथ जो कि है दीपाली सहाय की, और बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंजॉय कीजिए, मैं बस इस गाने की तरफ फिर से लौट कर आई।

आप भी झूम उठे ना इस खूबसूरत से गाने को सुनकर। जी हाँ, मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ ना, सच मानिएगा, इतना खूबसूरत गाना है, इतना खूबसूरती से गाया है। यही खूबसूरती तो हम लेकर आते हैं अपने हर कार्यक्रम में। आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, और प्रोग्राम की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे मौसम का क्या मिजाज है, मौसम किस तरह से करवटें ले रहा है। पहले अगर मौसम की बात की जाए, उससे पहले तापमान 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और बहुत अधिक गर्मी नहीं है, पार्टली क्लाउडी है, थोड़ा सा कहीं कहीं आपको बादल थोड़े से उमड़ते घुमड़ते दिख जाएंगे, और थोड़ा सा प्रिडिक्शन है कि शाम को या लेट इवनिंग थोड़ा सा आपको थंडर स्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आसमान बिल्कुल साफ है, और ये मौसम ऐसा है कि आप बस जाकर बाहर अपना ये जो वीकेंड है, संडे है, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या है? वो है भाई ट्रैफिक। तो अब जब वेदर अपडेट हो गई है तो लेकर आएंगे ट्रैफिक एडवाइजरी बिल्कुल इसके बाद। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी से पहले एंजॉय कीजिए बहुत ही बेहतरीन ट्रैक कमिंग योर वे। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मैं हूं आपके साथ दीपांशी।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

कार्यक्रम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपांशी के साथ बने हुए हैं आप। और अब जरूरी बात वो ये है कि कहाँ कहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक एडवाइजरी को देखकर निकलना है बाहर। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और इसी के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात एडवाइजरी भी जारी की है। और सम्मेलन में जो शामिल होने वाले विदेशी मेहमान या वीवीआईपी जो सुरक्षा है उसके चलते सुबह के 8 बजे से आज रात को 8 बजे तक कई रास्तों पर डायवर्जन जो है अभी भी लागू रहेगा और इस दौरान कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। ये सभी को पता है। अब एक बार फिर से बता देते हैं कि 22 प्रमुख स्थानों पर ये जो डायवर्जन है ये लागू रहेगा और इसमें 35 से भी अधिक रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है और इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, नीति मार्ग और अफ्रीका वेन्यू रोड समेत कई और मुख्य मार्ग भी शामिल हैं। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जाएगा और इसे खेला जा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इसके अनुसार भी और इसको मद्देनजर रखते भी कई जगहों पर वर्जन ऑफ ट्रैफिक लागू किया गया है जो कि शुरुआत उसकी हो जाएगी मैच के शुरुआत से ठीक एक घंटा पहले और मैच के एक घंटा बाद तक ये डाइवर्जन्स जो हैं ये लागू रहेंगी। बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट टू जेएलएन मार्ग, दरियागंज टू बहादुर शाह जफर मार्ग और फ्रॉम गुरु नानक चौक टू आसफ अली रोड, यहां पर जो डाइवर्जन है वो लागू रहेंगी और ट्रैफिक भी प्रतिबंधित रहेगा। तो सभी उन लिसनर्स से, श्रोतागणों से जो कि इस तरफ जाने का विचार कर रहे हैं, प्लीज उन रास्तों का अवॉइड कीजिए क्योंकि वहां जाएंगे तो आपको वहां से डाइवर्जन लेनी पड़ सकती है। तो इन रास्तों को कीजिए अवॉइड और बाकी दिल्ली तो आपकी है, जहां भी जाइए आराम से घूमिए, अपना संडे इंजॉय कीजिए। और अगर कहीं जाने का मन नहीं है तो बस घर पर आराम से बैठिए और आकाशवाणी एफएम रेनबो के इन सुरीले नगमों को एंजॉय करते रहिए।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स पे। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और अब जब संडे है और कहीं एंजॉय करने के लिए बाहर जाना है, वीकेंड को एंजॉय करना है, तो कहां जाया जाए? चलिए जल्दी से तैयारी कर लीजिए और रुक करिए दिल्ली हाट आईएनए का। जी हाँ, दिल्ली हाट आईएनए में शरद शिल्पोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 1 सितंबर से ये जो शिल्पोत्सव है वहाँ चल रहा है और केवल और 2 दिन है,

क्षेत्रों के कारीगरों के जो हस्तनिर्मित यानी हैंडमेड उत्पाद हैं वो देखने का और उसे खरीदने का मौका मिलेगा। आयोजन के लिए दिल्ली हाट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगे सजावटी स्टॉल्स सजाया गया है। यहाँ पर बेंत से बने ढांचे आपको मिलेंगे और इन्हें अलग अलग इंस्टॉलेशन से भी सजाया गया है। तो हस्तनिर्मित और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी अगर आप देखना चाहते हैं और इन खूबसूरत उत्पादों को खरीदना चाहते हैं तो जाइए, इंजॉय कीजिए शरद शिल्पोत्सव एट दिल्ली हाट INA।

और अब इसी के साथ दीपांशी को लेनी होगी आपसे इजाजत, जाना इसलिए क्योंकि एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए आना है। मैं आपको फिर मिलूंगी यहीं गुनगुनाते हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, लेकिन आप रखेंगे अपना बहुत अच्छे से ध्यान और हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड। अच्छे से काम कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ बने रहिए। ठीक 5:30 पर प्रोग्राम फार्म टू सिटी से जुड़ेंगे, आप सुनिएगा हमारा खास प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी, ठीक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, ठीक 5:30 पर। दीजिए दीपांशी को इजाजत, ठीक केयर, बाय बाय।

0: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: अरे सुनने वालों और किसानों, हमें तो पहचान लिया, हम हैं ओम यानी ओपी राठौर। आप सभी को नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हमने तो पूछ लिया, आप तो बता ही नहीं पाएंगे। चलिए हमने मान लिया, बेनिफिट ऑफ डाउट, आप ठीक ही होंगे। नहीं होंगे तो इस प्रोग्राम को सुनकर आप और आपके पौधे, गमले, क्यारी, बागवानी सब ठीक ठाक हो जाएंगे, होना ही होगा। देखिए, ये दुनिया दो चीजों से बनी है। देखिए, एक शब्द है फूल, कुछ लोग इसे फूल कहते हैं, कुछ लोग इसे फूल कहते हैं। अब जो पुष्प है, फ्लावर यानी पुष्प को फूल कहते हैं, नुक्ता नहीं है, और जो वो कम थोड़ा समझ रखता है उसे फूल कहते हैं। आज कार्यक्रम करने आते समय मेरे मन में, मस्तिष्क में, जहन में एक प्रश्न उठा, ये फूल फूल का क्या मामला है, ये फूल फूल क्या है? तब समझ में आया, फूल को देखिए यानी फ्लावर को देखिए, गौर से देखिए, फूल खिलता है, एक पूरे मौसम तक अपना रंग, अपनी ब्यूटी, अपनी खुशियां, अपनी उमंग सब तक पहुंचाता है, पूरे रंग के साथ, पूरी खुशबू के साथ और पूरी ब्यूटी के साथ। और कुछ ही दिनों बाद या तो तोड़ लिया जाता है, या सूख जाता है, या खत्म हो जाता है। तो ये जो फूल है यानी फ्लावर है, ये हमें बताते हैं कि कुछ हमें फूल होना पड़ेगा जिंदगी में, यानी जो हम कर रहे हैं इसको पूरी तरह एंजॉय करना होगा। और अगर इसी एंजॉयमेंट में कोई हमें फूल कह दे तो वो कबूल है, कबूल है हुजूर। अब ये फूल फूल फूल फूल करना छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। इतनी सारी भूमिका हो गई, अब हम भूमि का क्या करें, अर्थात भूमि में क्या उगाएं? ये प्रश्न हमें बार बार कर रहा है हमारे मन मस्तिष्क पे वार वार। मतलब हमने आज सोचा कि अपने एक्सपर्ट को स्टूडियो में बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई अब सर्दियां बहुत दूर नहीं है, सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फूलों की खेती क्या हम कर सकते हैं, अपने गमलों में, अपनी क्यारी में, अपनी छत पर, अपने किचन गार्डन में? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, हमें भी नहीं पता क्या कहा, क्योंकि अभी वो इस गाने के उस ओर आएंगे तब बताएंगे ना। अभी तो आपको गाना सुनना है, गाना चलाइए प्लीज।

0: रजनी गंधा फूल तू फूल फूल। अरे फिर उसी मसले पे ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि हमारा उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन की क्यारी में फूलों को महकाना, पौधों को खिलाना, पौधों को उगाना, खुशियां आपकी जिंदगी में लेके आना। इसी क्रम में ये प्रोग्राम फार्म टू सिटी आता है और अपुन का नाम ओपी राठौर है और अपुन के साथ आज जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली। और जिस विषय पर हम उनसे बात करेंगे वो है अपनी क्यारी में, अपने बैल्कनी में, अपने टेरेस गार्डन में, अपनी क्यारी में हम फूलों की खेती कैसे करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे एक्स वाई जेड यानी सब कुछ जानने वाले एक्सपर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋतु, नमस्कार। पहले बताइए, सितंबर तो चल ही रहा है, लगभग मध्य की तरफ है हम, तो आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सर्दियां समझ लीजिए आ ही रही हैं, फूलों का बड़ा अच्छा मौसम रहता है, तो आप क्या सिफारिश करेंगे कि लोग हमारे जो सुनने वाले हैं अपने गमलों में अपने टेरेस में ये उगाएं, फूल लगाएं?
1: आने वाले 3 महीने में शरद ऋतु के जो फूल हैं उन सबको हम लगा सकते हैं। उसमें हम गेंदा लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हम जितने भी हमारे मौसमी फूल हैं जैसे कि पेंसी है, पिटूनिया है और एंटीराइनम है, वायला है, तो इस तरह के फूल जो हैं उनको उगाया जा सकता है, जो कि हम बीज उत्पादन के लिए भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उनको अपने बालकनी गार्डन या छत पे लगाने के लिए और घरों में लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: अच्छा, किचन गार्डनिंग के जो शौकीन हैं वो फूलों के भी बड़े शौकीन होते हैं। कौन कौन से फूल हैं जिन्हें आसानी से हम अपने गमलों में उगा सकते हैं?
1: शहरों में जगह बहुत ही कमी होती है, तो शहरों में अगर हमारे पास बालकनी है तो हम एक बालकनी में कुछ पौधे लगा सकते हैं, चाहे वो हम गमलों में लगाएं, चाहे हम उसे वर्टिकल गार्डन के जैसे लगा सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास छत अवेलेबल है तो हम छत पे भी पौधे लगा सकते हैं। तो गमलों में लगाने वाले पौधे जो हैं वो हम फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं और हम सजावटी पत्तों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें सजावटी पत्ते वाले पौधे लगाने की, क्योंकि वो वर्ष भर चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, और उसके अलावा हमारे पास सकुलेंट्स हैं जैसे जेड प्लांट है, कोलियस है, पोर्चुलाका है, तो इस तरह की चीजें जो है हम लगा सकते हैं।
0: यानी अपने घर में यानी अपने टेरेस गार्डन पे किन फूलों को चुने गेंदा और गुलाब के अलावा?
1: जी, बालकनी और टेरेस में लगाने के लिए बहुत सारे सुंदर पौधे हैं हमारे पास। अगर हम बात करें अभी आने वाले 3 महीनों की या शरद ऋतु की, तो इस टाइम पे जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे, जैसे कि स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम जिसे कहते हैं, डॉग फ्लावर्स लगा सकते हैं आप, ऑस्टियोस्पर्मम लगा सकते हैं, उसमें हम गैलाडिया लगा सकते हैं, उसमें हम कॉस्मोस लगा सकते हैं, उसमें हम पेंसी लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए फ्लावरिंग में रहेंगे, दिसंबर से लेकर मार्च तक वो फ्लावरिंग में आ जाएंगे, तो उन पौधों का बहुत अच्छे से चयन किया जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरे पॉटेड प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे कि कैलेंचो है और गुलदाउदी है, तो इस तरह के पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
0: क्या नॉर्मल पौधों से ज्यादा देखभाल चाहिए होती है इन फूलों को?
1: जी, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जो पौधा ला रहे हैं नर्सरी से वो पौधा अच्छी किस्म का होना चाहिए पहली तो बात, और अगर वो अच्छी किस्म का है तो हम उसको घर लाके ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम जब उसको दूसरे गमले में लगाते हैं पहले तो जो मिश्रण बनाते हैं मिट्टी का वो एक अच्छा भुरभुरा मिश्रण होना चाहिए, जिसमें कि पत्थर कंकड़ नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ उसमें जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है इस तरह की कोई चीज हम उसमें मिला लें या बोन मील मिला लें ताकि हमारा पौधा अच्छा चले। दूसरी बात, पौधे को पानी जो देना है वो ना तो बहुत अधिक दे ना ही बहुत कम दे, तो पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जो है हमारे पौधे पानी की वजह से मर जाते हैं, कभी हम ज्यादा पानी डाल देते हैं और कभी कम पानी डाल देते हैं। तो पानी का प्रबंधन और जो हम खाद है उसका प्रबंधन, और साथ ही साथ कभी अगर आपको लगे कि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं तो उसमें आप देख लें कि किसी कीट का या किसी व्याधि का प्रकोप तो नहीं है, और जो फूलों वाले पौधे हैं उनको धूप में रखें ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग में आ जाएं, और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको छाया में रखने की आवश्यकता होती है, तो पत्ते वाले जो पौधे हैं जिसमें हरे रंग के पत्ते होते हैं मोस्टली, तो उनको अगर आप छाया वाली जगह पे रखेंगे तो वो आपके अच्छे चलेंगे।
0: क्या सावधानियां रखनी चाहिए फूलों के शौकीनों को?
1: जहाँ पर छाया रहती है और धूप नहीं आती, तो वहां पर जो फूलों के पौधे हैं वो बहुत ही कम सर्वाइव करते हैं, उनके सर्वाइवर के चांसेस बहुत अच्छे नहीं होते। पर दो स्पीशीज हैं, साल्विया और सिनरेरिया, अगर इन दो स्पीशीज को हम लगाएं छाया वाली जगह पे तो ये अच्छा फूल देते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ पत्ते वाले पौधे या जिनमें बहुत ज्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है उसी को आप लगाएं, या फिर एक दक्षिण दिशा की कोई अगर खिड़की हो या बालकनी हो उसमें अगर आप पौधे लगाएंगे तो थोड़ी बहुत धूप वहां पर मिल जा सकती है। तो इस तरह के पौधों का चयन आप कीजिए, बस पानी का जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखिए।
0: जी, तो फूलों की बड़ी डिमांड होती है इस मौसम में, क्या वो इसको एक प्रोफेशन के रूप में, क्या एक व्यवसायिक रूप से भी इसकी खेती कर सकते हैं?
1: व्यावसायिक रूप से मैं फूलों की खेती तो नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि आप नर्सरी का उत्पादन कीजिए, क्योंकि आपको शहर की जरूरतों को ध्यान में रख के आपको कुछ पौधा उगाना है, तो शहरों में जो छोटे छोटे पौध होती है फूलों की उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो उनको उगाएं, या फिर आप छोटे छोटे गमले में पौधे उगाएं क्योंकि गमले वाले पौधों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और ये सब चीजें जो है आप सॉइल लेस मीडिया, मतलब मृदा रहित जो मीडिया होता है, आर्टिफिशियल मीडिया होता है, उसमें आप उगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी छत पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा, जिससे कि आपकी छत भी सेफ रहेगी और आपका जो टेम्परेचर है बिल्डिंग का वो भी कम रहेगा। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतु। दोस्तों, अगर आपको कुछ जानना है फूलों की खेती के बारे में तो आप ईमेल करें। ईमेल है farm2citydelhi@gmail.com, जो बीच में टू है ना, ये नंबर दो है, इसलिए हम दो बार कह रहे हैं आपको, farm2citydelhi@gmail.com। फार्म टू सिटी में हम सिर्फ आपको जानकारियां ही नहीं देते, सक्सेसफुल लोगों से ही नहीं मिलाते, हम आपके मूड का भी ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो कुछ चुने हुए प्यारे से सॉन्ग्स भी आपको सुनाते हैं।

0: अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते समय हमें याद आ रहा है, याद आ रहा है कि दिल्ली सजी हुई है खूबसूरती के साथ, खास तौर पे ब्रिक्स के सम्मेलन की वजह से। एनडीएमसी इलाके में दिल्ली का जो कनॉट प्लेस एरिया या उसके आसपास के जितने भी एनडीएमसी एरिया हैं, उनमें कुछ खास ही सज धज हुई है। और एनडीएमसी ने इसके लिए कि लोग गीले और सूखे कूड़े का सही निपटान करें, एक विशेष योजना चलाई है आप सभी सुनने वालों के लिए, खास तौर पे उनके लिए जो दिल्ली में रहते हैं या एनडीएमसी एरिया में रहते हैं। है क्या प्लान? प्लान ये है कि 1 सितंबर से 29 सितंबर तक एनडीएमसी एरिया में गीला कूड़ा लाओ, कंपोस्ट खाद ले जाओ योजना चल रही है। यानी आप गीला कूड़ा लाएंगे और एक अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट खाद बदले में आप लेके जा सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका समय रहेगा सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में। 29 सितंबर 29 सितंबर इस महीने तक ही ये चलेगी योजना। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन ही आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, आप प्लास्टिक लाओ कंपोस्ट ले जाओ भी कर सकते हैं, यानी अपना सॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट लेके जा सकते हैं। इनके लिए भी वही तारीख है, वही समय है, बस लोकेशन आप अभी समझ लीजिए, RRR सेंटर नियर मिनी मार्केट काकानगर और JE सिविल इंक्वायरी काकानगर दिल्ली। ठीक है जी, अब आपको मिलेगी बहुत सारी कंपोस्ट खाद, जितना आप लेके जाएंगे गीला कूड़ा और प्लास्टिक। फायदा उठाइए, अपने पौधों को अच्छी कंपोस्ट खाद से हरा भरा बनाइए। ओके जी, फार्म टू सिटी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ओपी राठौर के साथ, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो चलिए अब मिलते हैं आज के खास मेहमान से। तो आज की हमारी मेहमान हैं अंजू जी, जिन्होंने पत्रकारिता के साथ गार्डनिंग में कदम रखा, और गार्डनिंग करते समय उनकी दोस्ती हुई कुछ ऐसे लोगों से जो खुद भी गार्डनिंग करते हैं, उनका समुदाय बना, बात इतनी जची कि उन्होंने इस पर एक YouTube चैनल भी बना दिया। तो आइए इन्हीं अंजू जी से मिलते हैं और जानते हैं उनकी इसी यात्रा के बारे में। नमस्कार अंजू जी, पहले तो अपने बारे में ही बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं?
1: नमस्कार सर, मैं दिल्ली शाहदरा से हूँ, और बेसिकली मेरा जो पेशा रहा है वो जर्नलिज्म रहा है, पत्रकारिता। मेनस्ट्रीम हिंदी मीडिया में मैं रही हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी रुचि थोड़ी सी गार्डनिंग के तरफ है। तो एक मेरा एक चैनल है गार्डनिंग का, जिसमें मैं तमाम ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो गार्डनिंग करते हैं, और मैं खुद भी गार्डनिंग करती हूँ।
0: अच्छा, तो फिर ये गार्डनिंग का शौक आपको कैसे लगा?
1: सर, असल में तो मुझे खेती का शौक आया था, लेकिन शहरी क्षेत्र में रहते हुए खेती शायद मेरे लिए संभव नहीं थी। मेरे छत पर काफी अच्छी जगह थी जहाँ कुछ एक प्लांट्स रखे थे, तो मेरी रुचि उसमें आई और धीरे धीरे कुछ प्लांट्स की संख्या बढ़ी। लेकिन मैंने महसूस किया कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो गार्डनिंग कर रही हूँ। मैंने देखा कि घरों के अंदर छोटी सी चाहे जगह है या बालकनी है, लोगों ने तमाम ऐसी गार्डनिंग की दुनिया बसा रखी है, और वो दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और बस उसी की तलाश करते करते मैंने एक छोटी सी दुनिया अपनी बना ली है, जो सिर्फ बागवानी से भरी हुई है, खेती से भरी हुई है।
0: उसके बाद आपने लोगों तक आउटरीच किया, मतलब लोगों से मिली, कैसे पता चला समुदाय खड़ा हो गया इतने सारे गार्डनर्स का, किचन गार्डनर्स का?
1: सर, जैसा कि मैंने बताया, पत्रकारिता मेरा पेशा रहा है, लोगों तक पहुंच थोड़ी सी मैं तेजी से बना लेती हूँ, तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी। मैंने जो महसूस किया था कोविड के समय पर, बहुत लोग जो घरों के अंदर थे जिन्होंने कुकिंग के चैनल बनाए, इन द सेम वे उन्होंने गार्डनिंग में रुचि बहुत अच्छे से दिखाई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने सोशल मीडिया पर अपने गार्डन के फोटोज, गार्डन की चीजों को डालना शुरू किया। मैं वहां से उनको पकड़ना शुरू किया, मैंने सोशल मीडिया का अपना हथियार बनाया, वहां मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और धीरे धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, अपने घरों में मुझे आने दिया, मैं उन तक पहुंची, फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया, और वो गार्डनिंग के जो भी जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं मैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ, मिलती हूँ, उनसे गार्डनिंग सीखती हूँ।
0: तो आप उनकी बगिया, उनके बगीचे, उनकी बालकनी को शूट करके अपने YouTube चैनल पे डालती हैं?
1: सर, मैंने चैनल शुरू किया था तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अंजू, इस समय जोक सपाट वाली वीडियो चलती हैं, डांस की वीडियो चलती हैं, तुम मीडिया में रही हो, ये गार्डनिंग की कहाँ से वीडियो चलेंगी सर? लेकिन अमेजिंग, शॉकिंग, मतलब जो रिजल्ट था वो बहुत ही कम समय में निकल कर आया। विद इन 2 मंथ हजारों की संख्या में सब्सक्राइबर होते गए और मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाखों में आ गए। गार्डनिंग एक बहुत बड़ी दुनिया बन गई, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मिलियंस में वीडियोस आती हैं, लोग गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, तो ये सच में एक अलग विधायक बन गई है जहाँ लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
0: तो आपने क्या ट्रेंड देखा, कैसे लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाउसवाइव्स, रिटायर्ड लोग या प्रोफेशनल्स, कौन लोग हैं?
1: सर सबसे पहला जो मैं कहूंगी कि वो हाउसवाइफ हैं, 90% जो गार्डनिंग के लिए वो महिलाएं हैं। दूसरा रिटायर्ड वाली मैं अगर बात कहूं तो मैं हाल ही में कुछ ऐसे लोगों से मिली हूं जो शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे कि जब वो रिटायर होंगे तो वो गार्डनिंग करेंगे और उन्होंने इतना खूबसूरत गार्डन बनाया है। तो मैं ये कहूंगी कि एक एज क्रॉस होने के बाद वाला जो पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, वो भी इसमें बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं।
0: अच्छा, इस यात्रा में सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव व्यक्ति कौन लगे कि भाई वाह क्या काम किया इन्होंने?
1: सर जितनी भी गार्डनिंग की जो शख्सियत हैं बहुत ही अनोखी हैं, बहुत ही लविंग जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनका व्यवहार एक अलग ही तरीके का होता है क्योंकि पेड़ पौधों से जुड़े होते हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, मैं नाम लेना चाहूंगी, मेरठ की हैं वो कर्णा गोयल जी, जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, जिनकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, जिन्होंने अपनी छत पर कचरे के जरिए एक करेले के पौधे को उगता हुआ देखा, उसका करेला लगता हुआ देखा, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो हर दिन दुआ करती थी कि अगला दिन उसका मतलब वो सूरज ना देखे, उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो इतना पेन सहन कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने एक पेड़ को उगते हुए देखा, फल लगते हुए देखा, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई और आप विश्वास नहीं करेंगे वो 70 इयर्स की हैं और एक छोटे से बच्चे की तरह उतनी एनर्जी के साथ अपने गार्डन में काम करती हैं। उन्होंने तमाम सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए हैं और उनकी एनर्जी मुझे अभी भी शॉक्ड करती है। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने एक बीमारी को मात दे दी गार्डनिंग के जरिए, तो मैं इस शख्सियत को कभी नहीं भूलना चाहती क्योंकि वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर चुकी हैं।
0: वैसे काम तो आपने भी बहुत अच्छा किया है, थैंक यू सो मच अंजू जी अपना समय हमें देने के लिए, और अपनी इस यात्रा को ऐसे चलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।

0: farm2citydelhi@gmail.com पे हमें आपके कई पत्र प्राप्त हुए हैं, यानी ईमेल पत्र, और साथ में एक ऑडियो संदेश भी प्राप्त हुआ है जहां लोग अपने टिप्स भी भेज रहे हैं। ऐसी ही एक टिप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
1: क्या आप जानते हैं कि पौधे कचरा नहीं खाते, इसलिए केले के छिलकों को सीधे मिट्टी पर फेंकना बंद करें, क्योंकि वे इस तरह काम नहीं करते। सही तरीका है कि उन्हें प्रोसेस किया जाए ताकि वे असल में अपना पोटेशियम छोड़ सकें। सबसे पहले अपने सभी केले के छिलकों को बहुत छोटे टुकड़ों में काट लें। वे जितने बारीक होंगे उतना अच्छा होगा। उन्हें एक साफ कंटेनर में रखें और पानी डालें। हर 100 ग्राम छिलकों के लिए लगभग आधा लीटर, और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिक्सचर में 2 नींबू निचोड़ें। साइट्रिक एसिड छिलके के अंदर के पोटेशियम को निकालने में मदद करता है। याद रखें, केले में पोटेशियम भरपूर होता है क्योंकि फसल में इसका बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये एक कीमती घरेलू सोर्स। मिक्सचर को कम से कम 48 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको फर्मेंटेशन दिखेगा। उस फर्मेंटेशन में न सिर्फ रिलीज हुआ पोटेशियम होता है बल्कि फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इस कंसंट्रेट को 1 गैलन पानी में घोले, इसे अच्छी तरह छान लें और अपने पौधों पर लगाएं। आप इसे पत्तियों के नीचे डाल सकते हैं या पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पत्तियों की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही आपकी मिट्टी को अच्छे माइक्रो लाइफ से फिर से भर सकते हैं। इस तरह आप असल में केले के छिलकों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: चलिए जनाब, बहुत खेती बाड़ी हो गई, अब चलना पड़ेगा। मुझे 2-4 खेत खरीदने हैं, मतलब ख्याली पुलाव बनाने हैं। उसे कुछ तो करना है। आप भी कुछ करिए, कुछ करिए। अरे बागवानी करिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए, यानी घर में ही उगाइए अपनी ताजा ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और फूल। यही तो है हमारा मिशन फार्म टू सिटी का। लेकिन आपके साथ मिलने अगले संडे 5:30 बजे FM रेनबो पर फिर सजाएंगे अपनी बातों की बगिया। मतलब है कि अब अपुन निकलते हैं। OP राठौर की बाय बाय। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। यमन में ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। इस बीच यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने लाल सागर तट पर हौसियों के हालिया कब्जे को चिंताजनक बताते हुए कहा इससे ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के संघर्ष में नया मोर्चा खुल गया है। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, संडे की शाम है और संडे की शाम को अपना एक अलग अंदाज दिखाई देता है। पूरा हफ्ता भागते दौड़ते निकल जाता है और फिर एक शाम ऐसी आती है जब लगता है कि भाई थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा अपने लिए भी जी लें। लेकिन एक बात है, जिंदगी में हम न जाने कितनी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और कभी लगता है कि बस थोड़ा सा और पैसा मिल जाए, कभी लगता है कि थोड़ा और वक्त मिल जाए और कभी लगता है किसी अपने के साथ थोड़ा और टाइम मिल जाए। और शायद हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं ना, अक्सर वही सबसे पहले हमें कम पड़ने लगती हैं। वक्त कम पड़ जाता है, छुट्टियां कम पड़ जाती हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं और कभी कभी लगता है कि भाई दिल में जितना प्यार है ना, उसे जताने के लिए भी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आज शाम की बात कुछ अलग है और इसी बारे में आज शाम सोचते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद बहुत आसान हो, लेकिन आपका जवाब आपके दिल के बारे में बहुत कुछ कह सकता है। सोचिएगा ज़रूर। लेकिन सवाल क्या है पहले गाने के बाद, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। और मैं हूँ प्रणव, आप जुड़े रहिए मैसेज मसाला मिक्स के साथ।

तो दोस्तों, वक्त है उस सवाल का जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जरा दिल से सोचिएगा। मान लीजिए जिंदगी आपको एक ऐसा मौका दे कि आपको जिंदगी में किसी एक चीज की लाइफ टाइम सप्लाई मिल जाए, यानी वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो अब आप बताइए कि आप किस चीज की लाइफ टाइम सप्लाई लेना चाहोगे? पैसा, छुट्टियां, चाय, या फिर खुशियां, या फिर प्यार, या फिर वक्त, या फिर कुछ ऐसा जिसकी कमी सिर्फ आपको पता है? क्योंकि आज शायद किसी का जवाब हमें हंसाएगा और किसी का जवाब हमें चौंकाएगा, और हो सकता है किसी का जवाब हमें कुछ पल के लिए चुप भी कर दे। तो बताइए, आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए? आपके जवाब के इंतजार में मैं हूं प्रणव, मैसेज मसाला मिक्स में। आप सुनते रहिए FM रेनबो 102.6।

0: वैसे जिंदगी में ना अगर कुछ चीजों की सप्लाई कभी खत्म नहीं हो तो मुझे भी आज आपके जिंदगी में किस चीज की सप्लाई खत्म नहीं होनी चाहिए इसके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि हो सकता है कि भाई जब हम विश मैसेज के जरिए भेजते हैं ना, मैसेज मसाला मिक्स में, तो यूनिवर्स हमारी विश सुन लेता है। तो हो सकता है कि आज आप में से किसी ना किसी की विश जरूर पूरी होंगी कि जिस चीज की अनलिमिटेड सप्लाई आपको चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर पढ़ेंगे आपके इंटरेस्टिंग मैसेजेस। मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूं प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under

0: India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका, और मैं हूं प्रणव। रेनबो 102.6 पर आपके साथ शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां हम बात कर रहे हैं कुछ खास, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ स्पेशल है। और नए मेहमानों का स्वागत हमेशा रहना चाहिए आपकी ज़िंदगी में और इस शो में भी। अगर किसी नए मेहमान ने अभी हमें, नए लिसनर ने अभी ज्वाइन किया है, तो 9868107070 नंबर व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और मैसेज के जरिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ खास है कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई होगी तो वो कौन सी चीज़ होगी। भाई वीरू बख्शी का हमारे पास मैसेज आया। हेलो जी नमस्कार, जिंदगी में मुस्कुराहट और खुशियाँ कम नहीं होनी चाहिए, बस यही तमन्ना है। वीरू बख्शी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जिंदगी में मुस्कुराहट बरकरार है ना, तो आप हंसते रहेंगे, कोई गम कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आई थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी जिंदगी में हमारे बनी रहनी चाहिए। अगला मैसेज है स्वास्थ्य कभी खराब ना हो, और अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो पैसे घर दौलत कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहे तो सब कुछ आ जाता है। राकेश वोरा बुराड़ी दिल्ली से इनका मैसेज है। बिल्कुल सही कहा आपने, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। ये हमेशा से कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर आप जान है तो जहान है, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपके अपनों के लिए भी समय रहेगा आपके पास, अपनी जिंदगी में वो सारे पल जिनको आप जी लेना चाहते हैं उन सब के लिए समय रहेगा आपके पास। इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई अगर सेहत की आपकी ज़िंदगी में है तब भी आप परेशान कभी नहीं रह सकते। अगला मैसेज है, गुड इवनिंग प्रणव सर, लिखते हैं कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि सर अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कभी ख़त्म ना हो, तो सबसे पहले लव चाहिए एंड सेकंड पर मनी जो इम्पॉर्टेंट होती है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें तो बस। और आई एम अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से मैसेज आया, बड़ा ही प्यारा सा मैसेज है भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की हुई हैं, सबसे पहले प्यार और फिर आपको चाहिए पैसा। देखिए हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, पैसे के बिना सर्वाइवल तो नहीं है, लेकिन हाँ बस डिपेंड करता है कितना पैसा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की, हमारी इच्छाओं की कभी कोई सीमा नहीं होती। हरप्रीत सिंह मंडेर आनंदपुर साहिब पंजाब से लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, गुड हेल्थ ओनली, वेल्थ खुद कमा लूंगा। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, और वो यकीन आपके इस मैसेज में साफ झलक रहा है, क्योंकि अगर सेहत आपके साथ है तो पैसे तो आप कमा ही लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने।

भाई गाने कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मैसेज मसाला मिक्स में चुन चुन के लेकर आए हूँ आपके लिए, लेकिन आज का टॉपिक भी कुछ खास चुन कर लेकर आए हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके दिल की बात जानना चाहता था। और आपके दिल में क्या है, किस चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई चाहते हैं आप, यूनिवर्स में ज़रा अपना मैसेज भेज दीजिए। मैं जब बोलूँगा ना तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है जोया मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से लिखती हैं, प्लान्स एंड ड्रीम्स। अच्छा, इनको प्लान्स एंड ड्रीम्स की अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए। देखिए, ड्रीम्स आपको देखने होंगे, प्लान्स भी आपको बनाने होंगे। खुशियों की सप्लाई की गारंटी तभी मिलेगी जब आप इन्हें चेज करेंगे, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे लगे रहिए, सपनों के पीछे लगे रहिए, और डेफिनेटली आपको वही सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सवाल बेहद दिलचस्प है और हम तो यहाँ चाहेंगे कि सभी की आपस में प्यार मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन प्यार मोहब्बत और ईश्वर में विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। नाइस प्रेजेंटेशन, ओ थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमारे पास आया है किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। बहुत ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने लिखा है कि भाई ज़िंदगी में क्या बनाना चाहिए, प्यार मोहब्बत आपस में, आपके मिलने वालों से, आपके चाहने वालों से, है ना, सबसे प्यार मोहब्बत बनी रहे। तो बस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सबका यही होना चाहिए, किसी

है फ्री में वर्ल्ड ट्रेवल, इससे पूरी दुनिया के किसी भी कोने में घूमने को मिल जाएगा। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से मैसेज आया। भाई देखिए, फ्री में वर्ल्ड ट्रेवल के लिए जो अनलिमिटेड सप्लाई आपको चाहिए होगी ना, वो चाहिए होगी बहुत सारे पैसे की, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मेहनत कीजिए और जिंदगी में वो सब कुछ आप हासिल कीजिए जो आप चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास, पैसा और प्यार दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए प्रणव जी, बिल्कुल। और ये मैसेज हमारे पास आया है विजेंद्र गहलोत का, वीरभद्र से, अकोला वीरभद्र से। गाने बहुत खूबसूरत हैं। ओ थैंक यू सो मच, आप ही के लिए तो गाने आए हैं चुनकर, और आपकी राय भी बिल्कुल दर्ज कर ली गई है अनलिमिटेड सप्लाई के लिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रा फटाफट, क्योंकि मैसेजेस भी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, अभी वापस आकर ढेर सारे मैसेज पढ़ेंगे। फिलहाल ये गाना।

0: ब्रेक पर जाने से पहले एक बार टॉपिक में फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी एक चीज की लाइफ टाइम सप्लाई मिल जाए, यानी वो चीज कभी खत्म ना हो, तो आप बताइए कि आप किस चीज की लाइफ टाइम सप्लाई लेना चाहोगे। मैं हूं प्रणव, आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में रेनबो 102.6 पर। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
9: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
10: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
11: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

हाँ जी, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपका प्यारा शो लेकर, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर। और आज का टॉपिक कुछ खास है, जिस पर अगला मैसेज है हमारे पास। लिखते हैं प्रणव को प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज हो। जिंदगी में कभी चैन सुकून शांति खत्म नहीं होनी चाहिए। गन्नौर से आदल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। शुक्रिया, धन्यवाद आपका मैसेज भेजने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए भाई, चैन सुकून शांति खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई इनको चाहिए। तो सारे लिसनर्स जरा मिलके एक बार आदिल के लिए, है ना, जोरदार

दुआएं करेंगे कि भाई इनकी जिंदगी में चैन सुकून कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगला मैसेज है गुड इवनिंग, और लिखते हैं कि भाई ऑन योर क्वेश्चन आई विश टू से आई नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मनी एंड मेडिसिन फ्रॉम संजीव कुमार, अमन कुमार और वाल्मीकि, एंड लिखते हैं खुखानी से, पुलिस स्टेशन तहसील, पूरा एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से मैसेज हमारे पास आया। भाई देखिए मैं तो इतना कहूंगा आपसे संजीव जी कि भाई मैं आपको दवाइयों की कभी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपको दवाइयों की अनलिमिटेड सप्लाई क्यों चाहिए भाई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम विश करेंगे कि आपकी जिंदगी में जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, खुशियां हैं, वो सब आती रहें, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी भी दवाइयों की जरूरत ना पड़े, बस ऐसी दुआ है हमारी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, गुड इवनिंग, 70 और 80 के दशक वाला वही संयुक्त परिवार वाला जीवन सदा के लिए चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान में रिश्ते सिमटते जा रहे हैं, माँ बाप बेटा बेटी बहू और दामाद ही रिश्ते, ये सब या फिर रिश्ते पैसे वाले रह गए हैं, काफी चिंता का विषय है भारतीय संस्कृति के लिए। देहरादून से आलोक पंवर और मिनी का ये मैसेज आया है। देखिए चिंता तो आपने सही जाहिर की है, क्योंकि जो हमारे हाथ में एक छोटी सी डिवाइस होती है ना जिसे हम मोबाइल कहते हैं, और इंटरनेट के जमाने में हम शायद कहीं अपनापन उसी में ढूंढने लगे हैं, और इसमें हमारी सिर्फ खुद की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब पूरी दुनिया इन्हीं चीज़ों में लगी हुई है और आपस में ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन थोड़ा लूज होता जा रहा है, थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो ऐसे ज़माने में ये एक चिंता का विषय तो है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए समय निकालें, अपने अपनों के साथ बैठें, उनसे अपने दिल की बातें कहें, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखते हैं प्रणव, लाइफ टाइम डिलीवरी मांगूंगा जब तक मैं जीऊं, जिससे सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और बुढ़ापे में व्यस्त रहते सुकून से जीऊंगा। अनिल शर्मा सरिता विहार से। भाई आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल आप अपनी वृद्धावस्था में उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहें और जो आपको खुशी देती हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ। फिलहाल ये गाना, वापस आते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें मैसेज के थ्रू।

एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं प्रणव, मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ। अगला मैसेज गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले से बेड़ावन गांव से लिखते हैं कि भाई मेरे मम्मी पापा मेरी प्राथमिकता हैं और वो भगवान जी के पास चले गए हैं, काश होते मेरे साथ हमेशा रहते। देखिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि वो कहीं नहीं जाते, हमेशा हमारे साथ रहता है उनका आशीर्वाद, और आप अपनी सफलताओं में, आप अपनी खुशियों में उनकी झलक देख सकते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप वो सब कुछ हासिल करते हैं जो आप हमेशा चाहते थे, और उनका आशीर्वाद हमेशा, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई बंद कभी नहीं होगी। अगला मैसेज हमारे पास है, पुनीत रावत लिखते हैं कि अगर खुशियां ही चलती रहेंगी तो गम का पता कैसे चलेगा। भाई बिल्कुल ठीक बात कही आपने, लेकिन गम अनलिमिटेड सप्लाई अगर आपको किसी चीज़ की चाहिए होगी तो क्या आप गम की भी सप्लाई चाहेंगे? नहीं ना, आप तो चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां बरकरार रहें, क्योंकि गम का स्वाद तो हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर चख लिया है। तो अब अगर अनलिमिटेड सप्लाई आपको किसी चीज़ की चाहिए तो वो खुशियां होनी चाहिए ना। अगला मैसेज है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं कि भाई प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और तन का सुख और मन की शांति कि अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम में से ज़्यादातर इस बात पर अग्री करते हैं कि भाई तन का सुख, मन की शांति, बिल्कुल, कि तन का सुख मतलब आप सेहतमंद रहेंगे हमेशा, और मन की शांति चाहते हैं जो आजकल बड़े से बड़े लकी लोगों को भी नसीब नहीं होती है। मन की शांति के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमते, लेकिन नसीब नहीं होती है ना। तो अगर अनलिमिटेड सप्लाई आपको मन की चैन की, मन की शांति की मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है, हेलो जी, हेल्थ एंड मनी, अदर थिंग्स कम्स ऑटोमेटिकली, सनी कपूर जर्मनी से मैसेज आया है। भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर हम सभी ये मानते हैं, लेकिन कोशिश कितने लोग करते हैं, बात यह है स्वस्थ रहने की ना। अनलिमिटेड सप्लाई तो सबको चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए सप्लाई? जो अपनी मदद खुद करता है उसी की मदद ऊपर वाला करता है ना। तो अपनी मदद जारी रखिए, क्योंकि तभी आपकी मदद हो सकता है ना, तभी आपको बाकी की मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको हासिल होगा जो आप चाहते हैं। सुखलाल बाला कूच बिहार वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि हर सुबह एक नया पैगाम लाती है, जिंदगी मुस्कुराने का एक मौका दे जाती है, और भुला दो कल की उदासियों को यारो, आज की धूप एक नई उम्मीद जगाती है। भाई क्या बात है, शायराना अंदाज में आपने काफी कुछ मांग लिया है, लेकिन जरा बताइए कि आपको अपनी जिंदगी में किस चीज की अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है, कैसे हैं आप, रोज मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आ रहे हैं, और प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ है। ओके, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए, लेकिन आप जरा ये बताइए कि आप जिंदगी में किस चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई चाहते हैं। अगर आप रेनबो के फैन हैं तो डेफिनेटली रेनबो के मनोरंजक प्रोग्राम्स की, शोज की अनलिमिटेड सप्लाई आप तक पहुँचती रहती है, तो वो विश तो आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और फिलहाल ये अगला सॉन्ग।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

मैसेज मसाला मिक्स में आप है मेरे यानी प्रणव के साथ रेनबो 102.6 पर। अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, राजेश भल्ला कंकर खेड़ा मेरठ से लिखते हैं। शुभ संध्या प्रणव जी, हिम्मत और रोजगार लगातार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हिम्मत आपके पास रहेगी, रोजगार रहेगा, रोजगार से कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, पैसा आप कमाएंगे और वो सारे सपने अपने अपनों के और खुद के वो पूरे करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और आपकी जो अनलिमिटेड सप्लाई है वो बिल्कुल जारी रहेगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, किरण फ्रॉम हरिद्वार से लिखती हैं कि अनलिमिटेड सप्लाई मेरी लाइफ में खुशियों की, अपनों की और हेल्दी लाइफ चाहिए, और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने भाई, देखिए हम में से ज़्यादातर की इच्छाएं यही हैं कि हम सब खुश रहें, हेल्दी रहें, है ना, और हमारे पास खुशियों की सप्लाई अनलिमिटेड रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया है, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिखती हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है, मैं सोचती हूँ कि हमारे विचार हमेशा अच्छे आते रहें दूसरे से, दूसरे के लिए, और अच्छा सोचें, हमेशा अपनों का प्यार मिलता रहे कंटिन्यूस, और ये सप्लाई जारी रहनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बात कही है आपने सरोज जी। भाई अगर हम सब अपने लिए तो सोचते हैं कि हमारे लिए किन चीज़ों की अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में दूसरों के लिए कैसे विचार आते हैं, कैसे ख्यालात हैं हमारे दूसरों के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ सच्चा प्यार किसी का भी है ना, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग ढूंढते रहते हैं, और आपके चाहने वाले, आपके वेल विशर्स की संख्या कम होती जा रही है, और सब शायद अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे में अगर हमारे खुद के दिल में, खुद के दिमाग में दूसरों के लिए प्यार भरे विचार आएं, अच्छी बातें आएं, उन शुभकामनाएं आएं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो फिलहाल ये सॉन्ग, उसके बाद वापस आते हैं और फिर पढ़ेंगे मैसेजेस।

किसान के खेतों में अनलिमिटेड अन्न की सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य मध्य प्रदेश से बड़े प्यारे मैसेज आए हैं। और अगला मैसेज है, हेलो सर, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू। ठीक है, आज के टॉपिक पर ये कहना चाहते हैं, वुड लाइक टू से दैट देयर शुड बी अनलिमिटेड हैप्पीनेस एवरीवेयर, बिकॉज व्हेन पीपल विल बी हैप्पी विद इन यू नो देमसेल्व्स, दे कैन मेक एवरीवन हैप्पी, एंड व्हेन देयर विल बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड द वर्ल्ड विल बी यू नो वर्ल्ड विल बी ब्यूटिफुल। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने भी लिखी है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। अगला मैसेज हमारे पास मनीषा का है, मगर लातूर महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मुझे हार्ड वर्क करने के लिए अच्छी सेहत की सप्लाई चाहिए, और मेरी दुआ है कि भाई आप सभी की अच्छी सेहत की सप्लाई, खुशियों की सप्लाई लगातार जारी रहना चाहिए। ऐसी दुआओं के साथ फिलहाल आपसे लेता हूँ विदा, और ऐसे ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम के साथ फिर से वापस आएंगे। आप सुनते रहिए रेनबो 102.6।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे OTT पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को हराया।

महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से जारी। और भारत तथा अफगानिस्तान के बीच तीन 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

शिवानी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 8:03:25। मैं हूं प्रणव, आपके साथ शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: बैजा बैजा बैजा बैजा हो गई रे ला ला ला ला ला।

0: भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:57। मैं हूं प्रणव, आपके साथ शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती ऑन रेनबो 102.6।

विकास स्टूडियो में आ चुके हैं। स्टूडियो का माहौल बदलने वाला है। फिलहाल लाइफ में मस्ती जारी रहनी चाहिए, जैसे हमने लगातार मस्ती जारी रखी अपनी म्यूजिक मस्ती में। लगातार एक से बढ़कर एक म्यूजिकल ट्रैक्स सिर्फ आपके लिए प्ले किए म्यूजिक मस्ती में। वैसे ही मस्ती जारी रखिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही एंटरटेनिंग म्यूजिकल शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का पारिस्थितिक मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। अब तक 13,700 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। जावा सागर में इंडोनेशिया की नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मौकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार है जी, और स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। वादे के अनुसार लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही में आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। चलेंगे उस सफर पर जहां हम बीते दौर को कभी छोड़ आए थे, हमारा अपना एक खुद का बेहतरीन हिस्सा, वो समय जो लौट के कभी आ नहीं सकता, लेकिन यादों के जरिए हम वापस उस दौर को जीने की एक खूबसूरत कोशिश जरूर करते हैं। तो आइए सफर करते हैं इस प्रोग्राम में आपकी याद आती रही।

और मुस्तक, अगर आपको अपने दिल की बात पहुंचानी है तो लिख सकते हैं मुझे जी, बिल्कुल भेज सकते हैं अपने संदेश। और संदेश जो है बिल्कुल कोशिश कीजिएगा थोड़े संक्षिप्त हो, ताकि उन्हें दिल से दिल तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत ना हो। 9868107070 नंबर हमारा। और कहते हैं यादों का जो सिलसिला होता है ये कभी भी कहीं भी हमें याद आ जाता है। मतलब कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर हम ये कह सके कि यहां पर हमें कुछ याद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अचानक से कहीं भी कभी भी कुछ भी याद आ जाता है और हम चल पड़ते हैं ना चाहते हुए भी उस सफर पर। बात करें उस बीते दौर की तो ना जाने कितने ऐसे हमारे साथ घटनाएं हैं जो जुड़ी हैं हमारे साथ। और कहते हैं कि उन यादों के जरिए जब हम उस घटनाओं को याद करते हैं तो कई बार खट्टी भी होती हैं, कई बार मीठी भी होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आंसू भी आ जाते हैं हमारी आंखों में, लेकिन तब भी हम ये सोचते हैं कि शायद वो जो पल था वो हमें सिखाने वाला था। और उस सिखाने में हम कई बार अपने आप को खोते हुए भी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वजूद वर्तमान में ना होकर पास्ट में चला गया और अपने आप को ढूंढने लगते हैं फिर से।

हाँ जी, पहुंच गए ना अपनी उन यादों में, मीठी यादों में कह सकते हैं। तुम्हारी यादें अब भी महकती है जैसे बारिश के बाद मिट्टी। दूर रहकर भी तुम दिल के करीब हो, रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, ना चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी सच होने का इंतजार रहता है। खूबसूरत सी दिल की बात भेजी है हमें अंशी शर्मा हसीनापुर मेरठ यूपी से। बहुत ही लाजवाब लाइन्स हैं अंशी, कहना पड़ेगा। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सरकार, आपकी याद आती रही मैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति, शुक्रिया जी। और गीत पसंद आ रहे हैं, बने रहिएगा, और भी बेहतरीन ट्रैक्स आपके लिए। आदाब आदाब सरकार, आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया, शुक्रिया जी। और अपने दोस्तों के साथ अपनी शॉप पर ही काफ़ी तेज़ आवाज़ में आपको सुन रहे हैं। सभी दोस्त आपको आदाब अर्ज कर रहे हैं, हमारा भी सभी को सलाम। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान पूरी खान फैमिली के साथ, और लिखते हैं, बस हवाओं तुम्हारा जिक्र कर लेता हूँ और चांद से तुम्हारा पता पूछ लेता हूँ। चाहत ऐसी कि कभी खत्म ना हो और मोहब्बत ऐसी हर पल गहरी होती जाए। फारूक अली खान साहब हमेशा की तरह निराले अंदाज के साथ। बिहार बेगूसराय से मोहम्मद कुनैन, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार, अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ और बोलने का स्टाइल, वेरी ब्यूटीफुल, शुक्रिया जी। और सॉन्ग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आगे भी जो ट्रैक्स हैं वो भी आपको यकीनन पसंद आएंगे। याद से याद कर कभी भी हम सब अपनी यादों के सहारे बीते हुए लम्हों की गलियों में लौट जाते हैं। वक्त भले ही उन पलों को पीछे छोड़ आया हो, लेकिन यादों की एक हल्की सी दस्तक उन खूबसूरत लम्हों को फिर से तरोताजा कर देती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना पीछे छोड़ने की कोशिश करो, वे उतनी ही शिद्दत से दिल के करीब आती जाती है। और फिर चेहरे पर मुस्कान, आंखों में नमी और दिल में वही पुरानी सी खुशी छोड़ जाती है। दिल की गहराई से लिख ली हुई बेहतरीन लाइन। अमित उपाध्याय साजाराम बिहार से। और भी तमाम दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ और बिल्कुल आपके संदेश साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार। हितेंद्र दास आसाम से जुड़े हैं और अपने दिल की बात भी लिखी है। सरकार प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आपकी याद आती रही। और बात हम कर रहे हैं यादों की, जी बिल्कुल, उन यादों की जो हमें याद कभी भी आ जाती है। जो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, कभी भी कोई समय निश्चित नहीं होता, बस बैठे हैं, चल रहे हैं, कहीं भी महफिल में भी कई बार हम तनाव महसूस करते हैं, होता है ना, वो सभी के साथ होता है। क्योंकि वो जो यादें होती हैं हमारे बीते दौर की, कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी का हमारा साथ होता है। और इसीलिए जब हम याद करते हैं, खासकर उन मीठी यादों को, तो ये जो नैन है हमारे आंखें, थोड़ी सी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, हल्का सा पानी आ जाता है इन आंखों में, है ना जी। रोना नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। नमस्ते जी, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया जी। और लिखते हैं बहुत बेहतरीन लाइन, चेहरे तमाम यादें गम सरगोशियां मिलती गईं, हर उम्मीदें राह में मदहोशियां मिलती गईं, सौंप कर जब सब रौनके उनको वफा के नाम पर, मुझको बस हिस्से फकत खामोशियां मिलती गईं, खामोशियां मिलती गईं। क्या बात है प्रेमचंद प्रेमी जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि हर बार कुछ नया बोलूँ आपके लिए, लेकिन बस यही कह सकता हूँ कि बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लाइंस आपके दिल की, और हुनर तो मतलब काबिल तारीफ है ही, वो कहने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह। शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और हमारे एक दोस्त हैं, बहुत सारे स्टिकर्स भेज दिए हैं और उसके बाद कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लास्ट में थैंक यू लिखा है उन्होंने, तो मैं भी आपको थैंक यू कह सकता हूँ जी, लेकिन अपने दिल की बात कुछ कहेंगे प्रोग्राम से रिलेटेड, जो प्रोग्राम चल रहा है तो और भी मजा आ जाएगा। वो झील, वो नदियां, वो हवाएं एक तरफ, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, नीम की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, आपका अंदाज भी एक तरफ, मोनिश इदरीसी बिलासपुर रामपुर से जुड़े हमारे साथ, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूं सरकार, और जो प्रोग्राम चल रहा है, यादों जज्बातों की बातें हो रही हैं, तो कुछ ऐसी यादें आपके साथ भी है शेयर करने के लिए, तो कीजिए हमारे साथ। नंबर हमारा वही है 9868107070। और कहते हैं दोस्तों कि अगर अकेलापन महसूस होता है कभी भी, ये जानते हुए कि तमाम लोग जो आपको प्यार करते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बहुत से ऐसे तमाम लोग होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं एक अकेलापन है, महसूस होता है ना? तो कोई बात नहीं, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में, हालांकि ये करना होता है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं और कहना जैसा आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर आप करके देखेंगे तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा आपके इस दोस्त ने कोई गलत बात आपको नहीं कही, यानी कि जो बात कही है वो हम करते हैं सरकार, और इसीलिए जो महसूस हुआ वो आपसे साझा कर रहे हैं कि दिल की खुशी जिस चीज से मिले वो काम जरूर कीजिए, और काम गलत नहीं होना चाहिए, है ना? खुशी जो मिलती है, सुकून जो मिलता है, वो छोटी छोटी हमारे आदतें होती हैं। कई बार, जैसे इसी बात को ले लीजिए कि हम, हमारे दोस्त तमाम कई बार लिखते हैं कि रेडियो उनका बहुत पैशन है, उनका सुनना रेडियो बिल्कुल लगा के रखते हैं सीने से, तो ये भी एक ऐसी आदत है, म्यूजिक को हम अपने सीने से लगा सकते हैं ऐसे समय में, और भी कई तरह की चीज़, किसी को लिखने का शौक होता है, क्यों ना अपने जज्बात जो हैं उसे लिखने में अगर हम लगाएंगे तो देखिएगा दिल जरूर हल्का होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो शब्द पन्नों पर उतरेंगे आपका दिल यकीन मानिए हल्का होता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो भी आपका इस तरह का हुनर है उसमें इन चीजों को जब भी अकेलापन महसूस करें कोशिश कीजिए, और फिर अगली बार जब मुखातिब होऊंगा आपसे, मिलूंगा अगले शनिवार इसी प्रोग्राम के माध्यम से, तो बताइएगा जरूर। विक्की कुमार नवादा बिहार से, मैं अभी अभी प्रोग्राम से जुड़ा हूं, आप बहुत

प्रोग्राम आपकी याद आती रही को सुनकर बेशुमार यादें हमें अपनी आगोश में समेट लेती है। हर गुजरा गुजरा हुआ कल याद आता है और हम रेनबो के जरिए उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं। कस्बा कन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब दिल की बात लिखते हुए और प्रेमचंद प्रेमी जी के लिए लिखा है, बहुत ही उम्दा लिखते हैं। मेरे जानिब से प्रेम भाई को शुक्रिया बोलिएगा। तो बिल्कुल शुक्रिया बोल दिया है सरकार, वाकई में बहुत उम्दा लिखते हैं जी। पंकज अमरावती महाराज से कसूर फिल्म का ये सॉन्ग जी, सही कहा आपने, बिल्कुल बेहतरीन ट्रैक। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सरकार कैसे हैं आप? रियली प्रोग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज कन्वे माई मैसेज टू माई आकाश, अनस्पीकेबल लव फॉर यू आकाश, बट फीलिंग्स ऑफ गुडनेस एंड योर लव माई डिलाइटेड हर्ट राइट नाउ इज इन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। टुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से, एंड यू हैव बीन कंसिस्ट, मतलब बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से आपने इस बात को लिखा है और मैं जहां तक तुम्पा महसूस कर पा रहा हूं कि आप मुझसे जब मुखातिब होते हैं, और मैं यकीन मानता हूं प्रोग्राम में जरूर होते होंगे, तो आकाश के लिए दिल में आपकी बहुत बहुत बड़ी जगह है और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ प्यारी सी बातें आप हमेशा लिखकर भेजते हैं और आज भी भेजा है आपने जी। मैं उम्मीद करूंगा आकाश ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो उन तक आपके दिल की बात जरूर पहुंची होगी। जुड़े हमारे साथ, नमस्कार। नमस्कार जी, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपकी याद आती रही। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, पविता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी फैमिली हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हमारे दोस्त ने फिर एक स्टिकर भेजा है, थैंक्स वाला, ऐसे दोनों हाथ उठाते हुए। तो अपना नाम और जिस जगह से आप हैं दोस्त, अगर आप वो लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमें। आपकी आवाज बहुत ही शानदार है, शुक्रिया दोस्त अमित आंचल सासाराम से। और दिल की बात तो आपने लिखी थी बेहतरीन, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। और भी तमाम दोस्त जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपकी याद आती रही में तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, भेज सकते हैं अपनी दिल की बात 9868107070 पर। और वफा की बात क्या कहें सरकार, वफा हम करते हैं ये सोचकर अक्सर हमारी भी उम्मीद होती है कि वफा हमने की है तो वफा भी शायद हमें मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फिर वही दिल के जज्बात, अल्फाज अपने अपने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अफ्साह खानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जुड़िए हमारे साथ बेहतरीन सॉन्ग शुक्रिया दोस्त और बने रहिएगा और भी बेहतरीन ट्रैक आपके लिए। नमस्ते जी, नमस्ते सरकार। मैं नवलू वरक गाँव मलपण ज़िला उत्तर गोवा से इस वक्त सुन रहा हूँ मैं ये प्रोग्राम और हमारे घर में गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ चल रही हैं। इसके साथ ही 90s के जो सॉन्ग्स हैं उनका मजा ले रहे हैं। सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं जी दोस्त। बिल्कुल, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से शुरू हो रहा है ये हमारा पावन दिन और मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल, और कहना चाहूँगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए मेरे दिल से जो दुआ निकलती है, जो प्रार्थना मैं हमेशा करता हूँ, वो यही कि सदा आप सभी दोस्त मेरे खुश रहें हमेशा। आदरणीय विकास जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सरकार। उच्च कोटि की प्रस्तुति और 90 के दशक के सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। दिल से बड़े वाली बधाई आपको भी दोस्त। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो, सुखद हो। निराली अंदाज के साथ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से बहुत बहुत स्वागत है दोस्त इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है दोस्ती में। नो थैंक्स। बिल्कुल नहीं, कोई थैंक्स वाली बात ही नहीं है। इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए, गीत सुनवाने के लिए सभी दोस्त आपको शुक्रिया अदा शुक्रिया बोल रहे हैं। कस्बा कुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और सभी दोस्त, और हमारी तरफ से भी सबका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।

न जाने उस शख्स का कौन सा हुनर आता है, न जाने उस शख्स को कौन सा हुनर आता है, रात होती है और मेरे ख्यालों ख्वाबों में वो उतर आता है। फारूक अली खान साहब।

अनिल ठाकुर जी सराय काले खान से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग सरकार आपको भी। और हमारे दोस्त जो थैंक यू भेज रहे हैं, वे लगातार भेज रहे हैं लेकिन अपना नाम नहीं बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताते तो बहुत अच्छा लगता दोस्त हमें। नमस्ते जी, आप सहित फारूक अली खान साहब और उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरी शायरी को पसंद किया। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, तमाम लोग सभी लोग पसंद करते हैं जी, मैं तो ये कह सकता हूँ क्योंकि बहुत उम्दा लिखते हैं, दिल की गहराइयों से दिल की बात लिखते हैं। और दोस्त यही कहना चाहूंगा जी, अगली बार, हाँ आज रात को मिलेंगे हम, बिल्कुल 11 बजे मुलाकात होगी, रंगे महफिल का प्रोग्राम होगा अगली बार जी, शनिवार को होगी मुलाकात आपसे, आपकी याद आती रही प्रोग्राम के माध्यम से। और यही कहना चाहूंगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
10: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों को पारिस्थितिक मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अंत में, भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मौकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। वादे के अनुसार लेकर प्रोग्राम रंगे महफिल हाजिर हूं मैं। आज के सफर में रहूंगा आपके साथ पूरे एक घंटे। मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम रंगे महफिल। तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने। तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे दिन को खास बना देती है और तुम्हारी एक याद मेरे दिल को सुकून दे देती है।

आदाब जी, हम भी हाजिर हैं जी कस्बा कुंदौर यूपी से, फारूक अली खान साहब पूरी खान फैमिली के साथ। गजल तुम प्यार को पसंद आई, और भी जो नगमे हैं वो भी आपको यकीनन पसंद आएंगे। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार। हैप्पी संडे जी। हाँ, बहुत बहुत आपको भी हैप्पी वाला जी, और उम्मीद करता हूँ अच्छा बीता होगा आज का दिन आपके लिए। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से लिखती हैं अपने दिल की बात कि अब जो छूट गया है साथ, वापस कभी ना आना तुम। अब जो छूट गया है साथ, वापस कभी ना आना तुम। रह गए जो वादे अधूरे, किसी और संग उन्हें निभाना तुम। और समझा लूंगी मैं भी खुद को, है कुदरत का ये इशारा कोई। जो मिल जाए किसी मोड़ पर कभी, बस एक अजनबी सा गुजर जाना तुम। क्या बात है, दिल के जज्बात। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है।

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, अंशी सिद्ध साहिबा। बहुत ही उम्दा लिखती है फारूक अली खान साहब अंशी शर्मा के लिए। जी बिल्कुल, दिल की गहराइयों से लिखी हुई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अर्ज़ हो।

कुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत सरकार। ख्वाब देखूं ये तो अच्छा है, पर खुली आंखों से ख्वाब देखूं ये उससे भी अच्छा है, और ऐसी ख्वाब पूरी हो तो इन दोनों से अच्छा है। अमल, ग्राम पोस्ट ताड़र, जिला भागलपुर, बिहार से दिल की बात हम तक पहुंचाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस महफिल में आने के लिए और बने रहने के लिए।

हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम और गीत पसंद आ रहे हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार बने रहने के लिए हमारी इस महफिल में। और बनी रहिएगा, और भी जो नगमे लाया हूँ, गीत लाया हूँ, आपको यकीनन गजलें पसंद आएंगी। कहते हैं दोस्त की कहानी हमारी अधूरी सही, पर यादों में आज भी पूरी लगती है। वो करीब तो बहुत हैं, मगर कुछ दूरियों के साथ। हम दोनों जी तो रहे हैं, मगर मजबूरियों के साथ। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह होने से पहले।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जान

0: जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। हर टचिंग सूदिंग योर टॉकिंग एंड आल्सो गज़ल प्रोग्राम, प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू माय हार्ट आकाश। प्लीज़ टेक फूड एंड रेस्ट स्लीप इन राइट टाइम। ड्रिंक ओनली नॉर्मल वाटर एट नाइट, नो कॉफ़ी नो टी। स्टे ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंकफुल तुम्पा पॉल, रेलवे कॉलोनी, न्यू दिल्ली से। उम्मीद करता हूँ तुम्पा जी, आपका ये मैसेज जो है दिल की बात दिल तक पहुंची होगी। आकाश ये प्रोग्राम सुन रहे हो। अंशु शर्मा हस्तिनापुर से जुड़े हैं हमारे साथ। फारूक अली खान साहब पूरे खान परिवार के साथ जुड़े हैं हमारे साथ।

दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से जुड़े हमारे साथ और एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। हमेशा कहता हूँ दिल से शुक्रिया जी, बने रहिएगा। कुछ एक नगमे और भी हैं जो भी सुनेंगे आप। कहते हैं किसी को अपना बनाया नहीं जाता, जबरदस्ती का रिश्ता निभाया नहीं जाता, जो दिल के करीब होते हैं वही अपने होते हैं, गैरों को सपनों में बसाया नहीं जाता। अल्फाज अपने अपने लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं सभी के वही।

और दोस्तों वक्त हो गया है तकरीबन कि इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत लूं और अगले शनिवार करेंगे मुलाकात प्रोग्राम आपकी याद आती रही में बिल्कुल। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

मैं नफासत से भरा शो और बहुत ही खूबसूरत गज़लों का सिलेक्शन रहा, और आपने सभी ने लुत्फ़ उठाया होगा, मैंने भी उठाया है स्टूडियो में आकर, और उम्मीद की कि इसी तरह का हर शो आपको मिलता रहे और आप भी पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। फ़िलहाल 12 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में रजत आपके लिए लेकर प्रोग्राम जीरो और शो। लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं एक नज़र अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया खिताब जीते। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े हैं इस समय आकाशवाणी की ऐप न्यूज ऑन एयर, इसके साथ आप जुड़े हैं दुनिया के हर हिस्से हर कोने से और आपके मैसेजेस हमें बता देते हैं। फिलहाल रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम का बस आगाज होने को ही है और प्रोग्राम है जीरो आर शो मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आप सभी का इस्तकबाल एक बार फिर से, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जारी है जीरो और शो। इस्तकबाल करते कुछ मैसेज भी आ गए हैं एम राजकुमार साहब का तिरुचरापल्ली से, सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए श्रोताओं में से एक। दूसरा मैसेज हमें मिलता है, पहले इसी को पढ़ दें, गुड मॉर्निंग लिखते हैं राजकुमार साहब, और अफशा खानम जी हमें लिख रही हैं ज़िला बिजनौर धामपुर से, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं आप, वेलकम टू द शो, ये मुझे भी कहना चाहिए, पूछना चाहिए बल्कि आप दोनों से, और बाकी लोग जो अभी टाइपिंग वाला स्टेटस दिख रहा है उन्हें भी हमारा दुआ सलाम मिले, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। प्रोग्राम से आप जुड़ चुके हैं जिसका नाम है जीरो और शो, मेरे यानी रजत के साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए
1: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
2: हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
8: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
9: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
10: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
9: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
11: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
12: ठीक है,
11: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
12: अच्छा।
11: जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
10: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
9: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
13: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
9: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
10: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
9: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
10: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
9: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
10: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
9: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
10: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी

बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दिल्ली से अनमोल चौधरी हमारे साथ जुड़े, और कहाँ से ये नहीं बता पाए हो, और उसके अलावा सराय काले खां दिल्ली से अनिल ठाकुर हमारे साथ जुड़े, और ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार इस शो में शामिल हूँ तो मेरा नाम पढ़ा जाए। ज़रूर पढ़ा है आपका नाम, और आप इसी शिद्दत के साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहें, हमारे हर प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, ये तो तवक्को रहेगी, आपसे उम्मीद रहेगी, और साथ में रहेगा कि आप पूरी चाहत के साथ अपनी मंजिलों को भी पाएं आप सभी लोग, और पूरी ख्वाहिश रहेगी कि आपको कामयाबी मिले भगवान की तरफ से। ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, एक गीत और सुनिए।

0: खूबसूरत सा, उसके बाद जुड़ेंगे अलमास आपके साथ लेकर सुहानी रात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हां, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 1:03 और 5 सेकंड्स, और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथ ही अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। कुछ प्यारे से गीत आपके लिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

साथियों, हम भी अगली मुलाकात के लिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। 2 बजे आपके साथ होंगे रजत शर्मा। मुझे यानी अरमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: भी खूब आप लोगों का साथ है तो हम साथ ही रहेंगे, और आप लोगों की जो जुम्बिश है हमारे साथ, हम हमारे साथ जो आपके साथ एक रिश्ता जो बना हुआ है वो हमें बरबस यहाँ खींच ही लाता है। अब देखिए 2:08 हुए हैं और नया शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है भुलाए ना बने, मेरे यानी रजत के साथ। आ गए ना हम आपके साथ एक खिंचाव के साथ, ये सोच करके बहुत से दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और प्रोग्राम्स तो जारी रहते ही हैं FM रेनबो पर, साथ ही साथ आपका हमें ये पता चल जाता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। आप जिस शिद्दत से हमें याद करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, बस मन ही नहीं करता यहाँ से कहीं जाने का, लेकिन ठीक है, सिलसिले हैं, ये चलते रहेंगे आगे तक, बदस्तूर जारी रहेंगे। फिलहाल आप सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, जैसा कि हम बताते रहते हैं, हम जुड़े हुए हैं देश और दुनिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से, कहीं से भी दिन में रात में आप हमें इस ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 9868107070 हमारा नंबर है। फिलहाल भुलाए ना बने में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मैं रजत, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप सोए नहीं हैं, किसी और मसरूफियत के साथ हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा उस मसरूफियत का, अपने उस अनमोल वक्त का हमें भी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा, और आपको खूबसूरत गाने भी सुनाना अच्छा लगेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस अच्छे और खूबसूरत इत्तेफाकों के साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्बादेवरा ने जापान के नाकाशी निशी जुनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्रिकेट में महिला टी20 एशिया कप

फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 3:03 और 2 सेकंड्स। और लीजिए, अब आपके लिए लाए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ हलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो लीजिए, सुनवाते हैं आपको ये कुछ प्यारे से गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से

तेरे घर की फुलवारी तक। हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज यही संपन्न होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरी अनमा सासा के साथ 5 बजे आपसे फिर भेंट होंगी। इस गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। 4 बजे आपके साथ होंगे रजत।

शुक्रिया अलमाज जी, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, एक और बेहद खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, अच्छे गानों के लिए और हमारे श्रोता मित्रों को हमारे साथ जोड़े रखने के लिए। अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज। अब समय हो चला है सारे गामा का, लेकिन उससे पहले ठहराव लेंगे एक मुख्य समाचारों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने जापान के नागानिशी जूनियर को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा

कर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सुन रहे हैं, हमें जुड़े हुए हैं वहां से, तो जुड़े रहिए क्योंकि समय हो चुका है 4:02 और ये वक्त है प्रोग्राम सारे गामा का, मेरे यानी रजत के साथ सुनेगा, खूबसूरत गानों का संयोजन होगा एक बार फिर से और आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाने की एक और नायाब कोशिश रहेगी हमारी तरफ से। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, आप जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़े ही रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना।

24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,500 से अधिक मेधावी छात्रों को 16 सितंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ई स्कूटर दिए जाएंगे। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अब खेल समाचार। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा ने जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्रिकेट में महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में टी20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:03 और लीजिए श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

अगर हर इंसान घट घट में बसे ईश्वर को जान ले तो संसार में स्वार्थ, अभिमान, द्वेष और हिंसा जैसे कई अमानवीय तत्व समाप्त हो जाएं। अगर हम अपने से निर्बल जीवों से प्रेम करने लगें, दुखियारे जरूरतमंद लोगों में दरिद्र नारायण का भाव रखकर उनके आवश्यकताओं को पूरा करें तो ये ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। इसीलिए वेदों, उपनिषदों और सभी धर्म ग्रंथों ने दान की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ज्ञान दान, यहाँ तक कि जीते जी अंग दान करके परमात्मा के प्यारे भक्तों ने इतिहास रचा है। आज के युग में नेत्रदान से लेकर मृत्यु के पश्चात देहदान के प्रति लोगों में काफी जागरूकता दिखाई देने लगी है। हर तरह के दान में गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ है। हम इस प्रकार दान दें कि हम में अभिमान न आए, न दान लेने वाला ही स्वयं को हीन समझे। श्रेष्ठ दान तो वो है जिसमें दाएं हाथ

बाद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।